नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सचुन है।
2: पांच YouTube वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा
2: है? हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मीन्स ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
3: क्या बात है यार।
4: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
4: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन ऐप्स डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना पूरी जानकारी के कोई भी वित्तीय लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
5: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं आपको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। अब ठान के मुद्दे स्वच्छता की ज्योत जागी रहे, स्वच्छता की ज्योत जागी रहे।

0: पर एचआईवी कभी न दूं।
1: अगर आप मां बनने वाली हैं, तो एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में सलाह और एचआईवी टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को एचआईवी से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
2: एक कदम जिंदगी की ओर।
3: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहारी जी के।

0: भैया ये आप सबने हेलमेट क्यों पहना है? ये तो बाइक वाला हेलमेट है ना।
1: अब आप नहीं पहन रहे तो सोचा हम ही पहन लेते हैं।
2: असलियत में हेलमेट किसको शोभा देता है ये तो सबको पता है। बाइक चलाते वक्त सर बचाएं, हेलमेट पहने। वेयर अ हेलमेट ऑलवेज बिकॉज हेलमेट सेव्स।
3: बस मास्टर जी अब आप बेफिक्र रहिए, मैं गाँव में सबको बता दूंगा।
4: क्या हो रहा है मास्टर जी, काहे बुलाए हमका?
5: तरक्की का हिस्सा बनाने मुन्ना।
4: तरक्की?
5: देखो मुन्ना, पहले गांव में रही बैलगाड़ी, फिर आई साइकिल मोटरसाइकिल, दिखा भाई
4: तरक्की।
5: हाँ, पर अब भी लोग जाते हैं खुले में शौच करने, तो हमें कहाँ अपनाना चाहिए?
6: तरक्की यानी अपने घर में अपना शौचालय।
5: सही जवाब। और अब तो शौचालय बनवाने के लिए जरूरतमंद लोग 12,000 रुपए की सहायता राशि भी प्राप्त कर सकते हैं।
7: भाई मुन्ना, अब तुम भी अपना नाम लिखवाई दो।
5: इस योजना का लाभ उठाने के लिए आज ही अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क करें।
8: अपनाए तरक्की की सोच नहीं,
6: अब खुले में शौच नहीं।
9: मैं नहीं करूंगी आज के बाद तुम्हारा कोई काम।
10: क्यों सुबह से मुंह फुला के घूम रही है ये?
11: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
10: किससे?
11: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है, रात को सपने में देखा था ना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और सुबह के 9 बज गए हैं। और श्रोताओं, आप सभी जानते हैं ये समय रहता है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला का। आज का ये अंक कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला का लेकर मैं हाजिर हो गई हूँ, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा। सभी श्रोताओं को जो भी इस समय हमारे साथ जुड़े हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, उन सभी का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। और जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को सबसे पहले सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे श्रोताओं और कार्यक्रम के साथ जुड़ चुके होंगे। आप सभी को इंतज़ार रहता है कार्यक्रम का, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे कार्यक्रम का समय क्या रहता है, लेकिन फिर भी हमारा बताना फ़र्ज़ है, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे श्रोता भी हैं जो बिल्कुल नए नए हमारे साथ जुड़ते हैं। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला का समय रहता है श्रोताओं अभी का, यानी कि प्रातः 9 बजे से लेकर 11 बजे का समय। तो आज का ये सफ़र आपके साथ मैं बिताऊंगी, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा। श्रोताओं, आप सभी को पता है कि इस कार्यक्रम को आप 88.4 मेगाहर्ट्ज पर हमीरपुर के ढटवाल की आवाज़ पर भी सुन सकते हैं और सुन भी रहे होंगे। तो हमीरपुर के जितने भी श्रोता हैं उन सभी को भी सुषमा की प्यार भरी नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी ठीक ठाक होंगे और हल्की हल्की जो बारिश की फुहारें पड़ रही हैं वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा परेशान कर रही होंगी। खैर, मौसम पर बातचीत करेंगे श्रोताओं। और आपको बता दें, आज का कार्यक्रम खास रहने वाला है। आज के कार्यक्रम में बहुत खास बातें होने वाली हैं श्रोताओं, और आपको बहुत ही एक अच्छा दिन कह लीजिए, वो दिन जिसे आप याद करके आज फिर से खुश होने वाले हैं, उस पर हम बात करेंगे। थोड़ा सा सस्पेंस को बनाकर रखेंगे और बात करेंगे कि किस पर हमने बात करनी है। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं विचार के साथ। आज का विचार है श्रोताओं, भगवान की कथा और इंसान की व्यथा बेअंत है, जो समझ गया वही संत है। तो इसी विचार के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं। और आज के कार्यक्रम में, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज का कार्यक्रम खास रहने वाला है, बहुत सी बातें आप तक हमने आज पहुंचानी है और गीतों की माला पिरोकर आज भी मैं लेकर आई हूं। तो चलिए उस माला को खोलते हैं और सुनते हैं उस माला में पहला गीत कौन सा है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं झूम बराबर झूम इस फिल्म के गीत के साथ, राहत फतेह अली खां की आवाज़ में।

91.2 MHz पर श्रोताओं आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं और कार्यक्रम की शुरुआत हमने की इस प्यारे से गीत के साथ। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला है और आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में सुबह के समय हम सबसे पहले आप तक पहुँचाते हैं मौसम की जानकारी और आंखों देखा हाल अगर बताया जाए श्रोताओं तो धर्मशाला में अभी भी बारिश जो है वो हल्की हल्की लगी हुई है। तो बारिश का जो क्रम चला हुआ है वो अभी थम नहीं रहा है और बहुत सारी कह सकते हैं कि कई जगह नुकसान भी बहुत हुआ है श्रोताओं। चलिए बात करते हैं मौसम की जानकारी के बारे में और आपको बताते हैं कि धर्मशाला का आज का तापमान जो है वो है 17 डिग्री सेल्सियस बना हुआ और हवा में नमी की बात करें तो 96% जो है वो हवा में नमी है और श्रोताओं कहीं भी मौसम साफ रहने का आसार बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से बारिश हल्की हल्की हो रही है ऐसा ही आज मौसम रहने वाला है। साथ ही श्रोताओं थोड़ा सा अगर हम डिटेल में बात करें तो मंडी जिला में लगातार हो रही बारिश के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 54 पर 1 सेकंड की देर भारी पड़ सकती थी। नारा बिजली के समीप एक कार महज 1 सेकंड के अंतर से बड़ी दुर्घटना का शिकार होने से बच गई। कार के गुजरते ही पहाड़ी से भारी चट्टान सड़क पर आ गिरी और इस घटना का वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा जो कि सामने आया है जिसने बारिश के दौरान पहाड़ी मार्गों पर सफ़र के खतरे को फिर से उजागर कर दिया है। श्रोताओं NH-003 पर भूस्खलन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां कोटली के रोपड़ू नाला के समीप भूस्खलन हुआ है। इस बीच उपमंडलाधिकारी कोटली ने आम जनता के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से वर्षा के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 003 पर अनावश्यक यात्रा करने से बचने की अपील की है। साथ ही श्रोताओं आपको बता दें कि ये जो अपील है ये हमारे भले के लिए होती है और यहाँ की ही बात नहीं है हर जगह मौसम का यही हाल है। तो आप लोग अगर कहीं भी पहाड़ी इलाकों की तरफ जाने का सोच रहे हैं बहुत ज़रूरी जाना है तो मौसम विभाग की जानकारी ले लें, रास्ते कैसे हैं वो भी जान लें, उसके बाद ही आप निकलें, अदरवाइज़ आप ना निकलें तो बेहतर रहेगा। तो श्रोताओं मौसम की जानकारी के बाद कार्यक्रम में फिर से लौटेंगे गीत संगीत की ओर और आपको जैसे कि हमने कहा आज के कार्यक्रम में आपसे होने वाली है बहुत खास बात और उस बात के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा रेडियो गुंजन धर्मशाला के लिए। फिलहाल के लिए आपको लिए चलते हैं एक प्यारे से गीत की ओर, कहो ना प्यार है इस फिल्म का गीत कुमार शानू की आवाज़ में आप सभी के रेडियो सेट पर।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं, और कार्यक्रम में अब समय है आपको शिमला ले चलने का, यानी कि प्रादेशिक समाचारों का समय हो रहा है। तो कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला का बाकी का हिस्सा आप सुनेंगे दोबारा से समाचारों के बाद।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, कौशल विकास और रोजगार सृजन को लेकर एक मजबूत व्यवस्था विकसित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आयुष्मान भारत व हिम केयर योजना के तहत निजी अस्पतालों के लंबित बिल 3 सप्ताह में भुगतान करने के दिए निर्देश। प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर भाजपा नेताओं पर राजनीति

0: प्रतिशोध की भावना से मुकदमे दर्ज करने का लगाया आरोप। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय आज मना रहा है अपना 57वां स्थापना दिवस और प्रदेश में वर्षा का दौर जारी। अब तक 145 सड़कें व 43 पेयजल परियोजनाएं बाधित, जनजीवन प्रभावित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए एक मजबूत व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। शिमला में तकनीकी शिक्षा विभाग के तकनीकी रोजगार सेतु पोर्टल के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म युवाओं और उद्योगों के बीच एक प्रभावी सेतु का कार्य करेगा और तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पोर्टल पर 164 संस्थान पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें 136 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 18 पॉलिटेक्निक संस्थान, 5 इंजीनियरिंग कॉलेज और 5 फार्मेसी कॉलेज शामिल हैं। प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आयुष्मान भारत और हिमकेयर योजना के तहत निजी अस्पतालों के लंबित 36 करोड़ रुपए के बिल 3 सप्ताह में भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि विजिलेंस जांच के नाम पर स्वीकृत बिलों का भुगतान अनिश्चित काल के लिए नहीं रोका जा सकता है। अदालत ने कहा है कि विजिलेंस जांच पूरी भी होने पर किसी अस्पताल से फर्जीवाड़े या गलत दावे के तहत वसूली बनती है तो राज्य सरकार कानून के मुताबिक कार्रवाई या रिकवरी करने के लिए स्वतंत्र होगी। प्रदेश भाजपा गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर 29 जुलाई से प्रदेशव्यापी समरसता संकल्प अभियान चलाएगी। शिमला से जारी एक बयान में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि इस अभियान के लिए 17 सदस्यीय प्रदेश स्तरीय टोली का गठन किया गया है, जिसकी कमान राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार को सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि संत गुरु रविदास ने समाज में समानता, समरसता और आत्मसम्मान का जो संदेश दिया है उसे जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ये अभियान चलाया जाएगा। बिंदल ने कहा कि 25 जुलाई को शिमला में इस संबंध में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित होगी। प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर भाजपा नेताओं पर राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से मुकदमे दर्ज करने का आरोप लगाया है। एक बयान में पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में लोकतांत्रिक विरोध का जवाब विकास से नहीं बल्कि FIR व मुकदमों से देना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद भाजपा नेताओं व विधायकों के खिलाफ लगातार मामले दर्ज किए जा रहे हैं। जम्वाल ने सरकार पर कानूनी मामलों में उलझाकर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन और पुलिस का उपयोग राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हथियार के रूप में किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय आज अपना 57वां स्थापना दिवस मना रहा है। समारोह का आयोजन विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय विधिक अध्ययन संस्थान के अकादमिक व डिजिटल लाइब्रेरी भवन का शिलान्यास भी करेंगे। कुल्लू जिला प्रशासन ने जिले में पीलिया के मामले सामने आने के बाद इस रोग की रोकथाम व नियंत्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिला उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा ने एक बैठक में जल शक्ति विभाग को सभी पेयजल योजनाओं का तत्काल क्लोरिनेशन सुनिश्चित करने, जल भंडारण टैंकों की नियमित सफाई करवाने के निर्देश दिए।
1: विभाग को सारे ही वाटर स्टोरेज टैंक्स के क्लोरिनेशन के और क्लीनिंग के डायरेक्शन दिए गए हैं। सेकेंडली जो खराला नाला है जो सर्वरी के साथ लगता है वहां पर सर्वेयर की टीम जो है IPS विभाग द्वारा भेजी गई है टू रूल आउट एनी कंटेमिनेशन। सभी लोगों को यही हम संदेश देना चाहेंगे कि फिल्टर्ड वाटर, RO वाटर या पानी जो है उसको उबाल कर ही पिए और सावधानी बरतें।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का दौर जारी है। व्यापक वर्षा से अनेक स्थानों पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश से प्रदेश में अब तक 145 सड़क मार्ग, 508 बिजली ट्रांसफार्मर और 43 पेयजल परियोजनाएं बाधित हुई हैं। इस बीच कांगड़ा जिला के शाहपुर उपमंडल की बोहो घाटी में 18 मकान, 9 गौशालाएं और एक प्राथमिक स्कूल भवन बह गए। हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता के अनुसार इस घटना में 3 महिलाएं भी घायल हुई हैं।
2: भारी बारिश के बीच कांगड़ा जिले की बोह घाटी में बादल फटने से चार गांवों में भारी तबाही मची है। बादल फटने से आई बाढ़ और भूस्खलन के चलते घाटी में चार गांव रुलेहड़, बंगारगढ़, गुण और स्पैड़ा में 18 मकान मलबे में दब गए। इसके अलावा 9 गौशालाएं और एक प्राथमिक स्कूल भी बाढ़ के साथ आए मलबे की भेंट चढ़ गए। मलबे की चपेट में आने से 3 महिलाएं जख्मी हो गई, वहीं 9 मवेशी मलबे में दबकर मर गए। प्रशासन, पुलिस और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: भारी बारिश के मद्देनजर कुल्लू जिला के आनी, बंजार व निरमंड उपमंडल के सभी शिक्षण संस्थान आज बंद रहेंगे। इस बीच मौसम विभाग ने आज कांगड़ा और मंडी जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि चंबा, कुल्लू, शिमला, सोलन और सिरमौर जिला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन द्वारा लोगों को सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और नदी नालों से दूरी बनाए रखने की अपील की गई है। चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला 26 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। मेले का शुभारंभ राज्यपाल कविंद्र गुप्ता करेंगे। हमारे चंबा जिला संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले के आयोजन के लिए इन दिनों तैयारियां जोरों पर हैं।
3: मिंजर मेले का मुख्य आकर्षण सांस्कृतिक संध्याएं रहती हैं, जिसके लिए कलाकारों का चयन चल रहा है। इसके लिए ऑडिशन में 816 कलाकारों ने इस प्रक्रिया में भाग लेकर अपना ऑडिशन दिया। वहीं मेले के दौरान व्यावसायिक गतिविधियों का आयोजन करने के लिए इस बार चंबा के चौगानों को करीब 3.45 करोड़ रुपए में नीलाम किया गया है, जहां दुकानें लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: प्रदेश भवन व अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमारे कुल्लू जिला संवाददाता ने बताया कि बोर्ड जिले के अनेक श्रमिकों के बच्चों के सुरक्षित भविष्य को संवारने का काम कर रहा है।
4: हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड प्रदेश के श्रमिकों का सच्चा साथी बनकर उभरा है, क्योंकि एक मजदूर के लिए अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य की चिंता सबसे बड़ी होती है। कुल्लू जिला की गरसा पंचायत के निवासी खेमरा, जो मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, बताते हैं कि कामगार कल्याण बोर्ड से पहली बेटी के जन्म पर बोर्ड द्वारा 51,000 रुपए की FD करवाई गई है। ये राशि बेटी के वयस्क होने पर मिलेगी और उसकी उच्च शिक्षा अथवा अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण बनेगी, अपने सपनों को साकार कर सकेगी। ठीक ऐसी ही खुशी कुल्लू के पीस गांव की सोनी देवी के परिवार में भी है। उनकी बेटी के नाम भी बोर्ड द्वारा 51,000 रुपए की FD स्वीकृत की गई है। कामगार कल्याण बोर्ड केवल बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा को भी नई मजबूती प्रदान कर रहा है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: किन्नौर जिला उपायुक्त अमित कुमार शर्मा ने जिले में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत किए जा रहे कार्यों में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। एक बैठक में उन्होंने जिले की सीमावर्ती क्षेत्र की रक्षम, बटसेरी, थेमगारंग व छितकुल ग्राम पंचायतों में लंबित पड़े विकास कार्यों की समीक्षा की और सतलुज नदी के समीप बसे गांवों में सुरक्षा दीवारों के निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने मौसम संबंधी खबर को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, कांगड़ा किन्नौर में बादल फटे, 18 मकान मलबे में दबे। दिव्य हिमाचल का शीर्षक है, शाहपुर की बोह घाटी में बादल फटने से तबाही, जबकि दैनिक जागरण लिखता है, बोह घाटी में बादल फटा, 18 मकान क्षतिग्रस्त। पंजाब केसरी हाईकोर्ट के हवाले से लिखता है, नदियों के किनारे कूड़ा डंप करने पर 5 जिलों के उपायुक्तों को फटकार। हिमाचल दस्तक की एक खबर है, 15 दिन में दें बिना टेट पास शिक्षकों का रिकॉर्ड। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, कौशल विकास और रोजगार सृजन को लेकर एक मजबूत व्यवस्था विकसित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आयुष्मान भारत व हिमकेयर योजना के तहत निजी अस्पतालों के लंबित बिल 3 सप्ताह में भुगतान करने के दिए निर्देश। प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर भाजपा नेताओं पर राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से मुकदमे दर्ज करने का लगाया आरोप। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय आज मना रहा है अपना 57वां स्थापना दिवस। और प्रदेश में वर्षा का दौर जारी, अब तक 145 सड़कें व 43 पेयजल परियोजनाएं बाधित, जनजीवन प्रभावित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

91.2 मेगा हर्ट्स पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। समाचारों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। आप सभी को एक बार फिर से सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं श्रोताओं, आप सभी हमारे साथ जुड़े होंगे और जो श्रोता नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ने को तैयार होंगे। तो आप भी जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए कार्यक्रम के साथ। श्रोताओं, आप सभी समय सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला और आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगा हर्ट्स पर। तो समाचारों के बाद श्रोताओं हम बातें करेंगे, लेकिन पहले सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत। इस गीत को सुनते हैं, उसके बाद हम ज़रूर आपके साथ बातचीत करेंगे। तो चलिए प्रेम ग्रंथ फिल्म का गीत लेते हैं और इस गीत को आवाज़ों से सजाया है विनोद राठौर और अलका याग्निक ने। लीजिए सुनिए इस प्यारे से गीत को आप सभी अपने रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये गीत, और इस गीत के बाद श्रोताओं कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे। श्रोताओं, और जैसा कि आपसे हम कह रहे हैं कि आज बहुत विशेष दिन है, और आज के इस दिन हम आपके साथ बहुत सारी विशेष बातें करने वाले हैं, लेकिन अभी तक हमने उस सस्पेंस को सस्पेंस ही रखा है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं श्रोताओं। हम ये चाहते हैं कि और भी श्रोता हमारे साथ जुड़ जाएँ और हम उस बात पर आएँ, लेकिन फिलहाल के लिए कार्यक्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं जानकारी। श्रोताओं, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई में पिछड़ रहे विद्यार्थियों के लिए अब रोज़ाना 45 मिनट का अनिवार्य जीरो पीरियड लगाया जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान ने लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम के दूसरे चरण के तहत कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों की सीखने की कमियों को दूर

करने के लिए ये एक विशेष पहल शुरू की है। ये कार्यक्रम लगातार 12 सप्ताह तक चलेगा और इसमें विशेष रूप से उन विद्यार्थियों पर ध्यान दिया जाएगा जिन्हें भाषा और गणित जैसे विषयों में अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता की आवश्यकता है। साथ ही श्रोताओं, समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों वाले जिलों लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, चंबा, मंडी, सोलन और सिरमौर तथा ऊना, सोलन, सिरमौर के एक्सट्रीम समर क्लोजिंग स्कूलों में ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है और अन्य ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में जीरो पीरियड 17 अगस्त से शुरू होगा। कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों के लिए भी ये व्यवस्था पूरे प्रदेश में 17 अगस्त से लागू होगी। श्रोताओं, ये थी जानकारी जो कि आप तक पहुंचाई रेडियो गुंज धर्मशाला ने। और इस जानकारी के साथ श्रोताओं, एक छोटी सी बात हम ये भी जोड़ना चाहेंगे कि सरकारी स्कूलों में ये जो व्यवस्था अब चलाई जा रही है बहुत अच्छी व्यवस्था है, हम इसकी तारीफ करते हैं और ज़रूर बच्चे इसका लाभ लेंगे। लेकिन ज़ीरो पीरियड तो अब शुरू हो रहा है श्रोताओं, लेकिन स्कूलों में जो पढ़ाई होती है उनमें हम देखते भी हैं और कई लोगों से हम सुनते भी हैं कि कई स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। श्रोताओं, हम ये हर स्कूल के लिए नहीं कह रहे, लेकिन कहीं कहीं ये चीज़ देखने में आती है। तो हम यही कहेंगे कि हम अपना काम अच्छे से करें और जिस काम के लिए हमें रखा गया है उस काम को अगर हम 100% दें तो शायद ज़ीरो पीरियड का ज़रूरत भी ना पड़े। लेकिन खैर, जिन बच्चों को ज़रूरत है उन बच्चों को शिक्षा ज़रूर मिलनी चाहिए। कार्यक्रम में इस जानकारी के बाद अब बातों को हम लंबा नहीं लेके जाएंगे श्रोताओं और कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे गीत। तो चलिए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में।

बिल्कुल श्रोताओं, बेकरार करके हमें यूं ना जाइए। अगर आप भी रेडियो सेट से कहीं दूर जा रहे हैं तो हम भी आपसे यही कहेंगे, बहुत दूर मत जाइएगा, बस उतनी सी दूर जाइए जहाँ तक हमारी आवाज़ आप तक पहुँच सके। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में श्रोताओं, अभी सुना आपने गीत, और इस गीत के बाद अब हम चलेंगे आज के दिन के इतिहास की ओर। आज 22 जुलाई का दिन है श्रोताओं, और 22 जुलाई का दिन क्यों ख़ास है, किस लिए ख़ास है, उस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं श्रोताओं। 22 जुलाई 1947 को ही संविधान सभा ने वर्तमान तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकार किया था। इसी ऐतिहासिक महत्व के कारण इस दिन को भारत में राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही श्रोताओं, 1947 में आज ही के दिन संविधान सभा की बैठक में पिंगली बेकैया द्वारा डिज़ाइन किए गए तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। इस झंडे में चरखे की जगह सम्राट अशोक के धर्म चक्र यानी कि अशोक चक्र को शामिल किया गया। साथ ही 1981 में भारत के पहले भूस्तरीय उपग्रह एप्पल ने सफलतापूर्वक कार्य करना आज के दिन शुरू किया। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आज विशेष बात हम करने वाले हैं राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस पर भी, और भी बहुत सारी बातें विशेष होने वाली हैं श्रोताओं, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार और आपको जुड़े रहना पड़ेगा रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। तो लीजिए, सुनिए कार्यक्रम में इस गीत को, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो श्रोताओं, ये गीत आप तक पहुंचा रहे हैं जन्नत 2 फिल्म से, शौकत अमानत अली खां की आवाज़ में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। और श्रोताओं, जैसे कि हमने इस गीत से पहले इतिहास की बात की और बात की राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस की, तो श्रोताओं आज आपके साथ ज़रूर इस पर बात होगी। श्रोताओं, 22 जुलाई को हम राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस मनाते हैं। इसी दिन वर्ष 1947 में भारत की संविधान सभा ने हमारे तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। हमारा तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की आशाओं, सपनों, संघर्षों और बलिदान का प्रतीक भी है। इसकी हर पट्टी हमें एक अनमोल संदेश देती है। श्रोताओं, इन रंगों की पट्टियों की बात करें तो केसरिया रंग जो है साहस, त्याग और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। सफ़ेद रंग सत्य, शांति और ईमानदारी का संदेश देता है। हरा रंग समृद्धि, प्रगति और प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश देता है और हमें प्रेरणा देता है कि हमें आगे बढ़ना है और इसकी रक्षा भी करनी है। साथ ही श्रोताओं, इस ध्वज के बीच में बना अशोक चक्र जिसकी 24 तीलियां हैं, हमें निरंतर आगे बढ़ने, कर्म करने और जीवन में कभी ना रुकने की प्रेरणा भी देता है। श्रोताओं, जब भी तिरंगा लहराता है हम भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी आज़ादी अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और संघर्ष का परिणाम है। इसलिए तिरंगे का सम्मान करना केवल हमारा अधिकार ही नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य भी है। तो श्रोताओं, इस राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस पर हम संकल्प लेते हैं कि देश की एकता, अखंडता और संविधान के मूल्यों की रक्षा करेंगे, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से पालन करेंगे और ऐसा हर कार्य करेंगे जिससे हमारे तिरंगे का सम्मान और ऊंचा हो जाए। तीन रंगों में बसा है भारत का अभिमान, तिरंगा है हमारी शान, हमारी पहचान। आओ मिलकर करें हम यह प्रण, हमेशा ऊंचा रहे अपने भारत का ध्वज।

91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में। श्रोताओं, ऐसे गीत सुनकर कहीं ना कहीं हम में देश प्रेम जाग उठता है और सच में हमें गर्व महसूस होता है कि हम भारतीय हैं और हमारे देश के प्रति हमारा प्रेम इसी तरह से रोज़ाना जागना भी चाहिए। लेकिन आज ख़ास दिन है श्रोताओं, और आज के इस ख़ास दिन पर आपका देश प्रेम जो कहीं छुपा बैठा है उसे हम फिर से उजागर करने वाले हैं, क्योंकि आज कार्यक्रम में ऐसी ही बहुत सारी बातें होने वाली हैं जिससे जिन्हें सुनकर आप गर्व महसूस करेंगे। वो कौन सी बातें हैं आगे ज़रूर करेंगे, आप कीजिए इंतज़ार थोड़ा सा। लेकिन फ़िलहाल के लिए कार्यक्रम में हम चलेंगे श्रोताओं जानकारियों की ओर। जल संचय जन भागीदारी यानी कि कैच द रेन 2026 अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए पिछले कल यहां राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त, सह जिला नोडल अधिकारी, जल शक्ति विभाग के प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रत्यक्ष एवं वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधान सचिव जल शक्ति एवं अभियान के राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर अभिषेक जैन ने कहा कि जल संरक्षण को जल आंदोलन का स्वरूप देना समय की आवश्यकता है। उन्होंने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों, महिला मंडलों, युवा क्लबों और गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य सामुदायिक संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर अभियान को वास्तविक अर्थ में जन भागीदारी का अभियान बनाया जाए। साथ ही श्रोता, उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अभियान को बीबीजी रामजी जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अमृत कैंपा, स्वच्छ भारत मिशन तथा राज्य एवं केंद्र प्रायोजित अन्य योजनाओं के साथ प्रभावी अभिसरण के माध्यम से लागू किया जाए ताकि जल संरक्षण गतिविधियों का अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही श्रोता, उन्होंने ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी से ग्रामीण स्तर पर आवश्यकता आधारित लघु एवं जल संरक्षण एवं भूजल पुनर्भरण कार्यों की पहचान कर उन्हें शीघ्र क्रियान्वित करने के निर्देश भी दिए हैं। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी जो कि आप तक पहुंचाई रेडियो गुंजन धर्मशाला ने, और इस जानकारी के बाद अब हम आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम के एक और प्यारे से गीत की ओर। लीजिए श्रोताओं, ये गीत आप तक पहुंचा रहे हैं, इंजॉय कीजिए इस म्यूजिकल ट्रैक को।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना देवदास फिल्म का ये गीत, और अपने समय की बहुत ही मशहूर और बहुत ही प्यारी फिल्म थी ये श्रोताओं, और इसकी कहानी कहीं ना कहीं हम सब की आंखों को नम कर गई थी। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला भी आप सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ, और आपने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 MHz पर। श्रोताओं, आज कार्यक्रम की शुरुआत से ही हम बात कर रहे हैं कि आज खास विशेष बातचीत आपके साथ होनी है, और आज का दिन खास है। आज हमने बात की राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस पर, और साथ ही श्रोताओं, अब आगे हम बढ़ते हैं, एक खास दिन की बात आज करने जा रहे हैं, वो क्या है? तो श्रोताओं, सपनों से सितारों तक चलते हैं, चंद्रयान की बात करते हैं। आज का दिन भारत के वैज्ञानिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों से दर्ज किया गया है। श्रोताओं, 22 जुलाई 2019 वही दिन था जब भारत ने अपने दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। श्रोताओं, ये केवल एक रॉकेट की उड़ान नहीं थी, बल्कि 130 करोड़ भारतीयों के सपनों, विश्वास और आत्मविश्वास की भी उड़ान थी। उस दिन करोड़ों लोगों की नज़रें टीवी स्क्रीन पर थी, बच्चे स्कूलों में, युवा कॉलेजों में, वैज्ञानिक कंट्रोल रूम में, और आम लोग अपने घरों में इस ऐतिहासिक पल का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही काउंटडाउन ख़त्म हुआ और रॉकेट ने उड़ान भरी, हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। तो श्रोताओं, अब आपको याद आ गया होगा कि हम क्यों कह रहे थे आज का खास दिन खास एक बात होने वाली है। श्रोताओं, और आपको वो दिन ज़रूर याद आ गया होगा, और आज के दिन श्रोताओं, हर किसी के घर में टीवी ऑन था, हर किसी की नज़र चंद्रयान 2 पर थी, यानी कि टीवी स्क्रीन पर हम देख रहे थे, और जैसे ही ये सिलसिला शुरू हुआ, सबकी धड़कनें थम सी गई थी। श्रोताओं, भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान 1 वर्ष 2008 में भेजा गया था। इसी मिशन ने चंद्रमा पर भारी पानी के अणुओं की मौजूदगी के महत्वपूर्ण प्रमाण खोजे। इस सफलता ने भारत का आत्मविश्वास बढ़ाया, और फिर शुरू हुआ चंद्रयान 2 की तैयारी। तो श्रोताओं, चंद्रयान 2 की किस तरह से तैयारी हुई, क्या हुआ, आपको कार्यक्रम में आगे हम ज़रूर बताएंगे। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, और चलिए अब आपको सुनाते हैं चक दे इंडिया फिल्म का ये गीत सुखविंदर सिंह की आवाज़ में।

श्रोताओं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं और आपने अभी सुना ये गीत चकते इंडिया। श्रोताओं चंद्रयान 2 के दिन जिस दिन हम टीवी पर ये कार्यक्रम जो था वो लाइव देख रहे थे, ये गीत कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर बहुत छा गया था। हर किसी भारतीय के दिल में एक देश प्रेम जाग गया था, खुशी की लहर जाग गई थी। श्रोताओं उस दिन की बात करते हैं, 22 जुलाई 2019 का वो दिन था। समय लगभग दोपहर 2:43 हो रहे थे और स्थान था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। रॉकेट था GSLV Mk-3 M1 जिसे आज LV M3 के नाम से जाना जाता है। जैसे ही श्रोताओं उल्टी गिनती शुरू

सकता हूँ जो बुज़ुर्ग लोग हमारे उस समय लाइव उस कार्यक्रम को देख रहे थे टीवी पर, उन्होंने ये कहा कि भारत अब दुनिया की अग्रणी अंतरिक्ष शक्तियों में है। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने भारत माता की जय और इसरो को बधाइयाँ भी दी थी। श्रोताओं, इस मिशन के पीछे हजारों वैज्ञानिकों की वर्षों की मेहनत थी, दिन रात की रिसर्च थी, अनगिनत परीक्षण थे, बार बार की गणनाएं थी और फिर जाकर तैयार हुआ चंद्रयान 2। बिल्कुल, तो कार्यक्रम में इन बातों को हम जारी रखेंगे। आप सभी जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में लेते हैं एक और प्यारा सा गीत, सुनते हैं डोर फिल्म का ये गीत शौकत अमानत अली की आवाज़ में।

हाय क्रिम, गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये गीत, और इस गीत के साथ श्रोताओं हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 2 लॉन्चिंग डेट के बारे में। और श्रोताओं, इस बात को सुनकर कहीं ना कहीं हमें वो दिन याद आ ही गया, और हम लोग उस दिन सब काम छोड़ छाड़ कर टीवी के आगे बैठे थे और उस नज़ारे को देख रहे थे और गर्व महसूस कर रहे थे। श्रोताओं, थोड़ी सी बात करेंगे विक्रम लैंडर से संपर्क टूटने का क्या हुआ था। तो श्रोताओं, 7 सितंबर का दिन था 2019। पूरा देश फिर टीवी के सामने बैठा था। हर किसी को उम्मीद थी कि भारत इतिहास रचने वाला है, लेकिन अंतिम कुछ किलोमीटर पहले ही विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया। पूरे देश में सन्नाटा छा गया। वैज्ञानिकों की आंखों में आंसू थे। और श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संदेश था उस समय, श्रोताओं, विज्ञान में असफलता अंत नहीं होती, हर प्रयास हमें नई सीख देता है। उन्होंने उस समय इसरो प्रमुख के सिवन को गले लगाकर उनका हौसला बढ़ाया। ये दृश्य पूरे देश के लिए भावुक कर देने वाला था। श्रोताओं, बहुत लोग इसे असफल मान बैठे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। ऑर्बिटर पूरी तरह सफल रहा। उसने हजारों तस्वीरें भेजी। आज भी वैज्ञानिक उसका उपयोग कर रहे हैं। साथ ही श्रोताओं, चंद्रयान 2 ने हमें सिखाया, हार मानना विकल्प नहीं है। इसी अनुभव से सीखा गया, कमियों को सुधारा गया, और फिर आया 23 अगस्त 2023, जब भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग के इतिहास को रच दिया। श्रोताओं, कार्यक्रम में बातों को अब यहीं रोकेंगे और फिर से आपको लिए चलेंगे एक और गीत की ओर, इम्तिहान। इस फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये गीत रुक जाना नहीं। बिल्कुल श्रोताओं, हमें भी हार नहीं माननी चाहिए और सपने वही सच होते हैं जिन्हें पूरा करने का साहस हो। चंद्रयान 2 हमें सिखाता है कि मंजिल तक पहुंचने से पहले अगर ठोकर लगे तो रुकना नहीं चाहिए। हर असफलता सफलता की तैयारी होती है। इसी विश्वास के साथ भारत ने आगे बढ़कर श्रोताओं चंद्रयान 3 के माध्यम से इतिहास रचा और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि मेहनत, धैर्य और विज्ञान का कोई भी विकल्प नहीं है। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला, श्रोताओं आप सभी सुन रहे हैं इस समय आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला पर। और कार्यक्रम में अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। इस छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे कार्यक्रम में और आपसे करेंगे बातचीत। तो आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला, जिसे अभी आप सुन रहे हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला से, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं, आज कार्यक्रम में चंद्रयान 2 लॉन्चिंग डेट पर हम बात कर रहे हैं और हम अपने युवा साथियों से भी कुछ कहना चाहेंगे कि प्रिय युवा साथियों, चंद्रयान हमें सिर्फ चांद तक पहुंचने की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि ये सिखाता है कि बड़े सपने देखने का साहस रखिए और उन्हें पूरा करने के लिए लगातार मेहनत कीजिए। असफलता अगर रास्ते में आ जाए तो उसे मंजिल का अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत मानिए। जिस तरह इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 से सीख लेकर चंद्रयान 3 को सफल बनाया, उसी तरह आप भी अपनी हर चुनौती को सीख में बदल सकते हैं। भारत का भविष्य आपके विचारों, आपकी मेहनत और आपके नवाचार में बसता है। हो सकता है अगला बड़ा वैज्ञानिक, इंजीनियर, शोधकर्ता या अंतरिक्ष यात्री हमारे बीच बैठा कोई युवा ही हो। इसलिए जिज्ञासु बनिए, सीखते रहिए, सवाल पूछिए और अपने सपनों को उड़ान दीजिए। चांद तक पहुंचने का सपना देखने वाले ही इतिहास रचते हैं, इसलिए सपने बड़े देखिए, मेहनत ईमानदारी से करिए और अपने देश का नाम रोशन करने का संकल्प आज के दिन ज़रूर लीजिए। श्रोताओं, बातों को यहीं पर रोकते हैं और आपको लिए चलते हैं एक और गीत की ओर। बुलंदी फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में आप सभी के रेडियो सेट पर।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोता हूँ, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आप सभी सुन रहे हैं श्रोता हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ, और कार्यक्रम में गीत संगीत के साथ साथ हम आपके साथ कर रहे हैं श्रोता हूँ बातचीत आज के खास दिन की। श्रोता हूँ थोड़ी सी बात हम जरूर करेंगे, मस्तिष्क के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है क्या? हमारी बहुत सारी आदतें होती हैं श्रोताओं जो हम नहीं करते हैं और जिससे हमारे स्वास्थ्य पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसे कि रोज़ 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद हम नहीं लेते क्योंकि आजकल हम ज़्यादातर व्यस्त रहते हैं अपने मोबाइल के साथ, और सोने से पहले भी हमें मोबाइल चाहिए एक नींद की गोली की तरह, अगर वो हमारे हाथ में ना हो तो हमें नींद नहीं आती है। कहीं ना कहीं हम आदि बन चुके हैं इस मोबाइल के। श्रोताओं संतुलित और पौष्टिक भोजन हमें करना चाहिए जो कि हम आजकल शायद कम ही करते हैं, क्योंकि हम लोग भी देखते हैं जैसे ही हमें छुट्टी मिलती है या हमारे बच्चे डिमांड करते हैं तो हम लोग फास्ट फूड की तरफ जल्दी से चले जाते हैं। हमसे कुछ नहीं बन पाता तो हम बाहर से कुछ ना कुछ मंगवा लेते हैं। ये आदत श्रोताओं कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालती है। व्यायाम की ओर हम लोग बहुत कम जा रहे हैं श्रोताओं, बस हम छोटी मोटी वॉक पर ही अपना ज़्यादातर समय देते हैं। व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है श्रोताओं और ज़रूर करना भी चाहिए। तनाव कम करने के लिए परिवार और दोस्तों के साथ समय भी हमें बिताना चाहिए श्रोताओं। और बातों को यहीं पर अब हम देंगे विराम और आपको लिए चलेंगे फिर से एक गीत की ओर। दीवाना फिल्म का ये गीत अब आप सुनेंगे कुमार शानू और साधना सरगम की आवाज़ों में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो कुंचन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। अभी आपने सुना ये गीत। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमने बहुत सारी बातें की। आज हमने राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस पर बात की, साथ ही चंद्रयान 2 लॉन्चिंग डेट पर बात की, और अब हम बात करने जा रहे हैं विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस की। बिल्कुल श्रोताओं, 22 जुलाई को पूरी दुनिया विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस मनाती है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि जैसे हम अपने दिल और शरीर का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें हमारे ब्रेन की भी देखभाल करना ज़रूरी है। हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, हमारे शरीर का नियंत्रण केंद्र है। हमारी सोच, याददाश्त, निर्णय लेने की क्षमता, भावनाएं और हर छोटी बड़ी गतिविधि इसी पर निर्भर करती है। लेकिन श्रोताओं, आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी, तनाव, कम नींद, असंतुलित खान पान और अत्यधिक मोबाइल स्क्रीन का उपयोग हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। तो कुछ एक आदतों को बदलिए और अपने मस्तिष्क का भी ख्याल रखिए। श्रोता, मोबाइल की बात कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन की जो एक लत है वो बच्चों में ऐसी देखी जा रही है कि बच्चे मोबाइल फ़ोन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी बहुत सारी खबरें आ रही हैं जहां माँ बाप मोबाइल नहीं देते तो बच्चे उन्हें मारने पर उतारू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके हाथों में ये मोबाइल या उनमें ये आदत डालने में हमारा ही हाथ है। हम अगर अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो किस तरह से हम आप अपने बच्चों को सुधार सकते हैं। बहुत गंभीरता वाली बात है श्रोताओं, समझने वाली बात है। अगर आज हम नहीं समझे तो आने वाले समय में हमें पछताना पड़ेगा। तो अपने बच्चों का खास ख्याल रखिए, थोड़ा सा समय उनके साथ बिताइए, मोबाइल फ़ोन को अपने भी थोड़ा सा दूर रखिए और बच्चों को भी उनसे दूर रखिए। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं श्रोताओं और लिए चलते हैं आपको कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। कुर्बान फिल्म का ये गीत श्रोताओं, उदित नारायण और अनुराधा पोरवाल की आवाज़ों में आप सभी की रेडियो सेट पर।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं, कार्यक्रम का समय जैसे कि आप सभी जानते हैं प्रातः 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का रहता है और स्टूडियोज़ की घड़ी अब हमें इशारा कर रही है कि कार्यक्रम को सम्पन्न करने का समय भी आ गया है। तो चलते चलते आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवाएंगे इश्क ज़ादे फिल्म से, और इस गीत के साथ अब अपनी रेडियो दोस्त सुषमा को दीजिए कार्यक्रम को संपन्न करने की इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।

0: जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सचिन
2: पांच YouTube वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा
2: है? हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मीन्स ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। क्या बात है यार।
3: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
3: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन ऐप्स डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना पूरी जानकारी के कोई भी वित्तीय लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
4: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं आपको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं आपको। अब गोना गोना जगमग जगमग होना ही है, अब ठान के मुठ स्वच्छता की ज्योत जागी रहे, स्वच्छता की ज्योत जागी रहे।

0: पर एचआईवी कभी न दूं।
1: अगर आप मां बनने वाली हैं, तो एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में सलाह और एचआईवी टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को एचआईवी से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
2: एक कदम जिंदगी की ओर।
3: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहारी जी के।

0: अरे भैया ये आप सबने हेलमेट क्यों पहना है? ये तो बाइक वाला हेलमेट है ना।
1: अब आप नहीं पहन रहे तो सोचा हम ही पहन लेते हैं।
2: असलियत में हेलमेट किसको शोभा देता है ये तो सबको पता है। बाइक चलाते वक्त सर बचाएं, हेलमेट पहनें। Wear a helmet always, because helmet saves.
3: बस मास्टर जी, अब आप बेफिक्र रहिए, मैं गांव में सबको बता दूंगा।
4: क्या हो रहा है मास्टर जी, काहे बुलाए हमका?
5: तरक्की का हिस्सा बनाने मुन्ना।
4: तरक्की?
5: देखो मुन्ना, पहले गांव में रही बैलगाड़ी, फिर आई साइकिल, मोटरसाइकिल, टिका आई
4: तरक्की।
5: हाँ, पर अब भी लोग जाते हैं खुले में शौच करने, तो हमें कहाँ अपनाना चाहिए?
6: तरक्की, यानी अपने घर में अपना शौचालय।
5: सही जवाब। और अब तो शौचालय बनवाने के लिए जरूरतमंद लोग 12,000 रुपए की सहायता राशि भी प्राप्त कर सकते हैं।
7: भाई मुन्ना, अब तुम भी अपना नाम लिखवाए दो।
5: इस योजना का लाभ उठाने के लिए आज ही अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क करें।
8: अपनाए तरक्की की सोच नहीं,
6: अब खुले में शौच नहीं।
9: मैं नहीं करूंगी आज के बाद तुम्हारा कोई काम।
10: क्यों सुबह से मुंह फुला के घूम रही है ये?
11: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
10: किससे?
11: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है, रात को सपने में देखा था ना।

0: 91.2 मेगाहर्ट्स पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक

91.2 मेगाहर्ट्ज पर है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने, नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सचू ने
2: 5 YouTube वीडियो को लाइक करके 5 लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा
2: है? हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इतने से ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
3: क्या बात है यार।
4: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
4: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन ऐप्स डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना पूरी जानकारी के कोई भी वित्तीय लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
5: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं आपको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं आपको। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है, अब ठान के मुद्दे स्वच्छता की ज्योत जागी रहे, स्वच्छता की ज्योत जागी रहे।

0: पर HIV कभी न दूं।
1: अगर आप मां बनने वाली हैं, तो HIV टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के ICTC में सलाह और HIV टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को HIV से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
2: एक कदम जिंदगी की ओर।
3: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहारी जी के।

0: अरे भैया, ये आप सबने हेलमेट क्यों पहना है? ये तो बाइक वाला हेलमेट है ना।
1: अब आप नहीं पहन रहे तो सोचा हम ही पहन लेते हैं।
2: असलियत में हेलमेट किसको शोभा देता है ये तो सबको पता है। बाइक चलाते वक्त सर बचाएं, हेलमेट पहनें। Wear a helmet always, because helmet saves.
3: बस मास्टर जी, अब आप बेफिक्र रहिए, मैं गाँव में सबको बता दूंगा।
4: क्या हो रहा है मास्टर जी, काहे बुलाए हमका?
5: तरक्की का हिस्सा बनाने मुन्ना।
4: तरक्की?
5: देखो मुन्ना, पहले गांव में रही बैलगाड़ी, फिर आई साइकिल, मोटरसाइकिल, तिका आई
4: तरक्की।
5: हाँ, पर अब भी लोग जाते हैं खुले में शौच करने, तो हमें कहाँ अपनाना चाहिए?
6: तरक्की, यानी अपने घर में अपना शौचालय।
5: सही जवाब। और अब तो शौचालय बनवाने के लिए जरूरतमंद लोग 12,000 रुपए की सहायता राशि भी प्राप्त कर सकते हैं।
7: भाई मुन्ना, अब तुम भी अपना नाम लिखवाई दो।
5: इस योजना का लाभ उठाने के लिए आज ही अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क करें।
8: अपनाए तरक्की की सोच नहीं,
6: अब खुले में शौच नहीं।
9: मैं नहीं करूँगी आज की बात तुम्हारा कोई काम।
10: क्यों सुबह से मुँह फुला के घूम रही है ये?
11: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
10: किससे?
11: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है, रात को सपने में देखा था ना।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप सभी के अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे हैं और अपनी सेहत का ध्यान बहुत ही अच्छे से आप सभी रख रहे हैं बदलते मौसम के साथ। तो दोस्तों, इस हफ्ते भी आप सभी के लिए बहुत ही खास जानकारी, बहुत ही खास कार्यक्रम आप सभी इंजॉय करते हैं, मन संवाद एक प्रयास मन की ओर। और इस कार्यक्रम में आप सभी जुड़ते हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और साथ ही
1: प्रियसी के साथ।
0: जी, तो स्वागत है मैम आपका हमारी इस अगली कड़ी में हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं के साथ।
1: थैंक यू सो मच रुचिका
0: जी। तो कैसे हैं आप? और आप हमारे दोस्त तो बहुत ही अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं स्वास्थ्य का, आप किस तरह से अपना ध्यान रख रहे हैं?
1: हम अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं। बदलते मौसम के साथ गर्म पानी का जो उपयोग है वो बढ़ चुका। देखिए, जहाँ तक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसमें हमारा सिर्फ जो फिजिकल हेल्थ है वही नहीं, लेकिन हमारा मेंटल हेल्थ भी हमारे स्वास्थ्य का ही हिस्सा है।
0: बिल्कुल।
1: तो जैसे कि सुबह होती है, सुबह होते ही मॉर्निंग वॉक पर जाना, नेचर के बीच में पानी को बहते हुए देखना, सूरज की पहली किरणों को देखना, चिड़िया को आवाजों को सुनना, ये एक ऐसी चीज है जो हमारे दिन को बहुत ही बेहतर और खूबसूरत बना देती है। क्योंकि इसके साथ साथ हमें सिर्फ फिजिकली नहीं फायदा हो रहा है, हमें मेंटली इमोशनली भी बहुत फायदे होते हैं। उसके बाद वही अपना काम, अपना डेली का रूटीन, हेल्दी डाइट और समय से सो जाना।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, आपने बहुत ही ये एक सही और जरूरी बात आप सभी के लिए, बातों ही बातों में लेकिन देखिए कितनी जरूरी बात आप सभी तक पहुंची है। और इसे हम एक कह सकते हैं कि दिन की शुरुआत इस तरह से अगर हम करें तो बहुत ही प्यारा सा दिन जाता है, यानी कि सुबह की शुरुआत अच्छी होगी तो हर पल हमारे लिए अच्छा ही जाएगा। तो जैसे कि मैम ने कहा कि मॉर्निंग वॉक और प्यारे प्यारे पक्षियों की वो मीठी सी आवाज जब हम सुन लेते हैं तो सच में एक अलग ही सुकून मिल जाता है, और अगर थोड़ा बहुत भी आलस है तो वो भी दूर हो जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों, इस तरह से अगर हम सुबह की शुरुआत करें, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं मैम कि सुबह उठते ही बस ये होता है टेंशन कि बस हमें ये काम निपटाना है और फटाफट से बस उस रूटीन में हम शुरू हो जाते हैं।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो ये जरूरी सी चीजें अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, भूल जाते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड ही, और अभी हमने बात भी कर ली कि रूटीन किस तरह से, तो मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम में हमें अपने दोस्तों के लिए एक बहुत ही खास बात जो है वो बतानी चाहिए, या यूं कहें कि जानकारी दोस्तों तक पहुंचानी चाहिए। तो अभी बात की ना कि हर चीज हमारी हेल्थ के लिए जरूरी है, मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। तो आजकल मैम आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम, चाहे बच्चों की बात करें या बुजुर्ग, खैर उनकी एज के साथ साथ तो चेंजेस आते हैं, लेकिन बच्चों की या युवाओं की हम बात करें तो स्लीपिंग का एक पैटर्न जो है वो कहीं गड़बड़ा सा गया है?
1: डेफिनेटली।
0: तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, स्लीप अपने आप में एक रिदम के अनुसार काम करती है, इसको हम बोलते हैं स्लीप वेक साइकिल। तो जैसे प्रकृति में आप हर जगह देखेंगे तो हर चीज एक साइकिल के तौर पे चलती है, चाहे वो वाटर साइकिल हो या फिर आपका ब्लड सर्कुलेशन हो। तो यानी अंदरूनी दुनिया हो या बाहरी दुनिया, हर चीज एक साइकिल के तौर पे चल रही है। ठीक उसी प्रकार से हमारी स्लीप वेक साइकिल होती है, जो हमारी सर्काडियन, जिसको हम सर्काडियन रिदम भी बोलते हैं। तो ये एक ऐसी रिदम है जो नेचर के साथ अलाइन होकर हमारे जो हार्मोन्स हैं उसमें बदलाव लाती है और हमारी बॉडी का ख्याल रखने में हमारी सहायता करती है। तो जब हम स्लीप वेक साइकिल हमारी डिस्टर्ब होती है, देखिए इसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो जैसा आपको पता है रुचिका, आज के समय पे जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, जो फोन का यूसेज इतना बढ़ चुका है, और यहाँ तक कि इवन काम के लिए भी लोगों को नाइट शिफ्ट्स करनी पड़ती है
0: जी।
1: और लोगों में इतना अकेलापन आ चुका है क्योंकि फोन साथ में है हमेशा, तो एक डिस्कनेक्ट हो चुका है फ्रॉम ह्यूमन कनेक्शन इटसेल्फ, और एआई के बढ़ते हुए ये चीज बस बढ़ती ही जा रही है। तो इन सब के होते हुए हमारी स्लीप वेक साइकिल या स्लीप का डिस्टर्ब होना बहुत आम हो चुका है।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए, ये प्रॉब्लम जैसे अभी हमने बात की तो आपको भी लग रहा होगा कि ये तो आए दिन हमारे साथ भी होता है, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस बात को पिंच कर रहे होंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, ये जैसे ही हम अपने आप को कुछ चीजों से अलग करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार हमें रियलाइज हो जाता है, तो फिर हम अगर खुद को दूर करना चाहें लेकिन जो फैसिलिटीज हैं वो हमें और अपनी ओर आकर्षित कर ले लेती हैं। अब जैसे जहां हम ये चाह रहे थे कि हम फोन का यूज ज्यादा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम स्क्रीन टाइम को कम करें, लेकिन अब एआई का जो एक और न्यू एडिशन हमारी लाइफ में हो गई है तो फिर हम और छोटी छोटी सी चीजों के लिए उसके सहारे पे मतलब मोबाइल के साथ फिर से कनेक्ट हो गए हैं,
1: डिपेंडेंसी
0: बढ़ गई है। तो बिल्कुल दोस्तों, आज के कार्यक्रम में जो हम स्लीपिंग की बात कर रहे हैं तो उस पर बातचीत करने वाले हैं। बहुत खास ये जानकारी आप सभी के लिए रहने वाली है क्योंकि ये इशू बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि आजकल आप सभी जानते हैं कि बच्चा जन्म लेते ही थोड़ा सा टाइम अभी उसे होता है और फोन हाथ में पहले ही आ जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं नींद डिस्टर्ब होती जाती है, तो हमारी जो एक डेली रूटीन है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो जरूर बात करेंगे, लेकिन मैम एक प्यारा सा छोटा सा ब्रेक लें।
1: बिल्कुल
0: जी। तो दोस्तों मिलते हैं आप सभी से इस प्यारे से गीत के बाद। आप सभी इसी तरह से एंजॉय कीजिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: तो दोस्तों इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और बहुत ही खास ये कार्यक्रम मन संवाद एक प्रयास मटियोर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी के साथ।
0: जी दोस्तों, तो मैम आपके लिए बहुत ही खास जानकारियां लेकर आते हैं और ये हमारी डेली रूटीन से जुड़ी हुई होती है, तो जितना ध्यान से हम इन्हें जान सके, जितना ध्यान से हम इन्हें सुन सके और अपनी जिंदगी में से अप्लाई कर सके, वो हमारे लिए उतना ही बेहतर रहेगा। तो हमारी ये कोशिश है कि आप अपने आप को सतर्क करें हर एक छोटी सी छोटी बात के लिए। तो उसी के चलते आज हम ये बहुत ही खास स्लीपिंग से संबंधित बातचीत आप सभी के लिए लेकर आए। तो मैम अभी आपने बात की कि जो हमारा स्लीपिंग वेक साइकिल होता है तो वो किस तरह से रोल रहता है, क्या रहता है, तो सबसे पहले तो हमारे दोस्तों को ये जानना जरूरी है कि स्लीपिंग वेक साइकिल होता क्या है, इसका क्या रोल रहता है।
1: बिल्कुल, देखिए हमारे शरीर में एक हार्मोन रहता है जो हमें नींद प्रोड्यूस करता है बेसिकली, और इस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे डे टाइम या सनलाइट के एकदम डायरेक्टली प्रभाव में रहता है। तो जैसे जैसे दिन चढ़ता है, जैसे जैसे सनलाइट आती है, वैसे वैसे मेलाटोनिन का असर कम होने लगता है, तो इंसान वेकिंग स्टेट में आने लगता है। और जैसे जैसे शाम होने लगती है, सनसेट होने लगता है, वैसे वैसे मेलाटोनिन का प्रोडक्शन हमारे अंदर बढ़ने लगता है, जिसके कारण हमें नींद आने लगती है। अब आप देखेंगे प्रकृति में जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो चिड़िया हो या पेड़ पक्षी हो या पौधे हो, वो सब सनलाइट या डे और नाइट का जो स्केड्यूल है उसके अनुसार जागते हैं और सोते हैं, राइट?
0: जी।
1: ठीक इसी प्रकार से ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन अफसोस की बात है कि अब ये काफी ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड हो चुका है। जब हम बात करते हैं स्लीपिंग की, तो स्लीप की अपनी एक अलग साइकिल है। आपने नोटिस किया होगा रुचिका कि जब आप सोने जाते हैं तो कैसे धीरे धीरे जाकर नींद आती है।
0: बिल्कुल।
1: और उसके बाद कभी कुछ सपने आ रहे होते हैं, फिर कभी कुछ जो भी आज के दिन में जो भी कुछ हुआ होता है वो सारी चीजें बातें चल रही होती हैं, उसी का ही सपना भी बन जाता है। और सोते वक्त बीच बीच में हम करवटें लेते हैं, हमारी आंखें हल्की सी खुलती हैं, हम करवट लेते हैं और फिर से सो जाते हैं। और जब सुबह होती है तब नींद इतनी गहरी होती है कि उठने का मन ही नहीं करता, लगता है नींद कितनी अच्छी आ रही है।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: अब हमें कोई ना उठाए,
0: वो सर्दियों में खासकर बहुत ही ज्यादा हो जाता है,
1: बहुत ज्यादा हो जाता है।
0: जी।
1: तो ये सारा जो एक प्रक्रिया चल रही है सोने के समय पर, इसको हम बोलते हैं स्लीप साइकिल। और इसके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं जिसको हम इन्हीं बिहेवियर्स या इन्हीं एक्सपीरियंसेस के थ्रू महसूस करते हैं। तो इसमें देखिए दो तरह के फेज बताए जाते हैं। तो हर एक साइकिल जो है वो 1.5 आवर की है, और ये 1.5 आवर डिवाइड करे गए हैं टू डिफरेंट फेजेस में। पहला फेज होता है NREM, यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट। NREM में भी तीन डिफरेंट फेजेस हैं, तो तीन स्टेजेस हैं इसके। तो आपको पहले धीरे धीरे नींद आनी शुरू होगी, फिर वो नींद के बाद आपको कुछ सपने आने शुरू हो जाएंगे जो आपकी डेली लाइफ के रूटीन में होंगे, या आज जो भी कुछ हुआ वो बेसिकली मेमोरी कंसोलिडेशन हो रहा होता है कि आज हमने दिन में क्या क्या किया है। उसी में हमें कई बार थोड़े झटके भी लग जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि अरे हम गिरने वाले हैं और एकदम से आंख खुल जाती है, राइट? फिर आती है स्टेज 3, जहां पर वो डीप स्लीप की स्टेज में व्यक्ति पहुंच चुका होता है। NREM फेज जैसे ही खत्म होता है, फिर आता है सेकंड फेज जिसको हम बोलते हैं REM, यानी रैपिड आई मूवमेंट। ये एक ऐसा फेज है जिसमें व्यक्ति अपना बिल्कुल सुदबुद्ध हो के सपने में डूबा हुआ होता है। इसमें बहुत ही क्लियर ड्रीम्स आते हैं, यहाँ तक कि वो ड्रीम्स बहुत रियल लगते हैं। तो कभी ऐसे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि सपना देख रहे हैं और हम पसीने पसीने हो गए जब हम उठे, या जब हमने सपना देखा वो इतना रियल था कि हम बता ही नहीं सकते थे कि वो सपना था। तो वो चीजें एक्चुअली हमारे REM फेज में हो रही होती है। REM फेज का एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब जब REM फेज स्टार्ट होता है तब तब हमारा ब्रेन एक सिग्नल भेजता है कि हमारे सारे वॉलंटरी फंक्शंस ऑफ हो जाए। तो बेसिकली हमारे नेक के नीचे का जितना भी पार्ट है बॉडी का वो सारा शट डाउन हो चुका होता है फॉर वॉलंटरी पार्ट्स, जिससे कि हमारी नींद में जो भी हमारी मसल्स हैं वो सारे कम्प्लीटली रिलैक्स हो सके और पूरी तरीके से जो सेल्स का रिजुविनेशन है वो हो सके। देखिए दिन भर में हम लोग जो उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, उन सब की वजह से हमारे मसल्स में टेंशन डेवलप हो जाती है, और उसको रिलीज करने के लिए REM फेज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसी होती है स्लीप साइकिल।
0: तो मैम जैसे कि अभी आपने दो फेज बताए और स्लीप साइकिल का ये प्रोसेस बताया, तो जैसे आपने इसकी की टाइमिंग बताई,
1: वन एंड हाफ आवर
0: की। तो अगर हम बात करें तो ये मतलब कि रिपीट होते हैं?
1: यस yes.
0: है ना, क्योंकि वन एंड हाफ आवर तो पहले एक फेस होगा, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड,
1: yes,
0: है ना exactly. साइकिल
1: तो
0: में
1: ये साइकिल में चलता जाता है। तो फर्स्ट फेस चला, देन सेकंड, देन फर्स्ट, देन सेकंड, देन फर्स्ट, देन सेकंड। तो इसलिए हमारे यहाँ पर ये रिकमेंड किया जाता है

ना स्लीप साइकिल भी होता है, तो हमें तो ऐसा लगता है कि बस हम सो गए, हमें सपना आया, फिर हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये तो सच में रियल है। और कई बार तो सपने ऐसे होते हैं कि हमें डर लगता है कि कहीं ये सच में सच तो नहीं है, और जैसे ही नींद जाती है फिर हम थोड़ा सा सांस लेते हैं कि नहीं शुक्र है ये सपना ही था। तो इस तरह से भी होता है। तो लेकिन ये बात अभी पता चल रही है कि ये एक साइकिल है, हमारी स्लीपिंग साइकिल है, जिसमें कि ये सारी चीजें एक पैटर्न की तरह चलती रहती हैं। तो अभी आपने अभी ब्रेन वेव्स की बात की है, तो इसके बारे में हम जरूर जानेंगे कि स्लीप और ब्रेन का क्या रोल रहता है, क्या इसमें जो है मतलब क्या प्रोसेसिंग है। तो लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि एक छोटा सा ब्रेक होना चाहिए। तो आइए दोस्तों एंजॉय करते हैं कार्यक्रम में ये खूबसूरत सा गीत, उसके बाद फिर से मुलाकात होगी आप सभी की इस बहुत ही खास बातचीत के साथ।

0: तो दोस्तों 91.2 तो मेगा हर्ट्स पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम बहुत ही प्यार के साथ एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही इस खास बातचीत को अपनी जिंदगी के साथ रिलेट करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आइए हम भी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आप सभी को और ज्यादा सतर्कता की ओर लेकर चलते हैं, जानकारी की ओर लेकर चलते हैं। तो स्लीपिंग के आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं। तो मैम, अभी आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि किस तरह से जो हमारा स्लीपिंग साइकिल है उसके फेसेस रहते हैं और ये साइकिल किस तरह से प्रोसेस करता है, लेकिन आपने बीच में बात की कि ब्रेन वेव्स की जिक्र आपने किया, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि स्लीप का और ब्रेन का जो है क्या कनेक्शन है, किस तरह से ये कनेक्ट रहते हैं या क्या प्रोसेस रहता है इनका?
1: देखिए, ब्रेन तो हमारा कमांडिंग सेंटर है, वो हर कमांड ब्रेन से ही आती है
0: जी।
1: लेकिन जब हम लोग कुछ भी कॉग्निटिव फंक्शंस करते हैं, कॉग्निटिव फंक्शन यानी कि जो भी कोई काम कर रहे हैं थिंकिंग के एस्पेक्ट में, प्रोसेसिंग हो गया, एनालाइजिंग हो गया, ऑब्जर्विंग हो गया, ये सारे जो हम आम तौर पे काम कर रहे होते हैं जिनको हम लोग स्किल्स बोलते हैं अपने लेमेन टर्म्स में
0: जी।
1: तो ये बेसिकली इन सभी में हमारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रेन वेव्स का अपना एक रोल होता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारी जो बॉडी है उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू ही हर इंफॉर्मेशन फ्लो करती है। तो यानी कि There is an electrical field around us and जो भी electrons हैं उनकी अपनी एक wave है। तो basically brain किस तरीके से काम कर रहा है उसके लिए भी हम उसकी waves के आधार पर ही understand करते हैं। इसको हम बहुत simple terms में समझाने का प्रयास करेंगे रुचिका
0: जी।
1: देखिए, हमारे अलग अलग प्रकार की brain waves हैं जिसकी वजह से हम क्या काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं वो impact होता है। जैसे कि हमारी एक अल्फा वेव होती है। अल्फा वेव एक ऐसी ब्रेन वेव है, जब हम इंसान रिलैक्स्ड होता है उस समय पर ब्रेन में अल्फा वेव प्रेजेंट रहती है। अच्छा, इसमें एक वेव ही प्रेजेंट रहे ब्रेन में ये जरूरी नहीं है, अलग अलग वेव्स इकट्ठा भी प्रेजेंट हो सकती हैं। तो अल्फा वेव से अगर हम थोड़ा ऊपर जाएं तो उसको हम बोलते हैं बीटा वेव। तो बीटा ब्रेन वेव जो है उसकी फ्रिक्वेंसी अल्फा वेव से ज्यादा होती है। बीटा ब्रेन वेव जब होती है तब इंसान कुछ काम कर रहा होता है, कहीं पर फोकस्ड होता है, जैसे कि गाड़ी चलाना या अटेंटिवली कोई काम करना या ऐसी कॉन्वर्सेशन करना जो अभी हम लोग कर रहे हैं
0: जी।
1: बीटा वेव से और हायर एक वेव होती है जिसको बोलते हैं हम गामा वेव। गामा वेव की फ्रिक्वेंसी और भी ज्यादा हाई होती है देन बीटा वेव। गामा वेव तब डेवलप होती है ब्रेन में जब इंसान कोई बहुत ज्यादा हायर कॉग्निटिव फंक्शन कर रहा हो, जैसे कि एक पायलट एक प्लेन उड़ा रहा हो या फिर हम कोई बहुत मैथमेटिकल एल्गोरिदम सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरह के जितने भी काम होता है, एक सर्जन ऑपरेशन कर रहा है, ये सब चीजें में गामा वेव प्रेजेंट रहती है। फिर अगर हम अल्फा वेव जो एक रिलैक्स्ड स्टेट है, तो जब भी हम मेडिटेशन करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमारा अल्फा वेव में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। तो हमारे ब्रेन में वो अल्फा वेव आनी बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होता है बीटा में क्या रहेगा, ओवर थिंकिंग चलती रहेगी, राइट। फिर अल्फा वेव से जब हम नीचे आते हैं तो आती है हमारी थीटा वेव। तो थीटा वेव की जो फ्रिक्वेंसी वो अल्फा से कम है, समझ रहे हैं। तो अल्फा एक प्रकार से एक न्यूट्रल है जो रिलैक्स्ड है, उसके ऊपर बीटा और गामा है और अल्फा के नीचे हमारी स्लीपिंग स्टेट्स आ जाती है। तो उसके बाद आता है हमारा थीटा ब्रेन वेव और थीटा ब्रेन वेव में हमारी जो एनआरईएम स्टेज है वो स्टार्ट होती है। तो कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जब हम लोग रिलैक्स भी होते हैं और हम थोड़ा थोड़ा ड्राउजी भी फील करने लगते हैं, थोड़ी नींद आने लगती है और दिमाग नहीं काम करता। जैसे कि स्कूल में स्टूडेंट पढ़ रहा है, टीचर पढ़ा रही है, पर स्टूडेंट को नींद आ रही है और जो टीचर पढ़ा रही है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये वो स्टेज है जहां पर बच्चे के ब्रेन में अल्फा और थीटा वेव दोनों प्रेजेंट है। इस प्रकार से जब अल्फा वेव निकल जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि वो एक वेकिंग स्टेट आ जाती है, तो थीटा वेव जब रह जाती है तब हमारी स्लीप साइकिल स्टार्ट होती है, जहां पर हमारी एनआरईएम फेज स्टार्ट होता है। और उससे भी जब हम और थोड़ा नीचे जाते हैं तो हम बोलते हैं उसको डेल्टा वेव। जो डेल्टा वेव है दैट इज रिलेटेड विद आर आरईएम फेज, जो हमारी डीप स्लीप स्टेट है। तो इस प्रकार से ब्रेन वेव्स के आधार पे अलग अलग जो ब्रेन वेव्स आएंगी उसके आधार पे इंसान के बिहेवियर बिहेवियर्स, उनके फंक्शंस और उनकी स्लीप वेक साइकिल इम्पैक्ट होती है।
0: बिल्कुल दोस्तों, तो देख लीजिए कि किस तरह से स्लीपिंग के भी अलग अलग एक प्रोसेसिंग है, क्योंकि ये तो पहले हमने मैथ्स में सुना था, लेकिन आज हम इसको स्लीपिंग पैटर्न में भी इंजॉय कर रहे हैं, सुन रहे हैं और जान रहे हैं कि आखिर स्लीपिंग में भी ये अल्फा बीटा गामा थीटा जो है वो काम में आते हैं। तो देखिए दोस्तों, अक्सर बहुत सारे बच्चों के साथ, क्या बड़ों के साथ भी ऐसा होता है, जब हम किसी लेक्चर को सुन रहे होते हैं या कहीं बैठे होते हैं या हमें वो इंटरेस्टेड सा ना लग रहा हो, तब भी हमें नींद आनी शुरू हो जाती है, तो शायद हम उस थीटा वाली स्टेज में पहुंच चुके होते हैं। तो मैम, जैसे हम बात करें तो जैसे कि ये स्टेजेस की हम बात कर रहे हैं, अल्फा बीटा थीटा, तो इसमें हमारे लिए न्यूट्रल जो है वो अल्फा है, है ना। तो जैसे ये साइकिल है, पूरा प्रोसेसिंग है और स्लीपिंग का है, तो सबसे पहले तो हमारे लिए ये भी जरूरी है कि ये प्रोसेस होना है तो इसके लिए टाइमिंग भी, मतलब स्लीपिंग सोना भी तो जरूरी है। तो अक्सर आज के समय की हम बात करें तो आज के समय में हम नींद तो उतनी ले नहीं पाते, क्योंकि बच्चों की बात करें या बड़ों की ही बात करें, कई बार तो बच्चों को प्रेशराइज किया जाता है पढ़ाई के लिए, तो वो 10 11 12 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं, सुबह 4 बजे फिर से उठ जा रहे हैं, तो वो तो प्रॉपर उस साइकिल को पूरा कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि हमारे लिए जो एक सही वाली स्लीपिंग टाइम है या स्लीपिंग है, वो किस तरह से हम ले सकते हैं या कितने समय की होनी चाहिए।
1: बिल्कुल रुचिका, आपका जो प्रश्न है बहुत ही वैलिड है, लेकिन उससे भी ज्यादा वैलिड है जो आपने पहले इस प्रश्न से पहले बोला, यानी कि लोगों को इतना है प्रेशर कि वो अपनी नींद को पूरी नहीं कर पा रहे हैं और वो नींद को छोड़कर काम कर रहे हैं या वो पढ़ाई कर रहे हैं
0: जी।
1: सो हम इस पर नजर डालना चाहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कि कैसे सोसाइटी में नींद को खो के कुछ काम करने को एक बहुत ही ग्लोरीफाइड चीज मानी जा रही है
0: जी,
1: जो कि बहुत हार्मफुल है। क्योंकि अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब हुई, देखिए स्लीप साइकिल क्या है, एक हैबिट है, ये हैबिट बिल्डिंग है, अगर आपने इसकी आदत को बिगाड़ा तो फिर ये बिगड़ती चली जाएगी और इसको सुधारने में बहुत समय लग जाएगा
0: जी।
1: अगर हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो गई तो हमें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, हमें फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम दोनों होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा मानिए कि डेफिनेटली होगी ही होगी, क्योंकि स्लीप प्रॉब्लम फिर क्रॉनिक बन जाती है, क्योंकि ग्लोरीफाई किया जाता है कंटिन्यूएशन में, और बच्चा जो है जो 14 इयर्स का है, जो 10th में है, 16 इयर्स का है, 17 का है, जो 12th में है, एंड देन ग्रेजुअली जब वो कॉलेज में जाता है तब फिर उसको रहता है अब तो मुझको रात को नींद ही नहीं आती है, तो चलो मस्ती करते हैं
0: जी,
1: है ना, फोन देखते हैं, कुछ और करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो हमारा यूथ है वो पूरा बिगड़ता जा रहा है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि नींद को सेक्रीफाइस करके आप अपनी ड्रीम्स को अचीव करने का प्रयास ना करें, क्योंकि अगर आप ड्रीम को अचीव कर भी लेंगे तो भी आप अपनी हेल्थ को गवा देंगे, और ड्रीम अचीव करने के बाद, अपना हाई पैकेज मिलने के बाद, वो पैसे मिलने के बाद, आप अपनी हेल्थ में ही उन पैसों को लुटा रहे होंगे
0: जी।
1: तो इस साइकिल से भी बाहर आना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू रुचिका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपने मेंशन किया। नाउ कमिंग टू कि कितने नंबर, कितने आवर्स ऑफ स्लीप की रिक्वायरमेंट रहती है। देखिए वैसे तो ये एज से वेरी करता है, जैसे छोटा बच्चा है तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट तभी हो रहा होता है जब वो सो रहा होता है, तो उसको सोने की बहुत जरूरत है, तो वो उसको आराम से सोने दें। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसके जो स्लीपिंग टाइम है, स्लीपिंग आवर्स है, वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर बच्चा पहले स्टार्टिंग में 18 घंटे सो रहा है, फिर 16 घंटे सो रहा है, फिर 12 घंटे सो रहा है, धीरे धीरे वो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर यूथ की बात करी जाए तो देखिए 7 से 7.5 से 9 घंटे के बीच का टाइम बहुत अच्छा है, कुछ लोग 6 घंटे भी सोते हैं। अगर आप हैबिट बिल्ड कर लें टू स्लीप फॉर 6 आवर्स, जो कि आप एक यंग व्यक्ति हैं, अब आप एक एडल्ट हो चुके हैं, तो 6 आवर्स ऑफ गुड स्लीप इज आल्सो गुड, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा है। अगर आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आपको वो क्वालिटेटिव स्लीप उन 6 आवर्स में भी नहीं मिल पाएगी। तो ये जो एक आर का जो है वो, उसको आई वुड रिकमेंड कि 6 से 9 आवर्स के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द एज एंड द काइंड ऑफ वर्क You are doing, वो वैरी करता है
0: जी। बिल्कुल, तो दोस्तों बहुत ही गंभीर बात आप सभी के सामने रखी है, तो मुझे लगता है कि इस गंभीर बातचीत से निकलने के लिए थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तो लेते हैं एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद फिर से आप सभी के साथ जुड़ते हैं इस बहुत ही खास बातचीत के साथ।

0: नसरीन मोहन चाचा की भांजी है, बचपन से ही अंधी है बेचारी।
1: नसरीन
0: भांजी है, बचपन से ही अंधी है बेचारी।

0: तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस बहुत ही खास बातचीत के साथ। तो आज की इस बहुत ही खास बातचीत को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी के साथ।
0: जी तो उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी जरूर बहुत सारी बातें जान रहे हैं और उन्हें अपनी जिंदगी में जरूर अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जितना चेंज हम कर सके अपने आप को इन छोटी छोटी सी बातों से, उतना ही हमारे लिए बेहतर है। क्योंकि नींद की हम बात करें तो आज के समय में ये बहुत बड़ा इशू बन गया है। कई बार बच्चे सोना चाहते हैं तो पेरेंट्स सोने नहीं देते हैं, और अगर यूं बात करें हमें जब मतलब कि जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ जाती है तो वैसे वैसे हमें खुद को भी लगता है कि नहीं। और एक बात कही भी जाती है मैम कि अभी अगर आप सोएंगे तो बाद में जागना पड़ेगा, अभी आप अगर जागेंगे तो बाद में आराम से सो सकते हैं मतलब कि आराम कर सकते हैं, कहने कहावत के तौर पर कहा जाता है।
1: लेकिन

0: जब आराम करने के बाद आएगी तब आराम बचेगा नहीं।
1: तब हम हॉस्पिटल के चक्कर लगा हाँ, लगा के
0: तब परेशान रहेंगे कि नींद ही नहीं आ रही है, अब आराम कैसे करें।
1: तो दोस्तों कहने का मतलब एक ही है कि हम कहने को तो सही है मतलब कि मेहनत करना जरूरी है, लेकिन अपनी हेल्थ के उस पे बिल्कुल भी नहीं, मतलब हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं, हेल्थ को साथ में लेकर चलकर भी हम बहुत सारी मेहनत कर सकते हैं। तो ये बातचीत तो खैर बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन हाँ अपनी मेन मुद्दे पे आते हैं। तो मैम अभी आपने बात की थी कि स्ट्रेस की बात की, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात की, तो स्लीपिंग के साथ ये किस तरह से रिलेट होता है? यानी कि स्ट्रेस तो आज की डेट में हर किसी को परेशान करता ही है, छोटी छोटी बात जब हम मन में रखते हैं, दिमाग में रखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस का रूप ले लेती है। तो हमारी स्लीपिंग को स्ट्रेस किस तरह से इम्पैक्ट करता है?
0: देखिए नींद एक नेचुरल मैकेनिज्म है, ये प्रकृति ने ही एक ऐसा नियम बनाया है कि सिर्फ इंसान नहीं हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सोएगा, जिससे कि उसकी बॉडी को एक वापस से वो अपनी बैटरी रिचार्ज करेगा, क्योंकि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, नर्वस सिस्टम, मसल्स है, वो सब भी तो काम कर रहे हैं, उनको भी रिलैक्स चाहिए और ये हम भूल जाते हैं। हमें लगता है सिर्फ हमारा साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी ही है जो जी रहा है, पर हमारे भीतर के जो भी ऑर्गन्स हैं हमें उनका भी ख्याल रखना, क्योंकि वो भी हमारा उतना ही ख्याल
1: रखते हैं। बिल्कुल,
0: तो ये प्राकृतिक रूप से नेचुरल तरीके से ही हमें नींद आनी चाहिए, लेकिन होता क्या है, आती ही नहीं।
1: एक बार पैटर्न बिगड़ गया मुश्किल हो जाती है।
0: अब देखिए इसका साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है नींद का। नींद इंसान को तब आती है जब वो अल्फा स्टेट में एटलीस्ट रहे, अल्फा स्टेट से ही वो थीटा में जा सकता है, वो बीटा से सीधा थीटा में नहीं जाएगा, बीटा के बाद अल्फा आएगी, अल्फा के बाद आएगी थीटा, तभी आएगी नींद। अब अल्फा में कौन इंसान आ पाएगा? वो इंसान जो टेंशन से दूर हो, जो पीस ऑफ माइंड में हो। तो यदि आपका पीस ऑफ माइंड ही नहीं है तो अल्फा ब्रेन वेव डेवलप ही नहीं हो पाएगी, आप ओवर थिंकिंग में रहेंगे तो क्या होगा, बीटा वेव में ही रह जाओगे, अल्फा नहीं आएगी तो क्या होगा, थीटा नहीं आ पाएगी। सो बेसिकली जिस भी व्यक्ति के पास पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो चुका है जिनका, उनको नींद की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब उनका पीस ऑफ माइंड किस लिए खराब हुआ है, वो मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल स्ट्रगल हो सकती है, या कोई और बात हो सकती है। सो इसीलिए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ तक कि रुचिका, नींद को हम लोग अक्सर सोचते हैं कि रात को ऐसा क्या किया जाए जिससे कि फायदा हो या नींद अच्छी आए, लेकिन नींद कैसी अच्छी आ रही है इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारे डे टाइम के स्केड्यूल करता है। तो हमारा डे टाइम का स्केड्यूल कैसा है, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है फॉर हमें नींद कैसी आएगी रात को।
1: तो अभी आपने बात की कि नींद कैसे आए, तो एक बात ये भी है कि जब नींद नहीं आती है तो हम क्या मतलब अलग अलग टेक्निक्स अपनाते हैं ना। पहले तो हम गूगल पे सर्च करेंगे कि नींद नहीं आ रही है, हम क्या करें क्या ना करें, फिर हम सोचे कि बॉडी को थकाया जाए, जितना हम बॉडी को थकाएंगे फिर एटलीस्ट जो है वो नींद आ जाएगी। तो ऐसा भी पॉसिबल होता है?
0: ऐसा भी होता है। देखिए अल्टीमेटली क्या है ना, अगर हमारी बॉडी में एनर्जी बहुत ज्यादा है तो वो हमें सोने ही नहीं देगी, क्योंकि हमने एनर्जी को रिलीज ही नहीं किया। अल्टीमेटली क्या है कि हमारे डे टाइम में हम कितना काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। अब आप नोटिस करेंगे कि अगर आपके आसपास ही आप स्वयं ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत मेहनत से अपना काम कर रहे हैं और आप थक जाते हैं, तो आपको नींद आसानी से आ जाती है, क्योंकि जब इंसान थक चुका है तो बॉडी को पता है कि अब मेरे मसल्स में बहुत सारी टेंशन है, और ब्रेन उस चीज को समझता है और ब्रेन फट से सिग्नल्स भेजता है कि अब आपको सो जाना चाहिए, अब आपकी बॉडी और काम नहीं कर सकती।
1: नहीं कर सकते।
0: तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप जीवन में, आप डे टाइम में, दिन के दौरान आप अपने स्केड्यूल में क्या क्या कर रहे हैं।
1: तो ये जो एक तो होता है ना मैम नेचुरल प्रोसेस कि मतलब नेचुरली हमें नींद आ जाती है टाइम, एक तो जब हम शुरुआती दौर से गुजरते हैं तब हमारी रूटीन बिल्कुल परफेक्ट होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो वो पैटर्न कहीं ना कहीं बिगड़ता जाता है। तो क्या उसमें हमारी ये जो डेली रूटीन या लाइफ स्टाइल है ये इम्पैक्ट करता है, या हम इसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, या फिर ये नेचुरली चीजें होती हैं? नहीं है।
0: नहीं, ये नेचुरली बिल्कुल नहीं है। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रखा है। हमने नींद को, जो चीज नेचुरली आनी चाहिए, उसको हमने इतना इम्पैक्ट होने दिया है कि अब वो नेचुरली आ ही नहीं रही है। तो अब आप सोचिए वो कितनी ज्यादा डिसऑर्डर्ड हो चुकी है। तो देखिए, कोई भी चीज में अगर बैलेंस की कमी होगी तो वो गड़बड़ ही होगी, है ना।
1: बिल्कुल।

0: और सबसे बड़ी बात, लोगों को अक्सर लगता है कि नींद जो है वो एक क्वांटिटी है, एज इन उसकी ड्यूरेशन कैसी है, लोग उसको उस तरीके से समझते हैं। लेकिन नींद की सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं बट क्वालिटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। सो जितना बेहतर लाइफस्टाइल रहेगा उतना ज्यादा अच्छी और बेहतर हमारी नींद होगी। देखिए, इसके लिए ना रुचिका एक टर्म है, इसको बोलते हैं स्लीप हाइजीन। तो जिस प्रकार से हम अपना डेली हाइजीन का ध्यान रखते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारी स्लीप हाइजीन भी है।
1: उसमें क्या मतलब, किस तरह से हम उसका ध्यान कैसे रख सकते हैं? क्योंकि हमारी जो हाइजीन है वो तो खैर रख लेते हैं, लेकिन ये स्लीपिंग हाइजीन का थोड़ा सा अलग सा कॉन्सेप्ट है, तो इसके बारे में जानना तो बहुत जरूरी है।
0: देखिए, आपने ये स्लोगन सुना होगा, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, है ना
1: जी।
0: तो ये जो है ये कम्प्लीटली इन सिंक है विद आर डे नाइट साइकिल। सो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, जैसा हमने बताया शुरुआत में, मेलाटोनिन
1: जी।
0: तो अगर हम अपने लाइफस्टाइल को डे और नाइट की साइकिल के साथ अलाइन करेंगे तो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप फॉर टेकिंग केयर ऑफ आवर स्लीप वेक साइकिल, क्योंकि वो चीज क्या है ना, वो नेचुरली हमारी बॉडी उसको सिग्नल देती है। दूसरा, हमारा डेली का जो दिन का जो शेड्यूल है उसमें हमारी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, इसलिए व्यायाम बहुत जरूरी है। एक्सरसाइजेस करो, नेचर वॉक करो। सुबह सुबह उठते ही लोग कहते हैं आप सूर्य नमस्कार करो, क्योंकि वो आपके अंदर एनर्जी को बढ़ाता है। तो दिन भर आप जो काम करोगे उसके लिए आपके भीतर एनर्जी रहेगी। और रात को एक होती है मून, जैसे कि सूर्य नमस्कार है वैसे एक चंद्र नमस्कार है, तो वो आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है। तो शाम को जब आप करें तो आप योगा में चंद्र नमस्कार करें। ठीक इसी प्रकार से आप मॉर्निंग में आप जिम जाएं लेकिन शाम को जिम ना जाए, क्योंकि जिम जाकर क्या होता है, लोगों को लगता है हम थक जाएंगे तो सो जाएंगे, लेकिन नहीं, जिम जाने से हमारे शरीर में हमारा एड्रेनलिन बढ़ता है जिसकी वजह से मेलाटोनिन कम हो जाता है। सो उससे क्या होगा, क्या हमें पीसफुल माइंड रहेगा? हमारा नहीं रहेगा, हमारे ब्रेन में वो अल्फा वेव डेवलप ही नहीं हो पाएगी, वो हाई एनर्जी वाली वेव रहेगी जिसकी वजह से हम फिर से हमारी स्लीप साइकिल खराब हो जाएगी। तो स्लीप हाइजीन में ये बहुत ध्यान रखना है कि आप जो भी एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हैं उसमें आप जो हाई बीट चीजें हैं उसको आप मॉर्निंग के टाइम पे करें, और जो रिलैक्स वाली चीजें हैं, हाँ, जैसे कि हल्का योगा हो गया या फिर मेडिटेशन हो गया, प्राणायाम हो गया, ये चीजें आप लोग शाम को करें, जो आपको हेल्प करेगी टू फॉल इनटू स्लीप। इसके अलावा देखिए, खाना, पानी पीना, आपका फोन, ये अलग अलग चीजें हैं जिनका इस्तेमाल, जैसे अगर आपका सोने का समय आ रहा है तो इनको आप धीरे धीरे कम करना शुरू कर दें। शाम होते ही आप अपनी लाइट्स को डिम कर दें घर की, आप हल्की लाइट्स जलाएं जैसे कि लैंप हो गया, आप अपने फोन से दूर रहें और आप हल्का खाना खाएं, और फिर या जो भी अच्छा सा खाना खाइए, और सोने से करीब 2-3 घंटे पहले आप खाना खा चुके होने चाहिए, और उसके बाद पानी का कंजम्पशन थोड़ा कम करेंगे शाम को। दिन के समय पे खुला पानी पियेंगे लेकिन शाम को कम पियेंगे, क्योंकि फिर नींद टूटती है, आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, तो उससे आपकी स्लीप क्वालिटी खराब होती है। तो इन कुछ चीजों का आप ख्याल रखें, साथ में जो आपका रूम टेम्परेचर है वो आपका जो भी क्लाइमेट है वहां पे, जो भी वेदर है उसके अनुकूल होना चाहिए, उसके अनुसार होना चाहिए, और उसके साथ साथ एक कंफर्टिंग बेड हो, कंफर्टेबल चीजें हो, आपके पास रजाई हो, आपके पास कंबल हो, सॉफ्ट राइट काइंड ऑफ पिलो हो, वरना आपको नेक में पेन रहेगा और आप सो नहीं पाएंगे। सॉफ्ट म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी म्यूजिक आते हैं जिसमें आपके थीटा वेव्स रहते हैं रिकॉर्डेड, तो वो थीटा वेव्स वाले अगर आप म्यूजिक प्ले करते हैं या नेचर साउंड आप प्ले करते हैं तो दैट ऑल्सो हेल्प्स यू टू स्लीप, क्योंकि वो आपको रिलैक्स करते हैं। तो रिलैक्स करेंगे यानी कि अल्फा वेव प्रोड्यूस होगी, और अल्फा वेव प्रोड्यूस होगी तो थीटा वेव आने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। और जिनको दिक्कत होती है ना वो बुक रीड कर सकते हैं, जिनको बुक रीडिंग बोरिंग लगता है, दिस इज फॉर देम, देयर आर सम पीपल हु लव टू रीड बुक्स, ये उनके लिए नहीं है। बिल्कुल ये उनके लिए नहीं है, पर जिन लोगों को पढ़ाई से दिक्कत है वो पढ़ना शुरू कर दे
1: नींद आ जाएगी
0: डेफिनेटली। सो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, एंड ऑब्वियसली रुचिका ये सब जानते हैं कि फिर कैफीन का यूसेज हमें कम करना है।
1: बिल्कुल जी दोस्तों, तो बहुत ही खास बातें आप सभी ने जानी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से आप सभी के साथ मिलते हैं, और आप सभी उतनी देर के लिए इंजॉय कीजिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन, धर्मशाला गूंज अपने पन की।

0: दोस्तों इस प्यारे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं इस बहुत ही खास बातचीत के साथ। तो आइए अपनी बातचीत को बढ़ा दे हैं आगे और नींद की हम बात कर रहे हैं। तो नींद तो सबको प्यारी होती है, खास करके एग्जाम्स टाइम में बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा प्यारी होती है। तो मैम अभी आपने बात की कि जैसे हमारा जो सोने का टाइम होता है तो उस टाइम हमें जो है फोन खुद से दूर रख देना चाहिए, लेकिन ये बहुत कम लोगों के साथ हो पाता है कि फोन दूर रखते, क्योंकि हमें जरा सी नोटिफिकेशन की आवाज सुनाई देती है तो फटाफट से हम फोन उठा के जो है देखने लग जाते हैं कि किसका मैसेज आया है और किस चीज की नोटिफिकेशन है। तो मतलब वहां पे हम खुद को मैनेज नहीं कर पाते। तो इसमें हम किस तरह से अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं, कैसे हम अपनी उस टाइम स्लीपिंग को ध्यान में रखें?
1: देखिए हमारे पास जब फोन आया ना तो फोन में लोगों ने बहुत डिफरेंट प्रकार के फीचर्स डाले
0: जी,
1: लेकिन अफसोस की बात ये हम उन फीचर्स का सही तरीके से उपयोग नहीं करते
0: जी।
1: तो जब व्हाट्सएप है या कोई भी ऐसी चीज है तो बेसिकली हर एप्लीकेशन की सेटिंग्स में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आपको नोटिफिकेशन साउंड जो है आप उसको ऑन ऑफ या वाइब्रेशन पे कर सकते हैं। तो जहां तक रही मैसेजेस की बात तो आप अपने फोन के नोटिफिकेशंस को ऑफ कर सकते हैं और आप अपने स्लीपिंग मोड को भी एक्टिव कर सकते हैं, एक स्लीप मोड भी आता है। आप अपना इंटरनेट ऑफ कर सकते हैं जिससे कि जो भी हो इंस्टाग्राम हो कोई भी प्रकार का सोशल मीडिया हो वहां से लोग आपको अप्रोच ना कर पाए, और जो सिर्फ इमरजेंसी वाले हो आपके पेरेंट्स हो या कोई तो वही आपको रीच आउट कर सके अगर कोई इमरजेंसी या परेशानी की बात हो तो।
0: जी बिल्कुल, और साथ ही मैं ये भी जानना चाह रही थी कि जैसे हमने बात की कि हमें कम से कम जो है 6 से 9 घंटों की जो है नींद लेनी चाहिए, वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहती है। लेकिन कई बार हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हमारा दिन में भी हम बैठे हो तो सोने का मन करता है, जरा सा बेड पे बैठे कि लेटे या नींद आ जाती है, जरा सा बैठे कि नींद आ जाती है। तो वो मतलब एक पैटर्न बिगड़ा हुआ ही कह सकते हैं, जब पैटर्न वो डिस्टर्ब हो जाता है तो हम ज्यादा ही नींद में चले जाते हैं। तो 9 के फिर 18 घंटे ही मान के चलो, तो उसे हम कैसे समझे या किस तरह से उसे किस वे मिले?
1: देखिए जब भी कोई चीज बैलेंस से दूर जाएगी उसका डिसऑर्डर में तब्दील होना लिखा है। अब ऐसे समझिए कि जब भी ड्यूरेशन इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए या कम हो जाए, जैसे हम लोग बहुत पहले भी इस बारे में बात करी है, जब भी ऐसा हो तो यानी कि कोई ऐसी चीज है जो डिसऑर्डर का शेप ले रहा है। तो जब नींद बहुत ज्यादा आए वो भी एक डिसऑर्डर का हिस्सा है, और जब नींद कम हो जाए वो भी एक डिसऑर्डर का हिस्सा है, और इसका डायरेक्ट एक इम्पैक्ट पड़ता है फ्रॉम स्ट्रेस।
0: जी तो दोस्तों ये स्लीपिंग डिसऑर्डर में जाके जो है रिलेट हो जाता है, तो इसके बारे में भी हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि स्लीपिंग का ये एक बातचीत ही इतनी गंभीर है और लंबी है और गहराई से जानने वाली बातचीत है, क्योंकि ये नींद का इशू जो है ना ये सबके साथ है, और चाहे बड़े हैं चाहे बच्चे हैं चाहे कोई भी है, किसी भी एज ग्रुप के साथ हम निकल रहे हैं तो हर किसी को ये फेस करनी पड़ती है। तो ये बातें जानना हमारे लिए बहुत जरूरी, तो इसलिए हम आपको एक एक बात जो है गहराई के साथ बताना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि शॉर्ट वे में बता के जो है, एक कहते हैं ना कि सर का बोझ नहीं उतारना है हमें, धीरे धीरे करके आपको स्टेप बाय स्टेप जो है सारी बातें आप सभी तक पहुंचानी है, ताकि आप अपनी जो एक डेली रूटीन है उसे भी एक सही ढंग से सेट कर सकें और अपनी हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को, सारी चीजों को न्यूट्रल वे में जो है बैलेंस कर सकें। तो ये जो स्लीपिंग डिसऑर्डर है ये हम अगले एपिसोड में आप सभी के साथ इस पे एक डिटेल में बातचीत करेंगे, गहराई से जानेंगे कि स्लीपिंग डिसऑर्डर जो है वो क्या होता है, किस तरह से होता है और इसमें क्या प्रोसेसिंग रहती है, कैसे हम खुद को इससे बचा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में हमने बात की है स्लीपिंग की। तो देख लीजिए दोस्तों नींद कहने के लिए छोटा सा शब्द है, लेकिन इसकी आज हमने गहराई को जाना है तो बहुत ज्यादा है। तो मैम आज की ये बहुत ही खास बातचीत मुझे उम्मीद है कि हमारे दोस्तों के लिए बहुत ही एक इम्पैक्ट रही होगी, है ना, अपनी जिंदगी में प्रभावशाली रहेगी अगर वो चाहेंगे, क्योंकि जिसे अपनी हेल्थ से लगाव होगा, जो चाहते हैं कि हम हॉस्पिटल्स के चक्कर ना लगाएं, तो वो जरूर अपने फोन को भी खुद से दूर रखेंगे और वो नोटिफिकेशंस जो है वो भी ऑफ रखेंगे। तो आज के कार्यक्रम का समय फिलहाल जो है हमारा इस समय अलविदा लेने का हो चुका है। तो बहुत ही खास बातचीत आप सभी के साथ साझा की है दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर से आप सभी के साथ मुलाकात होगी, लेकिन लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि अगर आपको इस बात से संबंधित अभी भी कोई कंफ्यूजन है, अभी भी कोई डाउट है, तो आप मैम के क्लिनिक में जाके उनके साथ जो है डिस्कस कर सकते हैं या उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मैम अपने सेंटर का और फोन नंबर जो है हमारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
1: जी, सेंटर का नाम है वैराग्य माइंड एंड वेलनेस सेंटर और फोन नंबर है 9354134057। ये शीला धर्मशाला में स्थित है।
0: जी दोस्तों, तो आप सभी को हमने अपना नंबर भी बता दिया है और सेंटर का पता भी बता दिया है। तो अभी भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो जरूर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं या आप जो है सेंटर में जाके डायरेक्ट जो है डिस्कस कर सकते हैं। तो फिलहाल दीजिए अनुमति अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी को
0: कार्यक्रम संपन्न करने की। फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई बातचीत के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। कार्यवाही शुरू होते ही सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उपलब्धि, पर्यावरण अनुकूल परिवहन और मानवता के हित में वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग की दिशा में भारत की प्रगति को और मजबूत करेगी। इसके बाद सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन को स्थगित कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार

0: में आईएनएस कादंबा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। आईएनएस मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
1: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न्ड, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न्ड।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की। बैठक के दौरान उन्होंने हिंद प्रशांत पर आसियान के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए क्षेत्रीय चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया। समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा आपात कार्रवाई जैसे विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। तीर्थयात्रियों को यात्रा फिर शुरू होने के संबंध में आधिकारिक माध्यमों से जानकारी लेने की सलाह दी गई है। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सचिन है।
2: पांच YouTube वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
2: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मीन्स ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
3: क्या बात है यार।
4: अरे ठहरो,

0: करने जा रहे हो?
1: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं?
2: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर? ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना पूरी जानकारी के कोई भी वित्तीय लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसे। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
3: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। अब गोना गोना जगमग जगमग होना ही है, अब ठान के मुट स्वच्छता की ज्योत जागी रहे, स्वच्छता की ज्योत जागी रहे।

0: पर एचआईवी कभी न दूं।
1: अगर आप मां बनने वाली हैं, तो एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में सलाह और एचआईवी टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को एचआईवी से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
2: एक कदम जिंदगी की ओर।
3: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है, अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहार।

0: अपना शौचालय।
1: सही जवाब। और अब तो शौचालय बनवाने के लिए जरूरतमंद लोग 12,000 रुपए की सहायता राशि भी प्राप्त कर सकते हैं।
2: भाई मुन्ना, अब तुम भी अपना नाम लिखवाए दो।
1: इस योजना का लाभ उठाने के लिए आज ही अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क करें।
3: अपनाए तरक्की की सोच नहीं,
0: अब खुले में शौच नहीं।
4: मैं नहीं करूंगी आज के बाद तुम्हारा कोई काम।
5: क्यों सुबह से मुंह फुला के घूम रही है ये?
6: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
5: किससे?
6: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है। रात को सपने में देखा था ना।

दोस्तों मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिता के साथ। तो आइए श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों, आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो रंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो रंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस प्यारे से पंजाबी गीतों के सफर को आप सभी एंजॉय जरूर कर रहे होंगे। बिल्कुल, आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से सुनते हैं एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों आप सभी एंजॉय कर रहे थे पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सचू ने
2: 5 यूट्यूब वीडियो को लाइक करके 5 लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहे?
2: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए। इट मीन्स ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
3: क्या बात है यार।
4: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
4: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना पूरी जानकारी के कोई भी वित्तीय लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
5: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं आपको। निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं आपको। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। अब ठान के मुद्दे स्वच्छता की ज्योत जागी रहे। स्वच्छता की ज्योत जागी रहे।

0: पर एचआईवी कभी न दूं।
1: अगर आप मां बनने वाली हैं, तो एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में सलाह और एचआईवी टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को एचआईवी से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
2: एक कदम जिंदगी की ओर।
3: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा, कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहारी जी।

0: अरे भैया, ये आप सबने हेलमेट क्यों पहना है? ये तो बाइक वाला हेलमेट है ना।
1: अब आप नहीं पहन रहे तो सोचा हम ही पहन लेते हैं।
2: असलियत में हेलमेट किसको शोभा देता है ये तो सबको पता है। बाइक चलाते वक्त सर बचाएं, हेलमेट पहने। वेयर अ हेलमेट ऑलवेज बिकॉज हेलमेट सेव्स।
3: बस मास्टर जी, अब आप बेफिक्र रहिए, मैं गांव में सबको बता
4: दूंगा। क्या हो रहा है मास्टर जी, काहे बुलाए हमका?
5: तरक्की का हिस्सा बनाने मुन्ना।
4: तरक्की?
5: देखो मुन्ना, पहले गांव में रही बैलगाड़ी, फिर आई साइकिल, मोटरसाइकिल, टीका आई
4: तरक्की।
5: हाँ, पर अब भी लोग जाते हैं खुले में शौच करने, तो हमें कहाँ अपनाना चाहिए?
6: तरक्की, यानी अपने घर में अपना शौचालय।
5: सही जवाब। और अब तो शौचालय बनवाने के लिए जरूरतमंद लोग 12,000 रुपए की सहायता राशि भी प्राप्त कर सकते हैं।
7: भाई मुन्ना, अब तुम भी अपना नाम लिखवाए दो।
5: इस योजना का लाभ उठाने के लिए आज ही अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क करें।
8: अपनाए तरक्की की सोच नहीं,
6: अब खुले में शौच नहीं।
9: मैं नहीं करूंगी आज के बाद तुम्हारा कोई काम।
10: क्यों, सुबह से मुंह फुला के घूम रही है ये?
11: मेरी बीवी को पता चल गया।
9: मैं नहीं करूंगी आज के बाद तुम्हारा कोई काम।
10: क्यों, सुबह से मुंह फुला के घूम रही है ये?
11: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
10: किससे?
11: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है, रात को सपने में देखा था ना।

सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। पहले तो तुह सारे दी माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। तुह सारे ठीक ठाक होने कने शुरुआत अहां कार्यक्रम दी करी दी है, कने तुह सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर च अहां कने जुड़ी सकते, कने अहां कने गलबात जेड़े से जरूर करी सकते। तो जरूर अहां गलबात भी करनी है, कने पहले अहां शुरुआत करनी है कार्यक्रम दी, आगाज जेड़े से करी लेंदे न कार्यक्रम दा इस प्यारे दे गीत कने, फिर ही बाकी दियां जेड़ा गल्लां न से तुहां तक ले करी आउंदे न।

0: ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे ही सुनिया ये प्यारा दे या गीत प्यारी दे शुरुआत इसी शुरुआत करने हाँ फिरी दे वापिस अपनी गलबात ऊपर पूछी हो न कने तो हाँ सारे भी गलबात करने जरूर जड़े से जुड़ी सकते कने अपनी फरमाइश दा जड़ा गीत है सभी तो हाँ सुनी सकते क्योंकि हर कुसी दी अपनी अपनी पसंद होंदी हर कुसी दा जिहड़ा गीत संगीत सुनने दा जिहड़ा नज़रिया है या गीत संगीत आहदी जिंदगी च कितनी अहम भूमिका अदा करता है से तो हाँ सारे जो ही पता है। जलू अहाँ गीत संगीत सुनते न थोड़ा दिया डांस भी करते न थोड़ा दिया गुनगुनाते भी हैं अगर अहाँ दी पसंद का गीत लग्या होंदा तो हाँ थोड़ा दिया इस गीते जो गुनगुनाते भी हैं कने अपना जेड़ा मन है उस जो थोड़ा दिया शांत भी जरूर करते न तो शो तो ये जेड़ा गीत संगीत हैं से कुथी ना कुथी अहाँ दे मने जो शांति भी दिंदे न तनाव मुक्त भी अहाँ जो करते न कने अहाँ दे जेड़ा गीत हैं चाहे से कोई भी गीत है से हमेशा अहाँ जो कुछ ना कुछ संदेश भी जरूर दे करी जानते हैं तो अहाँ दे पहले जेड़ा श्रोता ने से अहाँ कन्ने जुड़ चुके हैं ना कर दें तिना कन्ने गल बात। हेलो
1: हेलो नमस्ते शेषी जी।
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है ना।
1: धन्यवाद जी। बिल्कुल जी ठीक ठाक तो सुना दो ठीक ठाक ने
0: हाँ भी ठीक ठाक है जी थोड़ा बरसात दा मौसम है ना जी।
1: जी जी बिल्कुल
0: जी जी ता सर्दी जुखाम जेड़ा से चले ही रहंदा ना जी।
1: हाँ जी सब है
0: जी जी तो तुहां दसा तुहां ठीक हैं घर है सारे ठीक ठाक हैं ना।
1: हाँ जी बिल्कुल जी अहाँ ठीक होइए हुण तुहां होइए मगर
0: जी जी जी तो आज यहाँ जेड़ा खास दिन है से बना दिन राष्ट्रीय आम दिवस कने तुहां जरूर अंबा दा जेड़ा सीजन है से चली हाली भी थोड़े बहुत हैं पर कुछ कुछ ही हैं पर तुहां भी अंबा दा जेड़ा नो है या हरेक
1: हाँ
0: प्रकार
1: जी
0: दी जेड़ा सब्जियां बोली सकदे या हाँ चटनी बोली सकदे
1: चटनी
0: कुछ ना कुछ
1: बोल
0: तो हाँ खादे ही होने
1: बिल्कुल जी सब कुछ ही
0: सब कुछ खादे आ
1: और क्या बिल्कुल जी
0: ता बड़ी अच्छी गल है जी तो हाँ क्योंकि नेचुरल चीज है ना जी।
1: हाँ जी बिल्कुल जी नेचुरल चीजें तो खाना चाहिए थी ना। देखा आजकल
0: जी
1: बड़ा कुछ चली पिया ना तो
0: जी
1: बड़ी बीमारियां करना बड़ा कुछ चल दिख रहा। पहले
0: जी
1: पुराने बुजुर्ग है साढ़े तो दे
0: जी
1: रहे नहीं खांदे है दे दिए ना तो ठीक रहते थे।
0: जी जी
1: आजकल दिखा तो हम सब्जियां लिया कुछ भी लिया हर किसी जो इंजेक्शन लगे कोई क्या
0: जी
1: खादा भी कदी कदी चली पी ना
0: जी
1: कहना
0: हर
1: जो अपने होंगे ना से अपने घरे की कहना चीज कहना जड़ी है नेचुरली से नेचुरली है।
0: जी अच्छा तो हाँ क्या क्या घर है लगे अपने
1: घर लगाया बे मैं लेट हुई लगाने बे मेरी थोड़ी तबीयत खराब हुई थी पीछे
0: जी
1: ता ए बे मेरा सारे भी नहीं है क्या सब कुछ लेट होने लगी ना लगना।
0: जी अच्छा।
1: हाँ जी
0: जी वे लगना शुरू हो गया ना जी
1: हाँ जी लगी ना फुले पे ना लेना
0: जी
1: पिछले साल तो हाँ इस टाइम कितनी सब्जियां खाए बैठे थे
0: जी दिखा अपनी सब्जियां लगाने दे भी कितने ज्यादा फायदे है ना
1: और
0: जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी हाँ यूँ दुकाना जाने दी जरूरत नहीं पौंदी
1: नहीं
0: इसी
1: पौंदी कने
0: कन्ने
1: अपनी है ना
0: ताजी सब्जी है
1: हाँ जी जालू कोई परौना
0: मन
1: पछाई या पीला अचानक तो तालू चलो घरे दी सब्जी बनाई ये
0: जी
1: होई
0: कन्ने
1: जंदा ना
0: जालू मन कीता तालू तोड़ी ले
1: तोड़ ले के
0: जालू
1: ना
0: जी
1: घरे दी सब्जी दी ना बरकत बड़ी होंदी जड़ी बरकत हाँ दुकाना ते चीज
0: जी
1: लोनी है ती सारी दिन नहीं बरकत होंदी
0: जी जी
1: कने घरे ही चीजा बड़ी फिर बरकत होंदी।
0: जी
1: कुछ भी सब्जी नहीं हुआ तो हाँ दो फलियां तोड़ा दो भिंडियां तोड़ा
0: जी
1: दो टमाटर पा दो प्याज पा तो सब्जी हुई जी
0: जी
1: है ना
0: जी
1: कहने से सब्जी स्वाद भी बड़ी लगती।
0: जी वहाँ दा टेस्ट ही अलग होंदा ना जी
1: हाँ जी
0: जी ता इंदु जी आज तो हाँ कुंडिया गीत सुनना पसंद करके
1: मैं बोलिया हूँ तुहा नचने की गल आई तो हाँ भी नची लेंदे मैं तुम जो बोलते को नचने वाला गाना ला हाँ नची लेंदे
0: जी तो जरूर कुंडिया गाना तो हाँ सुनने नचने वाला जान जो
1: लाए जे
0: सुन
1: तुहा अपनी पसंद का जेड़ा भी
0: जी एक गाना है बड़ा प्यारा गाना है से आया न्यू ही आया ली ना जी
1: कोई नहीं किसी लाए दे सही सुन लेना हाँ
0: जी मुझे तो बड़ा प्यारा लग गया पर तुम्हें तो पता नहीं लगना है कि नहीं
1: तो
0: लगना
1: जो प्यारा लगा तो संजो भी प्यारा लगना
0: जी जी जी तो जरूर है गीत तुहां तक पहुंचान देन ना जी।
1: धन्यवाद जी।
0: जी तुहां दा भी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी। तशो तो तुहां सारे जो ही ले करी चल देन गीत दी और सुन देन इस प्यारे दे गीत जो कने थोड़ा दिया अपना जेड़ा मन ने शांत करी लिया कने नचना चाहते तो जरूर थोड़ा दिया डांस भी करी लिया क्योंकि डांस करना भी कई बार अहम वास्ते जरूरी होता।

बाड़ी तो जरूर तीन तक के फरमाइश पहुँचाई कने तो हाँ सारियां भी इंजॉय की कने फिरी ते वापिस हाँ अपनी गलबात उपर आई आते न 22 जुलाई 2026 की गल करिए अजकना जड़ा दिन है से कहो खास है हाँ वास्ते हर दिन की अपनी अपनी खासियत होंगी कने अजकना जड़ा दिन है या पूरे देश जड़ा राष्ट्रीय झंडा जड़ा दिवस है यानी कि 22 जुलाई 1947 जड़ा हमारा अहां दा जड़ा संविधान है संविधान सभा च जड़ा तिरंगा है तिरंगे जो जड़ा से स्वीकार कित्या था अजकने दिन जड़ा बैठक हुई थी तिस जड़ा से जड़ा राष्ट्रीय ध्वज है तिस जो जड़ा से स्वीकार कित्या था इसी कन्ने जड़ा साहस है शांति है कन्ने समृद्धि का जड़ा प्रतीक है स्याह जो दिखने जो मिलता है कन्ने तिरंगा जड़ा स्याह दी आन है बान है शान है स्याह जो हर दिन कुछ ना कुछ जरूर सिखांदा है इसी कन्ने अहां आज जड़ा खास दिवस बना देन से बना देन राष्ट्रीय आम दिवस सभी तो हाँ इंजॉय करा देन रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मेरी गलबात जड़ा है सभी जरूर इंजॉय करा दे उन्हें न कने इसी कन्ने जड़ा बरसात दा मौसम है सभी तो हाँ इंजॉय करा दे उन्हें न कने अपना जड़ा ख्याल है बरसात दे मौसम कन्ने रखा दे उन्हें न क्योंकि बरसात दे मौसम कन्ने अपना जड़ा ख्याल है सभी रखने की जरूरत है थोड़ा दिया मस्ती भरे दिन हैं छुट्टियां वाले दिन हैं बच्चों वास्ते तो वैसे भी ये खास दिन हैं कने तिना दिया भी फरमाइशा जड़ा न से जरूर रहनिया न तो अगली जड़ा फरमाइश है सभी तुहां तक पहुँचानी है कने तुहां मेरी गलबात जड़ा है से जरूर सुना दोने न तो इसी गलबात कने अहां अगे बढ़ते न कने अगली जड़ा फरमाइश है से अहां तक पहुँची हो वह व्हाट्सएप के माध्यम ने कने तिना दा नाम है दीपांशु जी कने सानवी जी तो सानवी जी तक अहां ये गीत पहुँचाना है कने दीपांशु जी तक क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी पसंद है बच्चों की भी अपनी पसंद है चाहे से बड़े न चाहे छोटे न चाहे बुजुर्ग हैं हर किसी की अपनी अपनी पसंद है तो ज़रूर इसी पसंद और लेके तो हम सारे जो ही चलते न कने पहुँचाते न ये अगली फरमाइश तुह तक

0: અહંબોલા દિન રેડિયો ગુંજન ધર્મશાલા તે કને તો હા સારી ઇસ વક્ત કાર્યક્રમ એન્જોય કરા દિન આપની રેડિયો તો શશી કને ફિરે તે વાપિસ તો તક પહોંચ્યો ને તો તક તો વૈસે ભી યહાં પહોંચ્યો યાન કને તો હા ભી જરૂર અપના અપના રેડિયો સેટ ઓન કે તે ઓણે યા મોબાઈલ ફોન સુણા દે ઓણે ને જરૂર અગર તો હૈ કાર્યક્રમ જો નહીં સુણા દેન તો જલ્દી જલ્દી અપના रेडियो सेट ऑन करा या मोबाइल फ़ोन ऑन करा कने रेडियो गुंजन धर्मशाला जड़े से सुनना शुरू करी दिया फ्रिक्वेंसी जड़े से ज़रूर तुहां तक पहुँचाई दे न कने तुहां सुनी भी ली होनी है 91.2 MHz पर जड़े से तुहां सारे ही अपना माटी दी मह कार्यक्रम दा सफ़र इंजॉय करी सकते इसी सफ़र जहाँ जड़ा गलबात करा देन से करा देन हर साल जड़े से 22 जुलाई जो हाँ क्या जड़ा खास दिन बना देन बार बार में तुह तक नहीं पहुँचाना है वैसे तो तुह सुनी ले आना है राष्ट्रीय आम दिवस जड़े से आज हाँ बना देन इसका उद्देश्य क्या है बनाने दा या इसकी जड़ा खासियत क्या है तो श्रोतो जड़ा अंब है अंब की अहाँ गल करा देन ਤਾਂ ਫਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਬ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬ ਜਿਹੜਾ ਸੇ ਇੱਕ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਸੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬ ਦੀ ਅਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਬ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੇ ਚੱਲਿਆ ਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿਸਦਾ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਂ ਤਿਸਦਾ खाद देना तो हाँ या तिसदा अंबुआ बनाया या तिस अंबे दी तो हाँ कच्चे अंबा दी तो हाँ चटनी बनाई मतलब तो हाँ सब्जी भी बनाई हर किसी दा अपना अपना तरीका है ना खाने दा हाँ किस प्रकार ये जड़ा फल लान या ये जड़ा नेचुरल सब्जियाँ ना तिना दा उपयोग कर देना से यहाँ पर निर्भर करता है तने अजकने दौर की अहाँ गल करिए अजकल तो अहाँ ज़्यादा जड़े से खाना पसंद नहीं करते कई कई जड़े से खाना पसंद भी करते पर बच्चे हमेशा यही बोलते कि अहाँ ये सब्जी नहीं खानी है या बच्चे दियाँ जड़ा फरमाइश है से भी अपनी अपनी आदि पर थोड़ा दिया पिछे हटी करी अहाँ दिखते न या जड़ा बुजुर्ग हैं सभी यहाँ जो कुथी ना कुथी यही बोलते थे कि यहाँ तो ज़्यादातर अंबा नहीं जड़े से रोटी खाते थे या रोटियाँ खाते थे पर अहाँ भी खाई कर दिख देना पर कुथी ना कुथी जड़ा सेहत है ना से पहले यहाँ जो दस्तक देना शुरू करी दी है तो इसी कन्या अहाँ दे अगले जड़ा श्रोता है ना तीना कन्या यहाँ करनी है गल बात हेलो
1: नमस्कार मैडम जी
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है ना
1: ठीक मैडम जी
0: हां जी बिल्कुल ठीक ठाक है जी तुहा ठीक ठाक है ना
1: हां जी मैडम जी बरखा लगी जो
0: बरखा लगी है जी
1: हां जी हां जी
0: जी ता बरखा कुथु लगी है जी अपने
1: जेड़ा ये धर्मशाला जी
0: जी अच्छा धर्मशाला च
1: हां जी
0: जी कने अपना प्यारा दिया नाम भी जरूर देसी दिया जी
1: मेरा नाम विजय कुमार है धर्मशाला से बोल
0: जी ता विजय जी बरखा दे मौसम से कोई भी काम नहीं होना ना जी
1: बैड भी साडा कम बुटीक है ना साडा पड़ा
0: जी अच्छा
1: सामने ना कम होना साडा
0: जी ता अच्छी गल है जी ता
1: अहे नहीं ये चक्कर कोई भी हड़ भी
0: जी जी
1: हां जी
0: जी और नोई ता जी
1: ठीक है मैडम जी बस रोटी खा दी है
0: जी ता काम का ठीक ठाक चले तो हुंदा
1: हां जी मैडम जी काम ता ठीक ही हुंदा
0: जी काम भी ठीक चाहिए ना जी क्योंकि हर दिन मेहनत कर दे ना जी
1: आजी, आजी।
0: जी तो आज यहाँ जिड़ा खास दिवस बना दे ना तो जरूर मेरी गल बात सुनी ली होनी है
1: जी मैडम मैं आने छोड़ी है लेकर
0: जी राष्ट्रीय आम दिवस जिड़ा है से आज यहाँ बना दे ना जी
1: जी जी
0: जी तो अंबा दा जिड़ा नौवा है सभी तुहां लगाया होना है ना जी
1: हाँ जी हाँ जी लगाया जी
0: जी जी क्योंकि नेचुरल चीज़ ने कने तो हाँ दीदी सब्जी भी बनाई
1: हाँ जी मैडम जी अंबुआ
0: अंबुआ बनाया ना जी
1: हाँ जी बड़ा स्वाद होता
0: जी आजकल कड़ियाँ रोटियाँ नहीं है ना अभी तक कड़ियाँ रोटियाँ करने से बड़ा ही टेस्टी लगता ना जी
1: जी जी हाँ जी
0: जी कने उरा दे काम पे होने ता और भी टेस्टी लगता
1: जी
0: जी जी जी तो विजय जी, आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करके
1: आज गाना सही दिया दी नमस्ला दी गाल दी जा
0: जी, मसरां दी दाल जड़े से आज रिन्नी है
1: जी।
0: जी, जरूर है कि तो हाँ तक पहुँचान दें जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा तो
1: ठीक है मैडम जी ठीक।
0: जी। ये है तो हाँ सारे का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, तो शो तो इसी गूंज कन्ने आगे बढ़ते न कन्ने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचान देन, तो हाँ सारी भी ईसा प्यारी दिया फरमाइश जो इंजॉय करा।
2: आई गए जीजा जी, आई गए
3: ओ ओ जॉय पाई आई गई आई गई।

तोह सारी कार्यक्रम सुना दिन माटी दी महक कने तोह सारे सुनिया ए गीत फरमाइश। इसी फरमाइश दे बाद अहां फिरी ते गलबात उपर जड़े से जरूर आइयो न। तशो तो हर दिन अहां वास्ते जड़े से खास रहंदा कने इसी खास दिन कने अहां जड़ा अपने आस पास दियाँ जड़ा कुछ जानकारियां न सभी जरूर तुहां तक पहुँचा देन कने तुहां तिना जानकारियां जो भी ध्यान ने सुन देन कने जड़ा अहां दी गलबात तुहां तक रहंदी है तिना जो भी जरूर ध्यान ने सुन देन। तो श्रोताओं बरसात का मौसम चलिया कने जड़ा मौसम है या कुदरत का जड़ा कहर है अहां बोली सकते यही कि अली तीन चार दिन जड़े से लगातार बारिश हुई ती दी वजह ने नुकसान जड़े से होना शुरू हुई है। तो इसी कने तो हाँ अपना जड़ा ख्याल है से जरूर रखना है क्योंकि बरसात दे मौसम च घर च अगर अहाँ रहेंगे तो ही अहाँ सेफ हैं कने इसी कने घूमना फिरना तो थोड़ा जहा बंद ही करना पौना है। ठीक है अगर मौसम साफ है तो हाँ घूमना फिरना भी जरूर जा कने अगर तुम्हें लगा था कि मौसम जड़े से साफ नहीं है या बरखा है तो थोड़ा जहा मौसम दी और जरूर जड़े से दिखी लिया। तशो तो जानकारी ये भी है कि प्रदेश हर महीने जड़े से रोजगार प्रशिक्षण दे मेले जड़ा न से लगा करने न कने इसी कने जड़ा पानी दी जड़ा हर बूंद दी रखवाली करना जड़े से ग्रामीण दी जिम्मेदारी है। हाँ हमेशा पानी ऊपर भी गल बात कर दे न कि पानी दी जड़ा एक बूंद है से अहाँ वास्ते कितनी ज़्यादा कीमती है। पानी तो वैसे भी अहाँ वास्ते ज़रूरी है हर दिन अहाँ वास्ते ज़रूरी है। पानी बिना अहाँ दा जड़ा जीवन है से असंभव है संभव ही नहीं है। पानी जड़े से अहाँ दी जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका अदा करता है चाहे अहाँ खेती बाड़ी करनी है चाहे अहाँ कोई भी काम करना है पानी दी तो हमेशा ज़रूरत जड़े से रहती है। कई बार अहाँ अपने आस पास भी दिख दे न या अहाँ पानी भरा दे होंगे या कुछ भी नलके लगाए हो न पानी तिथु चल आया तो अहाँ नलका जड़े से वो नहीं है कने अहाँ तिस जो अपने आस पास दिखते रहते पर फिर भी अहाँ तिस जो बंद नहीं करते तो थोड़ा दिया सोच विचार करना बनता है। अगर तुह तो जो लगा था कि नहीं जरूरत से ज़्यादा पानी कुछ भी निकला था या जरूरत से ज़्यादा है नलका ऑन है तो तुह तो जो बंद कर दिया अपनी जिम्मेदारी जड़े से ज़रूर समझा। यहाँ आस पास सफाई ऊपर भी गल बात करते रहते न कि घरे की सफाई यहाँ कर देना तो कुछ ना कुछ यहाँ से घरे का ही कूड़ा बाहर फेंक देना या कुछ सड़क वक्त फेंक की देना या कुछ भी नदी नाले जड़ा न तिथु फेंक देना कहो घरे दी अहाँ साफ सफाई करा दे कने सही कूड़ा अहाँ बाहर फेंका दे तो अहाँ अपने समाज जो भी जड़ा अहाँ का वातावरण है उस जो अहाँ प्रदूषित करा दे तो ज़रूर इन्हें छोटी छोटी चीज़ों का जड़ा ख्याल रखना अहाँ वास्ते ज़रूरी है। कने बरसात के मौसम च अहाँ चाहे से नाले न चाहे से नदियाँ न नाले की गल करिए या कुल्ला न तिथु अहाँ कूड़ा फेंक की देन तो है कूड़ा तिथु फंसी आंदा है तो तिदी वजह ने पानी जड़ा से सड़क च आंदा है या घर च आंदा है तो नुकसान कुछ आंदा है अहाँ का ही। तो अगर कोई भी काम करते न तो जरूर तिस कमे जो सोची समझी करी करन तिसते तुहांदा फायदा होवे ना कि नुकसान होवे। तो इसी कने अहाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न कने तुहां जो अगली फरमाइश की ओर लेकर चलते न सुनते ने सब प्यारी दी फरमाइशा जो तुहां सारे भी ज़रूर इंजॉय करा।

0: दर्शकों तो सारे ही सुनिया ये प्यारा तेया गीत, प्यारी तेई फरमाइश। इस गीत की फरमाइश अह तक पहुँची हुए वट्सएप के माध्यम ने कने से रहने वाले ने चंबे ते कने तिना का नाम है तरवीर जी, तो जरूर तिना तक अहाँ ये गीत पहुँचाया कने तो हाँ सारे भी इंजॉय किया। अगले जेड़ा श्रोता है तिना कने कर देन गल बात। हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो, नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
0: जी स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: हाँ जी ठीक ठाक। तो हाँ बोला
0: जी यहाँ भी ठीक ठाक है जी। तो हाँ कुछ दे रहने आ रहे ना कने तुहंदा ना क्या है जी?
1: माया सुकड़ से बोला जी।
0: जी तो माया जी क्या काम कार लगाया सुकड़े आ रहे हैं?
1: क्या चलता है जेड़े अमरे जे मौसम
0: जी जी
1: का पट्ठे दा कुत्ती हो जंदा कुत्ती
0: जी दा मौसम वाले मौसम के दे है सुकड़े वाली साइड
1: मौसम लगी है सेंस जान को बरखा
0: जी लगी है रिम झिम।
1: हां जी
0: जी जी जी और नोई दा जी।
1: हां जी
0: जी तक दिया लगा था तो हम जो ये कार्यक्रम
1: बड़ा बढ़िया लगता जी ताई ए सुनदे हां
0: खास दिन बना देन या आजकना जेड़ा दिन है ना जी कयो खास है भाई आजकना दिन अहा कयो खास तरीके ने बना दे ता राष्ट्रीय आम दिवस जेड़ा से आज अहा बना दे जी ता तो हाँ भी सुकड़े वाली साइड भी होंदे आम ज्यादा की थोड़े होंदे?
1: नहीं सुकड़े से घट घट ही आम तो यहाँ रहता है ना तीन जो बूटे पर बैठना चन छट देता
0: जी। अच्छा अच्छा नहीं है
1: हाँ जी जल कोरे आहा ता लो सै स्नैक अनमुक्के बजिया करी कोरी चाड़ी अड़िया
0: जी। अच्छा
1: हाँ जी
0: जी जी ता मतलब वैसे ता तो हनोआ लगाई ले आना।
1: हाँ जी हाँ जी तीन ता
0: आजकल बीमारियां दा जेड़ा घेरा है ना उससे बड़ा साथ है।
1: हाँ जी हाँ जी
0: चाहे से शुगर दी गल करिए चाहे बीपी दी करिए चाहे कोई भी छोटी मोटी बीमारियां चलिया रहनिया ना जी
1: जी
0: बड़ी ज्यादा तो अगर हाँ तो छोटी दे भी लापरवाही कर देन कई बार होंदा ना कि अगर बीपी है या शुगर है ठीक है खाना खा खाना खाने वास्ते कोई मना नहीं है पर अगर हाँ परहेज नहीं कर देन तो हाँ दा खुद दा ही नुकसान है ना जी।
1: नुकसान अपना जी नुकसान है
0: क्योंकि बीपी अगर जी बीपी च ता वैसे भी नमक वास्ते अगर हाई बीपी है ता नमक मिर्च मसाला जड़े से तलिया भुनिया ज्यादा खाने वास्ते जड़े से डॉक्टर बिल्कुल मना करते ना जी।
1: ओ तब ने ये जी
0: पर आंदी जी पर आंदी जड़ा जी वैसे थोड़ी ना मनदी से ता स्वाद ढूंढदी ठीक है से स्वाद ता ले लेंदी पर आंदे शरीर जो कुथी ना कुथी नुकसान भी करी करी जांदी ना
1: नुकसान नुकसान ही जी दा स्वाद ता दो घड़ी नुकसान
0: है जी करे नुकसान है जो उमरा वास्ते मिली आंदा ना जी।
1: हां जी हां जी हां जी
0: ता माया जी आज तुहा कुंदिया गीत सुनना पसंद करके
1: गीत सुना तो हाँ एक फूल फुलिया जी फुलिया लाल रंग दा
0: एक फूल फुलिया
1: फूल फुलिया फुलिया लाल रंग दा
0: जी जी जरूर ये गीत तो हाँ तक पहुंचान दें जी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हाँ दा
1: हाँ जी बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो दा
0: जी जी दर्शकों तो सारे जो ही लेकर चलते हैं ना अगली फरमाइश दी ओर सुन देन ईसा प्यारी दिया फरमाइश आज तो हाँ सारे भी इंजॉय करा करेंगे सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने बंदी।

0: तो हाँ सारा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तशो तो इसी गीत करने इसी धुन करने हाँ फिर ते वापिस आई उन तो हाँ तक जरूर तो हाँ ये भजन इंजॉय किया होने कने इस भजन ते बोल एन कि बागे फूल खिलिया लाल रंग दा तशो तो फूल दी उन गल चलाई दी हुए तो ये गीत संगीत भी यहाँ जो बड़ा कुछ सिखाई करी जानते हैं ना पर निर्भर कुछ पर करता अहाँ पर कि यहाँ क्या सीख लेंदे न तशो तो बागे फूल ताई खिलदा है चलो अहाँ उस फूल जो लगाते हैं न एक पेड़ लगाना हाँ वास्ते कितना ज़्यादा ज़रूरी है या से पेड़ अहाँ जो फल भी दिंदा हवा भी दिंदा कने जिड़ा प्यारे प्यारे दिसदे फल हैं आम दी अहाँ गल करा दे राष्ट्रीय आम दिवस आज अहाँ बना दे न कने दिसदा बनाने दा क्या महत्व है अहाँ दा जिड़ा फल हैं से अहाँ जो अच्छी जिड़ा ये बोली सकते अहाँ दी जिड़ा सेहत है सभी ठीक रहिंदी है कने इसी कने फुल्लां दी गल करिए तां जिड़ा नेचुरल जिड़ा चीज़ां न फुल्लां जो अहाँ दिखते न या अहाँ फुल खुद लगाए होंदे तां अहाँ जो बड़ी खुशी मिलती चाहे तुहां खेती बाड़ी करते न या तुहां सब्जी लगांदे न अगर तुहां घर है कोई सब्जी लगाई हुए सीजनल अनुसार जिन्ना भिंडी तुहां लगाई हुए या तुहां बैंगन लगाए हुए न या बाकी करेले दियां बेली लगाइयां न या घिया लगाया है तुहां कोई भी जेड़ा भी कने अगर तिना सब्जियां जो जरा करी भी नुकसान हो जाता है तो तुहां जो थोड़ा दिया बुरा फील होंदा है ना होंदा है कि नहीं होंदा है थोड़ा दिया विचार करके दिखा सोचा ला मैं अगर कोई फूल लगाया है कोई पौधा ही लगाया है कैसी दा भी मिर्चा दा पौधा ही लगाते हैं या कोई भी पौधा लगाया है तो मुझे तो अगर इस तीस चीज़ों का नुकसान हुई है तो मुझे तो बड़ा बुरा फील होता कि नहीं इतनी मेहनत की थी तीस फुले दिखी करी अहाँ का जोड़ा चेहरे की स्माइल है ना से बड़ी प्यारी लगती तो दिखा ये जोड़ा नेचुरल चीज़ा न या जोड़ा फूल हैं या पौधे न से अहाँ जो अपनी और जोड़ा से कुछ ना कुछ मनमोहित जोड़ा है से जरूर कर दिया कने हर कुसी दा जिहड़ा अपना अपना अंदाज हुंदा जिंदगी जीने दा तो जरूर अपनी जिहड़ा जिंदगी दा सफर है जो भी इंजॉय करा कने हाँ तो हम जो फिर ते अगले गीत दी ओर लेकर चलते न थोड़ा दिया फिर ते कार्यक्रम दा जिहड़ा माहौल है से चेंज करते न पहाड़ी ठुमका गीत तुहां तक पहुँचाते न तुहां सारे भी जरूर ठुमका जिहड़े से लगाई सकते
1: नहीं नहीं नहीं नहीं श्रेया ठुमका नहीं ठुमका

तो जरूर तो सारे भी ठुमका जड़े से लगाया उड़े कने फिर ते हाँ वापिस अपनी गलबात उपर आई उन्हें कने समय दी जड़ा रफ्तार है से हाँ जो उन्हें बोला दी कि उन्हें इतु दी आई थमिया अपनी गलबात जो इतु ही रोकी दिया क्योंकि अगला जड़ा समय है से समय के अनुसार चलना भी जरूरी है। जिन्हें कि तुम्हें पता है कि स्कूल का टाइमिंग क्या है या जेड़ा टाइम पीरियड है से क्या वे तो उसी अनुसार अहाँ जो भी चलना जरूरी है अगला जेड़ा कार्यक्रम है उन तुहाँ तक पहुँचना है कने इसी कने तुहाँ सारी अपनी रेडियो दो शशि जो दिया अनुमति कने बाकी जेड़ा कार्यक्रम मन तिना दा इंजॉय जेड़ा है से जरूर लिया इसी गूंज कने।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सचू ने
2: 5 YouTube वीडियो को लाइक करके 5 लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा
2: है? हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मीन्स ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
3: क्या बात है यार।
4: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
4: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन ऐप्स डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना पूरी जानकारी के कोई भी वित्तीय लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें।

0: की सुरक्षा आपके हाथ में।
1: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं आपको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं आपको। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है, अब ठान के मुठ स्वच्छता की ज्योत जागी रहे, स्वच्छता की ज्योत जागी रहे।

0: पर एचआईवी कभी न दूं। अगर आप मां बनने वाली हैं, तो एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में सलाह और एचआईवी टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को एचआईवी से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
1: एक कदम जिंदगी की ओर।
2: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है, अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय विहार।

0: अरे भैया ये आप सबने हेलमेट क्यों पहना है? ये तो बाइक वाला हेलमेट है ना।
1: अब आप नहीं पहन रहे तो सोचा हम ही पहन लेते हैं।
2: असलियत में हेलमेट किसको शोभा देता है ये तो सबको पता है। बाइक चलाते वक्त सर बचाएं, हेलमेट पहनें। Wear a helmet always, because helmet saves. बाइक चलाते वक्त सर बचाएं, हेलमेट पहनें। Wear a helmet always, because helmet saves.
3: बस मास्टर जी, अब आप बेफिक्र रहिए, मैं गाँव में सब

0: आपको बता
1: दूं। क्या हो रहा है मास्टर जी, काहे बुलाए हमका?
2: तरक्की का हिस्सा बनाने मुन्ना।
1: तरक्की?
2: देखो मुन्ना, पहले गांव में रही बैलगाड़ी, फिर आई साइकिल, मोटरसाइकिल, टीका आई
1: तरक्की।
2: हाँ, पर अब भी लोग जाते हैं खुले में शौच करने, तो हमें कहाँ अपनाना चाहिए?
3: तरक्की, यानी अपने घर में अपना शौचालय।
2: सही जवाब। और अब तो शौचालय बनवाने के लिए जरूरतमंद लोग 12,000 रुपए की सहायता राशि भी प्राप्त कर सकते हैं।
4: भाई मुन्ना, अब तुम भी अपना नाम लिखवाए दो।
2: इस योजना का लाभ उठाने के लिए आज ही अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क करें।
1: अपनाए तरक्की की सोच नहीं,
3: अब खुले में शौच नहीं।
5: मैं नहीं करूंगी आज के बाद तुम्हारा कोई काम।
6: क्यों सुबह से मुंह फुला के घूम रही है ये?
7: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
6: किससे?
7: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है, रात को सपने में देखा था ना।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

0: 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।
1: Right, my name is Anthony Gonsalves.

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 FM पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सचिन है।
2: पांच YouTube वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
2: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए। इतने से ये जेन्यून है?
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। क्या बात है यार।
3: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
3: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन ऐप्स डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना पूरी जानकारी के कोई भी वित्तीय लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
4: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं आपको। निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं आपको। अब गोना गोना जगमग जगमग होना ही है। अब ठान के मुद्दे स्वच्छता की ज्योत जागी रहे। स्वच्छता की ज्योत जागी रहे।

0: पर एचआईवी कभी न दूं।
1: अगर आप मां बनने वाली हैं, तो एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में सलाह और एचआईवी टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को एचआईवी से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
2: एक कदम जिंदगी की ओर।
3: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहारी जी की।

0: अरे भैया, ये आप सबने हेलमेट क्यों पहना है? ये तो बाइक वाला हेलमेट है ना।
1: अब आप नहीं पहन रहे तो सोचा हम ही पहन लेते हैं।
2: असलियत में हेलमेट किसको शोभा देता है ये तो सबको पता है। बाइक चलाते वक्त सर बचाएं, हेलमेट पहने। वेयर अ हेलमेट ऑलवेज बिकॉज हेलमेट सेव्स।
3: बस मास्टर जी, अब आप बेफिक्र रहिए, मैं गांव में सबको बता
4: दूंगा। क्या हो रहा है मास्टर जी, काहे बुलाए हमका?
5: तरक्की का हिस्सा बनाने मुन्ना।
4: तरक्की?
5: देखो मुन्ना, पहले गांव में रही बैलगाड़ी, फिर आई साइकिल, मोटरसाइकिल, तीखा आई
4: तरक्की।
5: हाँ, पर अब भी लोग जाते हैं खुले में शौच करने, तो हमें कहाँ अपनाना चाहिए?
6: तरक्की, यानी अपने घर में अपना शौचालय।
5: सही जवाब। और अब तो शौचालय बनवाने के लिए जरूरतमंद लोग 12,000 रुपए की सहायता राशि भी प्राप्त कर सकते हैं।
7: भाई मुन्ना, अब तुम भी अपना नाम लिखवाए दो।
5: इस योजना का लाभ उठाने के लिए आज ही अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क करें।
4: अपनाए तरक्की की सोच नहीं,
6: अब खुले में शौच नहीं।
8: सुबह से मुंह फुला के घूम रही है ये।
9: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
8: किससे?
9: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है। रात को सपने में देखा था ना।

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो रहा हूँ सचिन कपूर हाजिर बुझुगो तंदे सभी रहे रेडियो सेट में वेड़ी गुंजन धर्मशाला मंजे बहुत बहुत स्वागत है हार्दिक अभिनंदन। हाँ सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहता श्रोतों धर्मशाला में मुख्य अबे तू पता बरसाला था बरखा था बोने बोने है ना तो फिर की ऐसो लगी पे बरखा श्रोतो इतों पहले कि ऐसो इतनी बरखा ना बच्चू कर देते हले भी माने मोटे या इतनी बरखा नहीं कि बहुत ज़्यादा बरखा या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हल्के हल्के जी बरसाने लगते तीन तीन बरखा के सो लगी पी ही श्रोतों। और इस समय अगर है गल करिए श्रोतों तो मैं दसूँ तो कि 25 तरीका तक के ऐसा खतरा जरूर बन रहा है। खतरा मीन्स कि बरसाला तो बरखा तो बुने बुने श्रोतों तो 25 तरीका तक दस इन फिलहाल बरखा हाली तक जो है सुल जानकारी के ऐसो आए हाँ कि 25 तरीका तक के ऐसो इन्हें नाम बरके श्रोताओं सो रहना आया है ना। तो जी के है बार बार बोलते कि ज़्यादा इस समय की ऐसो ज़्यादा यात्रा ना करना चाहिए और ज़्यादा यात्रा ना करा करके जरूरी बहुत अड़ी अच्छा कुछ कोई बरसात और बरसात बरसात की ऐसो तो बरसाला किया सो पिछले कुछ टाइम थो कि ऐसो ज़रूर जानलेवा बच्चू करता सो सभी वास्ते है। तो इस समय की गल करिए श्रोतों तो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान 20 डिग्री के आसपास की ऐसो तापमान है श्रोतों और नमी की गल करूँ तो 78% की ऐसो नमी इस समय और ये मौसम रहा हाल हा श्रोतों। बहुत सारी अन्य जानकारी हैं जो असुतुस होगी शेयर करनी हैं साझा करनी हैं तो ऐसा बस होगी जुड़ी सकते हैं रोजाना से ही हैं जो जुड़ते हैं श्रोतों अपना पसंदीदा गीत हो नहीं सकते हैं 7088809 पर नंबर आख मौके फिर तू हो गया हूँ शेयर करना 7088809 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और कॉल कर करे अपना पसंदीदा गीत होने सकते हैं अपने क्षेत्र में जानकारी होगी क्या सो जरूर साझा कर सकते हैं। बहरहाल ठीक है चतैर थो इनके बड़े रेगुलर लिसनर हिन नोडरानी मंदिर रे बखे त्यारे घर हिन और मेरे बड़े ख़ास दोस्त अजीज दोस्त ऋषभ रह सो ताऊ जी हिन त्यारा अपना पुत्र की असो आर्मी अंदर सेवाएं दिच्छू करता हा तो आइए जी तैयारी फरमाइश में आऊँ ना भूलू करता अब जो तैयार लेकिन तीन होगी गल पी तो तैयारी फरमाइश में किया ये गीत है सब जरूर होंगे हैं। बहरहाल बने रहे तो सब वेड़ी गुंजन धर्मशाला सो के और कार्यक्रम जरूर होंगे रहे हिंदी अपनी गप्पा कुछ एक खास जानकारी लेकर आऊँ सचिन कपूर बुंदा थोड़ी देर में हाजिर फिरे।

শত এফএম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডি গুঞ্জন ধর্মশালা তো হ্যাঁ সবই টিউন করো আর কার্যক্রম সচিন কাপুর সো কে বিলকুল লাইভ হুনো করতে নিন্দি আপনি কা পতা মেরিয়ে জোড়িয়ে গীত বহুত প্যারে গীত আর শত রীতা পোহান দ্বারে গীত গৌ রহা রীতা জি আজকাল পিএসডি কি আসো করু কর দেন আর ইন দ স্টুডিও মা ভি ছুরে থি হ্যায় বহুত সারি গলবাত কে সুতিয়া হোগি হুই থি পিএসডি তো রিলেটেড কুছ এক টিপস কেন जो कि जो पी एच डी करता शोतों तो सी अपने आप किताब के सो लिखना भी पेंदे है ना जो इन डायरेक्टर हिन तिया थोड़ी बहुत किया सो तिया गाइडलाइन देते थे कि किस प्रकार हो गए तो अपनी किताब में गया सो क्या और चीज़ें क्या सो ऐड ऑन कर सकते हिन है ना क्या है जो ये गीत जियाँ ये गीत इंजा गाओ मेरी ये जोड़ी है ना तो ये पूरा विस्तार पूर्वक किया सो दस सकते हिन अपनी किताब में सो कि क्या क्या इस गीत अंदर दसो हा कि आख दिन असु मरे गाना है ना असु सोगी रहना हा असु सोगी कुछ खाई पी लेना हा असु सोगी ये कर लेना ती कर लेना इस तरीके हो गई कि असो कुछ एक टिप्स के अंदर सो देती थी कि पूरे गीत जो कि असो डिटेल हो गए लिखी सकते रहो और जानी सकते ताकि इन दे इने वाली जनरेशन किया इन दे इने वाले जो बच्चे बुने सो अगर तह किताब जो कदी पढ़ते हिन तो तिन्यो पूरा ज्ञान किया सो मुड़ा है ना आइए जी कार्यक्रम मंच हूँ सचिन कपूर तू सो के बिल्कुल लाइव बन रहा फरमाइशर दौर शुरू हा तो है जुड़े सकते हैं 708-8-8-709 पर तो इसी सो के श्रोतों आइए कार्यक्रम जो आगे बढ़ देन और अगली जानकारी की सो तू सो की जरूर साझा कर देना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय भी स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 के तहत हिमाचल प्रदेश में 11 स्कूल जो कि श्रोतों सो राष्ट्रीय स्तर पर सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट रे वास्ते किया सो चुनो हाँ 11 स्कूल के ना सो चुने हैं श्रोतों इन स्कूलों में चयन स्वच्छता जल संरक्षण और ऊर्जा दक्षता जैसे मानकों पर किया सो बेहतर प्रदर्शन वास्ते किया सो भुआ है यहाँ रहा चयन श्रोतों और पुरस्कार रूप में यो प्रत्येक चयनित विद्यालय जो प्रमाण पत्र सोगी श्रोतों 1,00,000 रुपया प्रोत्साहन राशि भी किया सो मुलने हाँ इसी प्रकार होगी कुछ एक और अन्य जानकारी तो सोतुं दी अपनी बोली मंच के अपनी गदयाली बोली मंच किया असो मुलनी हिन श्रोतो बने रहा जुड़े रहा रेडियो गुंजन री ऐसा गूंज सोगी तो कॉल जरूर कर सकते हैं श्रोतो 708-8-8-709 पर नंबर एक मुके फिर यह शेयर करीन दिन 708-8-8-709 अकबर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और कॉल कर कर अपना पसंदीदा गीत हो नहीं सकते चलिए जी सुरेखा जी री फरमाइश और सुरेखा जी अपनी फरमाइश सुरेखा जी जो कि योल नोडरानी मंदिर रे निवासी हैं तो सो अपनी फरमाइश दिच्छू करते हैं अज कर का प्रौण का गुचूरे ता तिया मैसेज भी करो तू करवाओ तू कि असु ये गीत के असो हुन ना जी ताई जी लेकिन चल दे तू सो इस गीत तारी किनारे बने रहे तो सब बाहर जे सचिन कपूर सो के वापस इंदन कुछ एक और खास जानकारी लेकर

में 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो रहे कार्यक्रम में इस वक्त हिंदी अपनी गप्पा गैन सो चल रही ने वीडियो सेट में बिल्कुल लाइव रेडियो गुंजन धर्मशाला में तो है जुड़ी सकते हैं श्रोताओं कॉल जरूर कर सकते हैं जनाब 708-8-709 पर चलिए कार्यक्रम ही चलते रहना हर शोधों कार्यक्रम मंच तू सभी होगी असुई जानकारी के सो शेयर करनी हिन और भी बहुत सारी जानकारी जो तू सो गया सो यही शेयर करनी हिन बरहाल बरसाले चले तो बरसाले होगी बरसाले थों के बलदे अबे बलदे ना कि डर लगदा सच्ची लगदा शोधों बरसाले थों डर था और तू दसना चाहता बरसात थों अगमो के फिरे की सो न्यूगल पंचायत रे 15 घर जो कि सो खतरा है सो तो बिल्कुल यूँ गल कर करदा विधानसभा क्षेत्र ज्वाली वे अंतर्गत इने वाले ग्राम पंचायत न्यूगल मा लगातार मूसलाधार बरखा के बच्चू कर दिए तिथों ग्रामीण भी चिंता की असो बढ़ गई है सो तो भूस्खलन रे कारण नाले भी जो नाल सो गेर फेर करू करदा और रास्ता बदलू करदा जितों तड़ी वे जो

0: पूरे हिमाचल में भी किया सो इस समय कुदरत अपना कहर किया सो बरपाने लगी प्यूरा हर्षो तो। और दोस्तों दसना चाहता कांगड़ा जिला व शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित बो घाटी में शो तो मंगलवार जो किया सो पिछले काल के अब बदल फटने तो भारी तबाही की है श्रोतों से बोया घाटी वे भूस्खलन तो 18 मकान जो किया और गौशाला बीतियाँ शामिल इन ये क्षतिग्रस्त किया सो भूहीन और बाढ़ भी चपेट में इन्हें तो 6 मकान रहा तो बिल्कुल ले गया सो मतलब कोई नामो निशान ही नहीं है तो इतना ज़्यादा नुकसान किया सो लगातार बच्चू करता हर शो तो जी बिल्कुल। अबे बरसाला था ताई तो बोलते कि बरसाला के सो थोड़ा करे कुछ पता नहीं ना कुदरत रहा कहने कुदरत के सो कहर भरपाई दिया कहने कुदरत क्या कर ही दिया है ना जान ही सकता है। बहरहाल इसी सो के कार्यक्रम जो आगू बढ़ते हैं शो तो अगली जानकारी तो होगी शेयर करते हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU में के असो संबद्ध कॉलेज व एफिलेशन और रेगुलेशंस में संशोधन के असो भुआ शोतों अब स्नातक और स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम भी संबद्धता नवनीकरण शुल्क 3 नवंबर तक के असो जमा कराना अनिवार्य करी दिता है शोतों। इतों बाद कुलपति भी अनुमति मिलने पर 31 दिसंबर तक 25,000 रुपया के असो शुल्क वैसोगे आवेदन स्वीकार भूना है शोतों। यदि कोई संस्थान निर्धारित 3 नवंबर रीतिथि तक आवेदन ना कर पाओ तो कुलपति आवश्यक आधारभूत सुविधा जैसे भवन खेल मैदान छात्रावास उपकरण पुस्तकालय फर्नीचर री उपलब्धता या उपलब्ध करवाएगा ने भी संभावना तो संतुष्ट भूने पर ही 31 दिसंबर तक आवेदन स्वीकार कर सकता है हिंसतों। इसो क्या है हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 10 तक के ऐसो विद्यार्थी वास्ते लर्निंग प्रोग्राम चलना है यानी कि एक्स्ट्रा क्लास जति थो वह सब बाखूबी जानता है इनकी एक्स्ट्रा क्लास चलने जनाब है तो ये पूरी जानकारी तुझ हो गया ज़रूर शेयर कर ले साझा कर ले। बहरहाल मूल दिन फिर थोड़ी देर बाद तुझ सब भी सोगे और तो सब श्रोता जरूर होगी जुड़ी सकते हैं 708-8-7-09 पर नंबर एक मौके फिर आऊँ शेयर करना हाँ साझा करना हाँ जनाब 708-8-7-09 पर इंदे श्रोता होगी कनेक्टेड हैं पुस दिन कौन बल्लू दिन और कड़ी दो बल्लू नमस्ते जी
1: नमस्कार जी
0: नमस्कार जी नमस्कार
1: और क्या हाल है ठीक है ना
0: बहुत बढ़िया जी ठीक ठाक तो है बल्ला तो ठीक ना
1: बस बढ़िया ये बरखा लगू रही है
0: हाँ कड़ियाँ बल्लू कर दें जी
1: और थात्री हुआ
0: थात्री था
1: हाँ जी जी
0: क्या बात है बरखा बड़ी लगू रही कि थोड़े थोड़े
1: लगू रही है जी हम
0: अच्छा
1: लौड़ आई बरखा ही लगू रही है
0: हाँ जी
1: लौड़ मुंती बरखा हरकी हरकी
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
1: लौड़ ब्रह्मोरा व चंबे में जे
0: हाँ नहीं नहीं विम जिम बर्ग इंदी किनारी था क्या बोलते थे तीयो इंदी भाषा त्राड़ खराब बंदा ना
1: मेरा तो खराब त्राड़ बंदा ना सो बुरे ना आजकल बुरे ना सो
0: आजकल बुरे ना बहुत अबे विले बो घाटी में की है सो इतना नुकसान बच गो जी
1: बो घाटी हो पंछी का बंदे लुड़ी गया ना
0: बिल्कुल बिल्कुल लुड़ी गए
1: सो मानो नुकसान तो ना हुआ कोई
0: तबे वह घर ही लुड़ गया था मतलब जान माल रहा तो कोई नुकसान आने है लेकिन पूरे पूरे घर के ना सो लुड़ गया प्रशासन ने किया सो मौके पर दौरा भी करुआ और जायजा लियो सुरक्षित स्थान पर किया सो मनो पहुंचाए हैं
1: चलो ठीक है थारा
0: घर रहा नुकसान हुआ वो छिया घर जो किया सो ता मतलब काफी ज्यादा अत्यधिक नुकसान है ना
1: काम खराब है वहाँ हिमाचल में ना हिमाचल में क्या काम कर ना बंदा
0: ना बंदा तू
1: हाँ जी हाँ जी
0: क्या मान जरा बुला क्या चक्कर बुला
1: कोई समझ ना क्या पता क्या बनो करदा
0: क्या बुच्चू करदा क्या बनो करदा
1: हिंदी भी थोड़ी थोड़ी चलो उम्र भी गई ना वे
0: हाँ जी
1: आहे रहते हैं जा कभी हर भाई ना था
0: जी
1: और साथ ही मुझे बाहरी बाहरी दरा हिंदी ही है
0: हाँ
1: और सो अपने रास्ते में हिंदी ही ना था मेरा ग्राहक रूम में बैठ के छोड़ दे
0: अच्छा क्या चक्कर ला अच्छा तो दसो गर्दन की काफी भारी बरसात था के ना सो धर्मशाला में इंदे बुंदी थी और अपने
1: हाँ जी
0: अपने
1: हाँ जी
0: नाले अपने अपने रस्ते हो गए कि सो

0: पानी चली रहा है ना
1: अपनी में जगह जी हाँ सो नाले बनवे तो अपनी जगह चली रहा पानी मचे सोगी
0: जी
1: कोई नुकसान ना कोई ज्यादा ढहानी कुछ नहीं होना पता ना क्या गल मानी को समझ क्या पता क्या गल
0: जड़े तक जनाब आऊँ समझ पाऊ करदा कि अबे कि यह सो पानी रा निकास ना बचू करदा एरा पॉपुलेशन भी बढ़ेगी है ना
1: हाँ जी,
0: और
1: हाँ जी।
0: घर भी बढ़ गए बड़े बड़े घर पे गए न है ना पॉपुलेशन बढ़े तो जाहिर दे गल कि घर भी क्या सो पैने ही है ना और
1: भाई साहब
0: जी
1: पानी निकलने जगह छड़ी हो माता वेरे ही ना जगह था
0: हाँ तो पानी निकलने जगह के ऐसो आए नहीं तो पानी का निकास नहीं है तो फिर ठेरी वजह होता वे चीज़ा खराब हो चुकर दिन है ना ठेरी वजह होता पानी फिर अपना रास्ता के ऐसो अपो बनाओ करदा और फिर इस प्रकार हो गए ऐ बल्लू कर देंगे नुकसान बचो करदा
1: अब इसके जगह बनानी अपनी तो नुकसान करना है करना
0: करना करना अक्सवाक पवित्र शत करना जनाब
1: अब दरिया रे बक्के को भी घर बार क्या क्या बनाई छोड़ दे आदमी
0: जी जी जी जी
1: दरिया रे कंटे सोगी बनाई छोड़ दे ना
0: सोगी सोगी हाँ
1: फिर दरिया भी क्या करा अच्छा फिर
0: क्या करा बिल्कुल ठीक बोलू कर दें तो द्रैसो की सोगी घर न द्रैसो की सोगी कसकी रहे होटल न कसकी रहे कैफे इन है ना
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
0: फिर तो सपना रुद्र रूप के दसना था नुकसान तो मुना है फिर
1: और तो ये अपना रास्ता लेना लेना
0: लेना लेना जनाब
1: जितना के सिर अपना रास्ता सो लेना लेना है
0: जी जी जी जी
1: हाँ जी
0: चलिए ठीक है जी जनाब जी
1: अच्छी ठीक है जी
0: जी जी कुछ बलू कर देती है तो है जरूर अपने गल रखा
1: बोलो हाई दे गीत कोई
0: अच्छा कुंडी ना होना जी बल्ला
1: चंद्र हाई दे चरणी
0: क्या बात है सुरेश मरथान जी की भी यही फरमाइश थी चलने तय में इतना टैप भी करी तो चलिए ठीक है जी थात रही हूँ सीधा बाया खनैरा पटोला पुज करे दाड़ नू पुज गन देंदा
1: ठीक है ठीक है
0: ठीक है जी नमस्ते
1: ठीक है धन्यवाद जी
0: धन्यवाद FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा बी ट्यून कर रहा हूँ सचिन कपूर तुंदा अपना आर से आइए जनाब चलते हैं थोड़ा करिए और हगो और इन अगले श्रोता जो कर दें तो वो गए कनेक्ट नमस्ते जी
2: नमस्कार जी
0: नमस्कार जी नमस्कार
2: ठीक ठाक ना
0: बहुत बढ़िया जी तो है बल्ले तो ठीक ठाक ना
2: बढ़िया लग रही माड़ी माड़ी बहुत ठाक है
0: जी जी जी बरखा लग रही माड़ी माड़ी है ना जी अच्छा जी करमचंद जी बलू कर देना नोटरानी मंदिर तो तो इन दे रेगुलर लिसनर हैं लेकिन कॉल बड़े बड़े टाइम बाद किए सो बुंदे इन दे तुंदे
2: हफ्ते बाद ही करेंगे
0: हाँ चलो इतना गैप ठीक रहता है ना
2: ठीक रहता है उन्हीं मौक कर दिया जी ना
0: जी जी जी
2: अगर पूरी बढ़ गया ना जुबली
0: बिल्कुल तुमने आवाज थोड़ी कर क्लियर ना मंजो तक पुजू कर दे या करमचंद जी करमचंद जी चलिए इंदे एक थातरी थों श्रोता जुड़े थी और तिया दसो कि पानी का निकास के सो ठीक प्रकार हो गए न बचूरा ठेरे बद ठेर चक्कर में कि सो अब घर लूड़ू कर दिन गराला लूड़ू कर दिन और पहले तो बहुत तेज तरार बरखा के सो धर्मशाला में बुंदे थे है ना और वर्ल्ड में दुए नंबर पर तो इंदा धर्मशाला बरखा बुने अब तो सोहनी बरखा भी नहीं सोहना तरार भी ना पे उगड़ है लेकिन नुकसान किया सो जान माल का काफ़ी उच उगड़ है तुम्हें क्या राय थी मंच
2: राय मेरी एक काफ़ी छी ना
0: जी
2: ਅਤੇ ਅਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਕਰੀਟ ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕੰਮ
0: ਜੀ
2: ਇਹ ਇੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੁਕੇ ਰਹੇ ਸਨਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਿਖਰੇ ਰਹੇ ਬਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ
0: ਅੱਛਾ
2: ਤੇ ਗਾੜਾ ਗਾੜਾ ਪੂਰਾ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਰਸਤਾ ਕੱਚੇ ਹੋਣੇ
0: ਜੀ
2: ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈਂਟਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੜਾੜਾ ਮੈਂ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬੰਬਾ ਪੱਕਦਾ
0: ਜੀ
2: ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਡ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਆ ਕੁਛ ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ 20 ਫੁੱਟ ਨਾਲਾ ਚੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚ 5 ਫੁੱਟ ਹੈਗਾ
0: ਹਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਬੱਲੇ ਤੋਂ ਹੈ
2: ਕਈ ਹਰ ਆਦਮੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੈਂ ਨਾਲ ਡੰਗਾ ਤੀ ਕਰ ਆਉਂ ਕੁਛ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੁਛ ਵਾਰ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੁਛ ਵਾਰ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾ
0: ਕਰ ਗਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ
2: ਕਿਤੇ ਬਣੀ ਸਪੀਡ
0: आईपीएस डिपार्टमेंट तो भी रिटायर हिन और ये पूरी समझ रख दें तो है इस प्रकार रीता। चलिए अबे तू है अपनी राय तो रखी है अबे।
2: वो इना के बड़ी राय तो सर्दी तो हर खाना है तो कुने आगे कुछ न कुछ लुढ़ाना लुढ़ाना।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
2: पानी भी खुला है दिल्ला पानी नहीं दिल्ला पानी कुछ नहीं करता।
0: जी जी जी जी जी
2: जितना आप रखे बढ़ना तुम नहीं मार रहे
0: पैनी पैनी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल कर दें तो है जी कुंदन गीत सुनना पसंद कर ले करमचंद जी।
2: अज हम मतलब जो कुछ देव काया गोरा
0: हां जी
2: ये मोबाइल ना शुरू हुआ मुझे याद चले लो लो कहीं था हो ना
0: अक मौके फिर रिपीट कर ले जी कुंदन
2: हम मतलब जो कुछ देव काया गोरा।
0: अच्छा काले बोरा चलिए ठीक है जी जरूर होने ले करमचंद जी तो सोई गीत।
2: चलो धन्यवाद
0: धन्यवाद जी धन्यवाद।
2: लोग का ये बोलना कि नाव को रुकने रुकने वाला
0: जी
2: और ज्यादा तो जब कचरा जेड़ा घर तो घर फेंकना
0: जी
2: ये मन में कुछ झंडे सुंट छिंद को ढोलू सब ना रुकवा देना तो वजह हम बड़ा बड़ा का
0: ये बहुत अच्छा मैसेज है
2: जी तो सुना तो सब बोलते हैं कि
0: जनाब बहुत अच्छा मैसेज है
2: जी। चलिए थोड़ा काम करना सुन ये कहा कि गंद बन गया
0: जी
2: क्या तो कुछ ज्यादा या नहीं है जगह फेंकने तो फूकी दिया
0: जी
2: प्रोजेक्ट नाला मत फेंका
0: नाला मत फेंका। चलिए ठीक है जी तुम दे मैसेज किए 16 श्रोता है जरूर होना होना है ना
2: कुल्ला बंद हो गई रहूंगी
0: जी।
2: ठीक
0: है ठीक है करमचंद जी धन्यवाद धन्यवाद। तो श्रोताओं ये करमचंद जी थी जो कि योल नोटरानी मंदिर निवासी थी यारी फरमाइश में आप भी ऐसो जरूर होना और बड़ी अच्छी गल इन कि ऐसो बतलाए ऐसो सब इस होगी कि रेरा पानी अंदर की ऐसो मत करा मत फेंका कूड़ा कर कर या अपनी खिंद खंदोलो को जो कि पानी दूषित भुंदा है श्रोतों है ना बिल्कुल। चलिए तो चल दिन कार्यक्रम जो थोड़ा करे आगू बढ़न दिन और अब सीधा चल दिन श्रोतों दारनूरी किनारी दारनू थो सुरेश मरथान जी दी फरमाइश है श्रोतों आइया दूधी फराटी के नो इस गीता पर लंदन सुरेश मरथान सो जी

0: शत एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून गुरु और एक कार्यक्रम में हिंदी अपनी गप्पा गेंद सो बिल्कुल लाइव चल रही तुंदे सभी रे रेडियो सेट में ता करमचंद जी हंसू की जुड़ रही थी है और बड़ी अच्छी गल इन्हें कि हंसू रखे हा शो तो इन तो है सब भी अपनी अपनी गल के हंसू जरूर रखे सकते हैं इनको जो कि ये कम्युनिटी रेडियो खाली सचिन कपूर रही नहीं है या एक कार्यक्रम खाली सचिन कपूर रहा भी नहीं है। ये जितने भी इनके गादे मनु हैं जितने भी इनके इनके अपने मनु हैं जो गद्दी बनते हैं जो इनकी गद्दी बोली सोगी जुड़ रहे हैं है ना। सो भी अपनी गल किया अपना कोई संदेश या अपना कोई मैसेज किया सो जरूर इस प्लेटफॉर्म के जरिए किया सो रखी सकते हैं ताकि तुंदी आवाज़ भी किया सो हज़ारों लख मन गया सो जरूर हूँ ना तुंदा दितुरा जो मैसेज है सो भी तिया तक किया सो आवश्यक पूजा अक्सुआक पवित्र शत किया सो जरूर पूजा शतो। चलिए गीत संगीत तक बहाना हाँ और बहाना भी और रख तू पता जाए इंसान वे जिंदगी में खुश ही बोआ जाए गम बुआ इंसान गीत संगीत रे माध्यम तो किया सो अपनी खुशी भी जाहिर कर लेंदा और अपना गम भी जाहिर कर लेंदा है। बहरहाल इन अगले श्रोता असोगे कनेक्टेड हिन पुछ दिन कौन बलू कर दिन और कड़ी थो बलू कर दिन। नमस्ते जी
1: नमस्ते जी
0: नमस्ते जी नमस्ते
1: नमस्ते जी
0: कौन बलून दिन और कड़ी थो बलून दिन ठीक ठाक राजी बाजी जी अच्छा है भी ठीक ने जी है भी राजी बाजी हिन कुन दिन गीत सुनना पसंद कर ले सानू वाले का कोई भी गीत सुनना तो सुहाना जी ठीक है जनाब जरूर होना ले जरूर होना ले तुसु नमस्ते जी धन्यवाद जी। आइए श्रोतों कार्यक्रम जो है वो बढ़ते हैं और कार्यक्रम में श्रोतों अब अगली जानकारी होगी भी क्या सो अपने श्रोता जो रूबरू करवाते हैं। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा छठी थो दसवीं तक रहे विद्यार्थी वास्ते की सो लर्निंग प्रोग्राम 2.0 रे तहत अब प्रतिदिन 45 मिनटारा विशेष जीरो पीरियड संचालित भूणा हाँ श्रोताओं जी बिल्कुल जीरो पीरियड रा उद्देश्य आ तिन्या विद्यार्थी वे शिक्षण जो पढ़ने लिखने में थोड़ी कमजोर हैं है ना और त्यारी कमजोरी की असो दूर करना हाँ श्रोताओं जियारी अधूर आधारभूत समझ अपेक्षित स्तर थो थोड़े घाटा तिन्या वास्ते जीरो पीरियड हा। एक कार्यक्रम में लगभग 12 सप्ताह तक चलना हा शोतों इतिमा पूर्व कक्षा वे गणित अंग्रेजी और हिंदी विषय वे मूलभूत अवधारणा व अवधारणा जो किया सो दोहराया गाना हा शोतों आदेश वे मुताबिक पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थी वास्ते किया सो विभाग री पहली शीतकालीन स्कूलों में जीरो पीरियड भगा 10 बजे लेकर 10:45 मिनट रहे जीरो पीरियड किया सो रहना हा तथा ग्रीष्मकालीन और अति ग्रीष्मकालीन स्कूलों में भैगा 9:45 तक किया सो संचालित बुना हा। लाहौल स्पीति किन्नौर शिमला चंबा मंडी सोलन और सिरमौर शीतकालीन स्कूला तथा ऊना सोलन और सिरमौर अति ग्रीष्मकालीन स्कूलों में यह व्यवस्था बुधवार जुलाई थो के असो लागू बोने आशो तो है ना जी और अन्य ग्रीष्मकालीन स्कूल में किया सो कार्यक्रम 17 अगस्त हों के असो शुरू भूणा हा शतों इस प्रकार होगी जानकारी रा सिलसिला ही चले रहना हा जानकारी रा पिटारा के असो यहीं चलते रहना शतों बने रहे जुड़े रहे आरजे सचिन कपूर सो की गूंज अपने बन रहे और गूंज प्यारे प्यारे इन जितने प्यारे प्यारे श्रोता श्रोता हिन्द तैयारी

0: चलिए जी, अब बोरा जो पता बुना कि दुबला गस गले बुआ है ना, वैसे था इंसान दुबला ताई मंदा सो ज़्यादा चिंता करा था है ना, ज़्यादा चिंतित बुआ किसी चीज़ जो लेकर था इंसान किया सो चिंतित बुंदा हाश होता हूँ था इंसान किया सो थोड़ा परेशान उसदा हा और अपनी सेहत जो खराब करता हाश होता हूँ। दूसरा वक्त मौके फिर तक मैं चाह नोश होता हूँ कि हंसने किया सो सब तो मोटे एक्सरसाइज है, जितना खुली करी तो है हंसी सकते हैं तूना खुली करी किया सो हंसा खुश रहो करा और तंदुरुस्त रहो करा, ये सेहत अच्छी सेहत रहा राज हा। शो तो सब कुछ खरीद ही सकते हैं, सब कुछ अपनाए भी सकते हैं, लेकिन सेहत ऐसी चीज़ है जाहो तो है अगर खराब करी लेते तो त्यो पहले ही है बढ़ने में किया सो कभी बन दे नहीं तीन दिन फिर सेहत। बहरहाल इन श्रोता गणा सो के कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
0: नमस्कार जी। नमस्कार
1: जी। नमस्कार जी।
0: जी कौन बोल रहे हैं और कड़ी तो बोल रहे हैं?
1: जी मैं विपिन कुमार बोल रहा हूँ, क्या बोलते चील घाड़ी धर्मशाला।
0: चील घाड़ी धर्मशाला तो विपिन कुमार जी, क्या बात है जी। विपिन कुमार जी क्या क्या फरमाइश है तुम्हें?
1: हेलो।
0: हाँ जी विपिन जी।
1: भाई सा गाना नवा बलोचनी नवा गाना सागर भारद्वाज।
0: सागर भारद्वाज का सागर भारद्वाज का नवा गीत बलोचनी।
1: बलोचनी
0: ठीक है जनाब, जरूर सुन लेते सुए गीत।
1: ठीक है सर।
0: धन्यवाद धन्यवाद जुड़ने वास्ते धन्यवाद। तो अज जी कि तू सब भी दसना भी चाहता कि अज बड़ा खास दिन भी हा। जी बिल्कुल एक खास दिन हा, सो तू दसना चाहता है अज चंद्रयान दो लॉन्चिंग डेट भी हा जी, यानी कि चंद्रयान दो ही किया सो अज लॉन्च बचूरा तू, यानी कि 12 जुलाई जो ये दिन भी हा अज। और इसी सो की सो की शो तो अज नेशनल फ्लैग डे भी है। बिल्कुल 12 जुलाई 1947 जो ही किया सो भारत रे संविधान सभा में गया सो तिरंगे जो स्वतंत्रता भारत रे आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज रे रूप में गया सो स्वीकार करो तो शो तो इस प्रकार होगी जानकारी रहा सिलसिला के आसो चले रहना हा। बहरहाल मिनट आसूले 9 बचीन छोतो और फरमाइश आसूले 2 बचीन ताइया नवाला हुनना हा है ना। तो चलिए जी जरूर हुनन दिन बने रहे तो सब आर जे सचिन कपूर सोगे और लेके चलते तू सब भी जो इस भजन इस नुआले गायन री कनारी रेडियो गुंजन री यही गूंज किया सो बिल्कुल रहने हाँ और इसी गुंजो की तू सू भी किया सो बने रहना हर शो तो।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर है वेडी गुंजन धर्मशाला और हूँ सचिन कपूर हा तुसु सभी सोगे तुंदे वेडियो सेट मा हाजिर। आइए ता अगली फरमाइश भी कुछ त्राई की मिनट रही है ता सुले 5 मिनट बची ने ये फरमाइश हो करी लंदन पूरे फिर मोल दें शो तो

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेडी गुंजन धर्मशाला। तो ऐसा बी ट्यून कर रहा है कार्यक्रम हिंदी अपनी गप तो सब हूँ कर देन। फिलहाल आऊँ सचिन कपूर ले लेने तो सुत इस कार्यक्रम थो इजाजत और बने रहा जुड़े रहा आर जे सचिन कपूर सोगे गूंज अपने पन रे। नमस्ते धर्मशाला माँ बुढ़े भी सेवा कर दे रहे धर्मशाला वे जितने भी मनो हूँ कर देने हिमाचल प्रदेश है बेशक हिमाचल इंडिया थों बाहर जो भी हूँ कर देना जरूर माँ बुढ़े री सेवा करा। सब थों ज़्यादा सुख और सुकून मिलता है माँ बुढ़े री सेवा मंच प्रकृति भी सेवा करा। शो तो इन शब्द था सचिन कपूर लेने इजाजत। नमस्ते धर्मशाला।

नमस्कार श्रोताओं, इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। स्वच्छ एवं हवित विद्यालय वेटिंग 2025-26, हिमाचल के 11 स्कूलों को मिला राष्ट्रीय सम्मान। स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की सवदरता नवीनीकरण शुल्क 32 नवंबर तक करना होगा जमा। स्कूलों में 45 मिनट की एक्स्ट्रा क्लास से मजबूत की जाएगी भविष्य की नींव। शिक्षकों को हर हाल में टेट पास करना ही होगा। पानी की हर बूंद की रखवाली ग्रामीण निभाएंगे जिम्मेदारी। प्रदेश में हर महीने लगेंगे रोजगार और प्रशिक्षण मेले। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 के तहत हिमाचल प्रदेश के 11 स्कूलों को राष्ट्रीय स्तर पर सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट के लिए चुना गया है। इन स्कूलों का चयन स्वच्छता, जल संरक्षण और ऊर्जा दक्षता जैसे मानकों पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए किया गया है। श्रोताओं, पुरस्कार के रूप में प्रत्येक चयनित विद्यालय को ग्रामीण पत्र के साथ 1,00,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU ने संवर्ध कॉलेजों के एफिलिएशन रेगुलेशंस में संशोधित किया है। अब स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की सवदरता नवीनीकरण शुल्क 30 नवंबर तक जमा करना अनिवार्य होगा। इसके बाद कुलपति की अनुमति मिलने पर 31 दिसंबर तक 25,000 रुपये विलंब शुल्क के साथ आवेदन स्वीकार किए जा सकेंगे। यदि कोई संस्थान निर्धारित 30 नवंबर की तिथि तक आवेदन नहीं कर पाता है तो कुलपति आवश्यक आधारभूत सुविधाओं जैसे भवन, खेल मैदान, छात्रावास, उपकरण, पुस्तकालय व फर्नीचर की उपलब्धता या उपलब्ध करवाए जाने की संभावना से संतुष्ट होने पर ही 31 दिसंबर तक आवेदन स्वीकार कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए लर्निंग प्रोग्राम 2.0 के तहत अब प्रतिदिन 45 मिनट का विशेष जीरो पीरियड संचालित किया जाएगा। जीरो पीरियड का उद्देश्य उन विद्यालयों की शिक्षण कमजोरियों को दूर करना है जिनकी आधारभूत समझ अपेक्षित स्तर से कम है। यह कार्यक्रम लगभग 12 सप्ताह तक चलेगा और इसमें पूर्व कक्षाओं के गणित, अंग्रेजी और हिंदी विषयों के मूलभूत अवधारणाओं का दोहराया जाएगा। आदेशों के मुताबिक पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों के लिए विभाग की पहली शीतकालीन स्कूलों में जीरो पीरियड सुबह 10 बजे से 10:45 तक रहेगा। जी बिल्कुल श्रोताओं, तथा ग्रीष्मकालीन और अति ग्रीष्मकालीन स्कूलों में सुबह 9 से 9:45 तक का समय जो है वो संचालित किया गया है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, चंबा मंडी, सोलन और सिरमौर के शीतकालीन स्कूलों तथा ऊना, सोलन और सिरमौर के अति शीतकालीन स्कूलों में ये व्यवस्था बुधवार जुलाई से लागू होगी। अन्य ग्रीष्मकालीन स्कूलों में कार्यक्रम 17 अगस्त से जो है वो शुरू किया जाएगा। श्रोतम, हिमाचल प्रदेश के कार्यरत ऐसे शिक्षकों जिन्होंने अभी तक शिक्षा पात्रता परीक्षा टैट उत्तीर्ण नहीं की है, उन्हें अब 31 अगस्त 2028 तक हर हाल में जो है वो टैट पास करनी होगी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग भी हरकत में आ गया है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी जिला उपनिदेशकों को आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग ने बिना टैट वाले सभी कार्यरत शिक्षकों की जिला भर सूची 15 दिनों के भीतर निर्देशालय को भेजने के निर्देश दिए हैं। स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में की जा रही है। राज्य सरकार के शिक्षा सचिव के 2 जुलाई 2026 के पत्र के आधार पर सभी जिला उपनिदेशकों को तत्काल प्रभाव से निर्देश लागू करने को कहा गया है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी पात्र शिक्षकों को अनिवार्य है अब टैट क्लियर करना। भाई साहब, पूरी जानकारी
दी जा रही है। वेड़ीगुंजन धर्मशाला के माध्यम से परीक्षा पास करने के लिए उपलब्ध प्रत्येक अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। श्रोतों, हिमाचल प्रदेश सरकार के कैच देवेन 2026 अभियान के तहत गांव के पारंपरिक जल स्रोत जैसे बाबड़ी कुआं पोकर को दोबारा जीवित करेगी और वर्षों के पानी को इकट्ठा करने के लिए छोटे छोटे काम करवाएगी जिसमें ग्रामीण की सीधी भागीदारी होगी और सभी कामों को इंटरनेट पोर्टल पर जियो टेकिंग की जाएगी। श्रोतों, हिमाचल प्रदेश में युवाओं को उद्योगों की ज़रूरत के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए जो है वो मंगलवार को राज्य काउंसलिंग की बैठक जो है सचिवालय में आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के प्रधान सचिव एवं काउंसलर के अध्यक्ष डॉक्टर अभिषेक जैन ने की है। श्रोतों, बताया गया है कि वर्तमान में तकनीकी शिक्षा विभाग के विभिन्न संस्थानों में 58 प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्रताप कर रहे हैं। जिला रोजगार अधिकारी अक्षय कुमार ने आज जानकारी देते हुए बताया है कि 25 एवं 26 जुलाई को राजकीय महाविद्यालय नगरोटा बगवा में एक विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रोजगार मेले में देश की विभिन्न नामी गिरामी कंपनियां भाग लेंगी जो विभिन्न पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों को इंटरव्यू करेंगी और फिर उसके बाद उनका चयन होगा। श्रोताओं, इस रोजगार मेले में 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिग्री होटल मैनेजमेंट तथा किसी भी ट्रेड से आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपनी शिक्षण योग्यता के अनुसार भाग ले सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी अपने साथ बायोडाटा सभी शिक्षण प्रमाण पत्रों की मूल ये सभी प्रमाण पत्र जो है वो ज़रूर लेकर आएँ और साथ ही अपना आधार कार्ड भी और रोजगार कार्यालय का पंजीकरण यदि हो पासपोर्ट आकार का फोटो भी लगेगा। श्रोताओं, सभी दस्तावेज लेकर निर्धारित तिथि में रोजगार मेले में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ये खास बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओ, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 MHz पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप है इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोताओ, इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। श्रोताओ, आज का गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। तो कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से प्यार भरी नमस्ते। और श्रोताओ, इसी नमस्ते के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं, उन्हें आपके साथ साझा करेंगे। श्रोताओ, पूरे दो घंटे का सफ़र आपके साथ रहेगा। इस सफ़र को थोड़ा सा रंगीन भी बनाने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ आप तक जानकारियाँ भी पहुँचाएँगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन वैसे भी चलने का नाम है, अगर रुक गए तो गाड़ी भी रुक जाएगी और चलते रहे तो कहीं ना कहीं किसी मुकाम तक पहुंच ही जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं गीत संगीत की ओर और मिलकर सुनते हैं कार्यक्रम का प्यारा सा गीत। तो आप बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

जी हाँ ईश्वर, जीवन चलने का नाम है और जीवन में रुकना तो बिल्कुल नहीं है। करियर में आगे बढ़ना है, जीवन में तरक्की पानी है, तो कहीं ना कहीं हमें आगे जाने के लिए चलना पड़ेगा। और रुक गए तो कहीं भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते हैं, दुख भी आते हैं, तो अगर हम दुखों से हार मान गए तो जीवन में तरक्की तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा अपने मन को शांत करने की कोशिश कीजिए और ये सोच के आगे बढ़िए कि ज़िंदगी के सफ़र में हर किसी के साथ इस तरह के मुकाम भी आते हैं, इस तरह के उतार चढ़ाव भी आते हैं, तो इनसे जूझते हुए ज़िंदगी के सफ़र में हमें आगे बढ़ना है और अपना नाम कमाना है। श्रोताओं, कहते हैं उम्र थका नहीं सकती, ठोकर गिरा नहीं सकती, अगर जीत हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। जी हाँ, अपने मन में एक जुनून रखिए जीवन में आगे बढ़ने का। जब हम ठान लेते हैं कि हमने जीवन में आगे बढ़ना है, तरक्की पानी है या कुछ करना है, तब हम किसी भी चीज़ की परवाह किए बिना आगे बढ़ते जाते हैं, बेशक हमें मेहनत ही क्यों ना करनी पड़े। और फिर कहते हैं ना, मेहनत का जो फल होता है बहुत ही मीठा होता है। और मेहनत करते जाइए, तरक्की करते जाइए, फिर देखिए जो सफलता है आपके कदमों को चूमती है। तो श्रोताओं, इन्हीं बातों और जानकारियों के साथ कार्यक्रम में फिर से थोड़ा सा हम आगे की ओर बढ़ते हैं और इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

जी हाँ यशोधव, गीत के जरिए बहुत ही अच्छी बात कही है कि बिना बात के भी कई बार मन मुस्कुराता है। जब मन में खुशी हो तो चेहरे पर हंसी आ ही जाती है। तो हमेशा अपने मन को खुश रखिए, क्योंकि जब श्रोताओ हमारा मन खुश होता है तो कहीं ना कहीं हमारा चेहरा भी खिला रहता है। और आंतरिक खुशी होना बेहद ज़रूरी होती है, क्योंकि जीवन में अगर हम खुश नहीं हुए तो बहुत सारी बीमारियाँ हमें घेर लेती है, जैसे तनाव, टेंशन, परेशानियाँ जो है हमें घेर लेती है, और उनका असर जो है हमारे चेहरे पर दिखता है। अगर आप खुश रहेंगे तो वो खुशी आपके चेहरे से झलकती है, और उस खुशी को देखकर और भी सामने वाले हमारे रिश्तेदार, दोस्त, मित्र जो है खुश हो जाते हैं। तो अपनी खुशी को और दोगुना करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं कार्यक्रम की और जानकारियों की, तो और थोड़ा सा रुक कर लेते हैं। श्रोताओ, आज के दिन की बात अगर हम करें तो आज है 22 जुलाई, शायद मैं कहीं भूल तो नहीं रही हूँ, एक बार चेक कर लूँ। जी हाँ, चेक कर लिया, सही बात है, 22 जुलाई ही है। क्योंकि आपसे मिलने की उत्सुकता इतनी होती है कि तारीख की तरफ ध्यान नहीं जाता है, लेकिन पहले से पता था कि आज है 22 जुलाई और मुझे जाना है अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए। फिर भी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहती है ना, क्योंकि बहुत सारी टेंशन, परेशानियाँ, भागदौड़ भरी ज़िंदगी हम सभी की है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट तो हो ही जाता है। लेकिन हमने इस डाउट को पूरा कर लिया है और 22 जुलाई का दिन भारतीय इतिहास में मुख्य तौर पर राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस के रूप में जाना जाता है। 1947 में तिरंगे को अपनाया गया था। इसके अलावा इस तारीख को अमेरिकी अलटांटा की लड़ाई और विश्व के अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ श्रोताओं, 1947 में संविधान सभा ने तिरंगे को आधिकारिक तौर पर स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में भी अपनाया था। 1864 में अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान जॉर्जिया में अटलांटा की लड़ाई लड़ी गई थी। इसके साथ साथ 1933 में पायलट वाइली पोस्ट अकेले विमान से दुनिया का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति बने थे। और 2008 की ओर रुख करें तो मनमोहन सिंह सरकार ने भारत की लोकसभा में विश्वास मत हासिल किया था। तो श्रोताओ, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। जानकारियाँ भी और भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, उन्हें भी हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में आप सभी का करवा देते हैं मनोरंजन, कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। तो सुनते रहिए रेडियो मंजन।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से हमारी वापसी हो चुकी है और हम फिर से कुछ जानकारियां और आपके साथ साझा कर लेते हैं। श्रोताओं, 22 जुलाई राष्ट्रीय ध्वज के लिए ऐतिहासिक दिन जाना जाता है और आज़ाद भारत के तिरंगे झंडे का भी इतिहास है। देश का तिरंगा जब शान से लहराता है तो गर्व की अनुभूति होती है, भारतीय होने का एहसास दिलाता है। उसी तिरंगे झंडे के लिए 22 जुलाई का दिन ऐतिहासिक है। ये इतिहास राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ा है और भारत की आज़ादी के इतिहास में इस तारीख का खास महत्व भी है। 22 जुलाई को पहली बार तिरंगे को अंगीकार किया गया था। दरअसल श्रोताओं, 22 जुलाई 1947 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में संविधान सभा के सदस्य की बैठक में तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अंगीकार किया गया था। इस बैठक में आज़ाद भारत के लिए एक झंडे का प्रस्ताव रखा गया था और इस प्रस्ताव पर गहन चर्चा और फैसला लिया गया था कि केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग वाले झंडे को ही कुछ बदलाव के साथ आज़ाद भारत का झंडा बनाया जाए। तो श्रोताओं, अपनी जानकारियों को हम फिर से थोड़ा सा यहाँ पर रोकते हैं और इन्जॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओ, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से हम वापिस आ चुके हैं लेकर ढेर सारी जानकारियां। तो हम तिरंगे की बात कर रहे थे श्रोताओ, तिरंगे के महत्व की बात करें तो भारत में वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को बनाने का श्रेय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिंगली वेंकैया को जाता है। और साथ ही साथ वेंकैया ने बनाए ध्वज में लाल रंग और हरे रंग की पट्टियाँ भी थी, जो भारत के दो प्रमुख धर्मों का प्रतिनिधित्व भी करती थी। और इसके साथ 1921 में पिंगली जब इसे लेकर गांधी जी के पास गए तो उन्होंने ध्वज में एक सफ़ेद रंग की पट्टी चरखे को भी लगाने की सलाह दी। सफ़ेद रंग भारत के बाकी धर्मों और चरखा स्वदेशी आंदोलन और आत्मनिर्भर होने का प्रतिनिधित्व भी करता है। इसके साथ साथ श्रोता, 1923 में पहली बार इस तिरंगे का हुआ था प्रयोग। 1923 में नागपुर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान हजारों लोगों ने अपने ध्वज को हाथों में थामा था और साथ ही साथ थामने के साथ जो है बहुत सारा इसे सम्मान भी मिला था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस ध्वज पर का इस्तेमाल किया था। हालांकि भारत के नागरिकों को राष्ट्रीय पर्व के अलावा किसी भी दिन अपने घर में दुकानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की छूट नहीं थी, लेकिन फिर भी 2002 में इंडियन फ्लैग कोड ने बदलाव किया। अब हर भारतीय नागरिक किसी भी दिन अपने घर दुकान फैक्ट्री ऑफिस के ऑफिस में सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। और साथ ही साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव भी हम सभी जानते हैं मनाया जाता है। इसके उपलक्ष्य में भी देश में हर घर तिरंगा अभियान भी मनाया जाता है। इस दौरान सभी के घर दफ्तर और वाहन ऊंची इमारत हर जगह तिरंगा फहराकर देश के प्रति अपनी कृतज्ञता को भी व्यक्त किया जाता है। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियां और भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। फिलहाल हमने बात की है तिरंगे की कि तिरंगे का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उनके रंगों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और कितने सम्मान के साथ हम अपने तिरंगे को लहराते हैं या फिर अपने ऑफिस में अपने घर में अपने गाड़ी में सजाते हैं। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में आप सभी का फिर से करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओ, इस समय आप बने हुए हैं रेडियो कुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। तो श्रोताओ, आज का कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमंतो। कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ आज की जानकारियां और आपके साथ साझा करते हैं। 1918 में भारत के पहले कुशल पायलट चंद्रलाल राय प्रथम विश्व युद्ध के समय लंदन से जर्मनी से हुई लड़ाई में मारे गए थे। और साथ ही साथ 1981 में भारत के पहले भूस्थित उपग्रह एप्पल ने कार्य करना शुरू किया था। 2001 में शेर बहादुर देउबा नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने थे। और 2001 में समूह 8 के देशों का जिनेवा में सम्मेलन संपन्न हुआ था। श्रोता, 2003 में इराक में हवाई हमले में तानाशाह सदाम हुसैन के दो बेटे मारे गए थे। इसके साथ साथ 2012 में प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए थे। तो श्रोता, ये तो थी हमारी जानकारियाँ भी और भी हम आपके साथ साझा करेंगे। पहले सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

चलो, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से हम वापिस आ चुके हैं और कुछ जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। 22 जुलाई जिला रोजगार अधिकारी अक्षय कुमार ने आज जानकारी देते हुए बताया है कि 25 और 26 जुलाई को राष्ट्रीय महाविद्यालय नगरोटा बगवा में एक विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस रोजगार मेले का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के शिक्षित तथा बेरोजगार युवाओं को देश की प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र में कंपनियों के माध्यम से रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाना है। उन्होंने बताया कि रोजगार मेला में देश के विभिन्न नामी गिरामी कंपनियां भाग लेंगी, जो विभिन्न पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेकर चयन करेंगी। इस रोजगार मेले में 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिग्री होटल मैनेजमेंट किसी भी ट्रेड से ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार भाग ले सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी अपने साथ बायोडाटा, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां तथा छाया प्रतियां, आधार कार्ड, रोजगार कार्यालय का पंजीकरण, पासपोर्ट आकार के फोटो तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज लेकर निर्धारित तिथियों में रोजगार मेले में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में फिर से सुनते हैं कार्यक्रम का ये एक प्यारा सा गीत। तो आप बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से हम वापस आ चुके हैं और एक बार फिर से अपने श्रोताओं का स्वागत भी करते हैं और इसी स्वागत के साथ श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे की। श्रोता, थोड़ा सा हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा चंद्रयान 2 मिशन को 22 जुलाई यानी आज के दिन 2019 को दोपहर 2:43 लॉन्च किया गया था। इसके साथ साथ इसे आंध्र प्रदेश के हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट के माध्यम से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया था। इस मिशन के बारे में कुछ बहुत सारी बातें भी सामने आई हैं। लॉन्च का स्थान सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा आंध्र प्रदेश रहा है। इसके साथ साथ जो है हमारा लक्ष्य चंद्र के अनुधुए माफ कीजिएगा चांद के अनुछुए दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र की सतह पर अध्ययन करना और वहाँ मौजूद खनिजों पानी की मात्रा आदि का पता लगाना है। और इसके साथ साथ मुख्य घटकों की बात की जाए तो इस मिशन में 3 मुख्य हिस्से शामिल थे, आर्बिटर, लैंडर और रोवर। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। जानकारियाँ भी और भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल रुकते हैं और आप सभी को सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। तो श्रोताओ, हम बात कर रहे थे चंद्रयान दो मिशन के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 22 जुलाई को दोपहर, जैसे हमने पहले भी बात की, 2:43 चंद्रयान दो मिशन को लॉन्च किया गया। मिशन 15 जुलाई को GSLLV MK3 के क्रायोजेनिक इंजन की हेलियम बॉटल में लीक के कारण रोका गया था, और साथ ही साथ यान के प्रक्षेपण में केवल 56 मिनट पहले से रोका गया था। यदि सब कुछ ठीक रहता तो यान अपने आधारित समय 2:51 पर प्रक्षेपित किया जाता। इसरो ने आधिकारिक तौर पर भी इसकी तकनीकी खामी की पुष्टि की थी। श्रोता, एक वैज्ञानिक ने कहा था कि इंजन में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन भरने के बाद हीलियम को भरने का काम हो रहा था। प्रक्रिया 350 बार तक हीलियम की बोतल पर दबाव डालने की थी और आउटपुट को 50 बार पर सेट करना था। हीलियम भरने के बाद हमने पाया कि दबाव तेजी से कम हो गया, जिससे लीक का संकेत मिला। टीम ने गैस बॉटल में हुए असल लीक के स्थान का पता लगाया और खामी को दूर किया। तो श्रोताओ, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों को फिर से थोड़ा सा रोकते हैं और इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: चलो इसी गीत के साथ कार्यक्रम में समय हो गया है, साई के 7 बज चुके हैं और आइए सुनते हैं समाचार।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनिटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। इससे पहले सुबह अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
1: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही तीसरी बार स्थगन के बाद दोपहर में फिर शुरू हुई तो भी विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
3: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वो बदलाव की मांग कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 11 सितम्बर को होगी। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकारी नीतियों का उद्देश्य बच्चों सहित सभी उपयोगकर्ताओं के लिए मुक्त, सुरक्षित, विश्वसनीय और उत्तरदायी इंटरनेट प्रदान करना है। लोकसभा में श्री वैष्णव ने कहा कि 2023 में लागू डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के उपयोग को विनियमित करने के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिये शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स मुकाबले में आज सिंधु ने उन्नति हुड्डा को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को शिकस्त दी। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओ, इसी अपने पन की गूंज के साथ फिर से हम कार्यक्रम में वापिस आ चुके हैं अपनी जानकारियां लेकर। तो हम चंद्रयान की बात कर रहे थे श्रोताओ। श्रीहरिकोटा में सोमवार तड़के देश भर में 50,000 लोग पहली बार रॉकेट लॉन्च को अपनी आंखों से देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। इस तरह की निराशा की उम्मीद तक नहीं की जा सकती थी। मिशन कंट्रोल सेंटर की BIP गैलरी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मौजूद थे और मिशन के रुकने से सभी के हाथ मायूसी लगी। 978 करोड़ रुपए के चंद्रयान मिशन में GSLV MK3 लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें 3 स्टेज क्रायोजेनिक टेक्निक से लेंस CE-20 इंजन लगा हुआ था। इस इंजन के तौर पर लिक्विड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग किया गया था। तो श्रोताओं, अपनी जानकारियों को हम फिर से थोड़ा सा यहाँ पर रोकते हैं और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

शोधो इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में हम फिर से वापस आ चुके हैं और अपनी जो जानकारियां हैं आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो श्रोतो, जानकारियों में हम थोड़ी सी चंद्रयान की और बातचीत कर लेते हैं। ये कोई एक दिन की यात्रा नहीं है, बल्कि इसमें कई दिनों का समय लग जाता है। धरती और चंद्रमा की औसत दूरी 384,000 किलोमीटर है और अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों को 1960 और 1970 के दशक में चांद तक पहुंचने में 3 दिन का वक्त लगा था। और क्या था चंद्रयान 2 मिशन, बात करें तो ये भारत का पहला चंद्रमा मिशन है। इसमें यान को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा गया था। अगर चंद्रमा 2 से चांद पर बर्फ की खोज हो पाती है तो भविष्य में यहाँ इंसान का प्रवेश संभव हो सकता है। इसलिए शोध कार्य के साथ साथ अंतरिक्ष विज्ञान ने भी नई खोज का रास्ता खोला है। लॉन्चिंग के 53 से 54 दिन बाद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 2 की लैंडिंग हुई और 14 दिन तक ये डाटा जुटाया गया। और चंद्रयान के जरिए से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ले जाया गया आज तक जहां कोई नहीं पहुंच पाया है। इस जोखिम से वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय को लाभ हुआ। चंद्रयान 6 तथा 7 सितंबर को चंद्रमा से दक्षिण ध्रुव के पास लैंड करेगा। ऐसा होते ही भारत चांद की सतह पर लैंडिंग करने वाला 4था देश बन जाएगा। और साथ ही साथ श्रोताओं, हम कार्यक्रम में और भी आपके साथ जानकारियां साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

तारीफ तो उस खुदा की है जिसने हमें बनाया है, आज जाने कहाँ से वो मिट्टी भी लाया है। जी हाँ बिल्कुल श्रोता, अगर खुदा ने, ऊपर वाले ने हमें बनाया है और हम जी रहे हैं इस धरती पर, इस दुनिया पर, तो बहुत सारे काम भी हमें करने हैं। और वो काम तब हो सकते हैं जब श्रोताओं हम रखेंगे अपना ध्यान और ख्याल। ख्याल तब रखा जाता है जब हम हों तंदुरुस्त। तंदुरुस्त होकर हर काम को हम भली भांति से कर सकते हैं। और शरीर में थोड़ी सी भी थकान हो, कमज़ोरी हो, या कोई परेशानी हो, कोई दुख हो, तो किसी भी काम को हम नहीं कर सकते हैं। तो जीवन के उतार चढ़ाव हर किसी के जीवन में आते रहते हैं और बीमारियां भी कहीं ना कहीं हमें घेर लेती है। ऐसे में हमें जो है अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट, डॉक्टर से राय परामर्श ज़रूर लेना चाहिए और उनके बताए हुए दवाइयों को भी जरूर ग्रहण करना चाहिए। श्रोता, हमारे शरीर में बहुत सारी कमियां हो जाती हैं, पोषक तत्वों की आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होती है, जिन्हें पूरा करने के लिए विटामिन्स की अगर हम बात करें तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। यही विटामिन्स महिलाओं के लिए भी ज़रूरी होते हैं और पुरुषों के लिए भी ज़रूरी होते हैं। महिलाओं की प्रजनन क्षमता, हड्डियों की मजबूती, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अगर समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो आगे चलकर बड़ी सारी मुश्किलें भी पैदा हो जाती हैं। तभी कहा जाता है श्रोताओं की समय रहते हमें हर चीज़ का ध्यान और ख्याल रखना चाहिए। और अगर हम टेस्ट की बात करें, डेली रूटीन की बात करें, डेली रूटीन में तो टेस्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम महीने, दो महीने या छः महीने में अपने टेस्ट हमें डॉक्टर की सलाह के अनुसार ज़रूर करवाने चाहिए। और अक्सर हम सभी देखते हैं कि बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल की कमी शरीर में देखी जा सकती है और इस कमी के कई लक्षण भी हमारे सामने आते हैं, कई संकेत भी हमें नज़र आते हैं। और विटामिन टेस्ट करवाने से पता चलता है कि हमारे शरीर में कितने विटामिन्स की कमी है। श्रोता, ये जो है जब हम टेस्ट करवाते हैं तो हमारा उपचार भी सही समय पर शुरू हो जाता है और शरीर में पोषण संबंधी कमियों का भी पता चल जाता है। समस्या बहुत सारी होती है, जैसे एनीमिया विटामिन की कमी से होता है, इसका उपचार समय पर करवा लिया जाए तो कहीं ना कहीं हम जो है आसानी से अपने हर

श्रोताओ, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में हम जो है विटामिन्स की बात कर रहे थे। श्रोताओ, ये हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत, प्रतिरक्षा प्रणाली और मूड को बेहतर बनाता है। साथ ही साथ विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन और तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। फॉलिक एसिड की बात करें तो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के विकास के लिए ज़रूरी होता है। आयरन की बात करें श्रोताओं, तो आयरन लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन और ऊर्जा के स्तर को बनाए रखता है। वहाँ कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम दांतों की मजबूती, हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी होता है। इसकी कमी हमें परेशानी में डाल सकती है, तो शरीर की नियमित जांच करवाते रहें। जब आपको लगे कि आपके शरीर में विटामिन की कमी है या कोई तकलीफ़ है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिले ताकि समय रहते आपका इलाज संभव हो सके। तो श्रोताओ, अपने जानकारियों के साथ कार्यक्रम में सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। उससे पहले लेते हैं एक अंतराल।

श्रोताओं, इस समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। तो हम जो है बात कर रहे थे विटामिन्स के बारे में। श्रोताओं, अनियमित जो मासिक धर्म होता है हमेशा थकान रखता है, बालों का लगातार झड़ना होता है और शरीर में विटामिन की कमी का संकेत होता है। ऐसे में समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। इसमें विटामिन टेस्ट ज़रूर कराएं। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान भी विटामिन टेस्ट करवाना सही रहता है और सही समय पर सही जांच बेहद ज़रूरी होती है। डाइट की बात करें तो श्रोताओं, डाइट में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जो है शामिल करें, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियाँ, फल, ब्रोकली, पत्ता गोभी, कीवी, अंगूर, सोयाबीन, ऑलिव ऑयल में विटामिन पाया जाता है। इसके साथ साथ लाल और पीले रंग की सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स और अन्य स्वास्थ्यवर्धक पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च, टमाटर और गाजर आदि में। तो श्रोता, यानी हमें अपनी थाली का रखना होता है बेहद ख्याल, तभी तो रह सकते हैं हम सेहतमंद और तंदुरुस्त। तो थोड़ा सा अपने आप को समय दें, अपना ध्यान और ख्याल रखें, तभी तो आप इस जीवन को एंजॉय कर सकते हैं और वो भी तंदुरुस्त रहकर। तो श्रोताओं, तंदुरुस्त रहने के लिए गीत संगीत भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर तंदुरुस्त हो तभी मन करता है कि थोड़ा सा संगीत भी सुना जाए।

श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में हम थोड़ा सा विटामिन्स की बात कर रहे थे कि किस तरह से हम उन्हें पूरा कर सकते हैं, और कमी के संकेत मिलते ही हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनकी बताई हुई सलाह के अनुसार ही अपनी दवाइयों का सेवन करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। और बहुत सारे हम में से श्रोता ऐसे हैं जो सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। हमेशा सप्लीमेंट लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें और उसके बाद ही सप्लीमेंट लें। और विटामिन्स की कमी काफ़ी हम लोगों में देखी जा सकती है, खासकर महिलाओं में ज़्यादा होती है। और ये उन महिलाओं में भी ज़्यादा होती है जो माँ बनने वाली हैं या फिर जो स्तनपान करवाने वाली महिलाएं हैं, इसी वजह से उनमें B12 की भी कमी देखी जाती है। और आजकल तो आम खास हर किसी में B12 की कमी देखी जाती है। ऐसे में ज़रूरी है कि साल में एक बार विटामिन टेस्ट ज़रूर करवाएं। अगर लंबे समय तक हम विटामिन्स की जाँच नहीं करवाते हैं तो दिल से जुड़ी बीमारियाँ, मेंटल हेल्थ, पाचन समेत कई बीमारियों के संपर्क में हम लोग आ जाते हैं। और सही स्वास्थ्य के लिए विटामिन्स के साथ साथ अन्य पोषक तत्व का स्तर भी सामान्य होना चाहिए। समस्या होने पर तुरंत हमें कहाँ जाना है श्रोताओं? हमें जाना है अपने डॉक्टर के पास। जाएंगे डॉक्टर के पास तो रहेंगे तंदुरुस्त, और नहीं जाएंगे तो पड़ेंगे बीमार। चाहते हैं कि रहें तंदुरुस्त, तो जल्दी से भागिए, दौड़िए, मिलिए अपने डॉक्टर से। और

0: श्रोतो इसी गीत के साथ रात्रि के 7:45 हो चुके हैं और कार्यक्रम में समय हो गया है समाचारों का।
1: प्रदेश में नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान शुरू। अभियान में आयोजित प्रतियोगिताओं के लिए 11.5 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने हिमाचल को टीबी मुक्त राज्य बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों व समय पर जांच की जरूरत बताई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, नीट परीक्षा में अनियमितताओं के मामले में केंद्र सरकार ने तत्काल उठाए सख्त कदम, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई जारी। और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा, लाहौल स्पीति के उदयपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज निर्माण को भूमि की केंद्र ने दी सैद्धांतिक मंजूरी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। वे आज विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए विदेशों में एक्सपोजर विजिट की व्यवस्था करेगी, जिसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को ग्रीन हाइड्रोजन के लिए नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और डाटा स्टोरेज जैसे आधुनिक तकनीकों के अनुरूप स्वयं को विकसित करना होगा। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय में बीटेक AI पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए 5 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की।
2: मैं यहाँ जो अंडर ग्रेजुएट जो बीटेक के कोर्सेज आपके नए शुरू होंगे, उसके लिए मैं आपको विश्वविद्यालय का पुराना छात्र होने के नाते भी 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूँ।
1: इस अवसर पर उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ सही सोच, सशक्त व्यक्तित्व और नेतृत्व के संस्कार देने का आह्वान किया।
2: जो शिक्षक बैठे हैं, उनके सामने भविष्य की चुनौतियों का सामना करने वाले छात्र बैठे हैं। उन छात्र को जो दिशा आप देंगे, वो निश्चित तौर पर इस प्रदेश की संस्कृति और जो आपकी शिक्षा ग्रहण करके आगे जाएंगे, वो हिंदुस्तान में अपना नाम कमाएंगे। ये विश्वविद्यालय की ताकत से होता है।
1: प्रदेश में नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान शुरू किया गया है। शिमला में अभियान की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस राज्यव्यापी पहल के तहत राज्य की सभी पंचायतों, नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में चिट्टे के दुष्प्रभावों के प्रति युवाओं को जागरूक किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष रूप से नशे से सर्वाधिक प्रभावित 235 पंचायतों में गहन स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं के लिए 11.56 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज लोकभवन शिमला में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी मुक्त भारत अभियान 2.0 की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्षय रोग का उन्मूलन केवल स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये एक जन आंदोलन है, जिसमें समाज के हर वर्ग की सक्रिय सहभागिता बेहद जरूरी है। राज्यपाल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान आरोग्य शिविरों में जनप्रतिनिधियों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने और उच्च जोखिम वाले लोगों को समय पर टीबी जांच के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने विश्वास जताया कि सामूहिक प्रयासों, सक्रिय जन सहभागिता और समय पर रोग की पहचान से हिमाचल प्रदेश जल्द ही टीबी मुक्त राज्य बनने का लक्ष्य हासिल करेगा। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने अपनी संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को विश्व स्तरीय फिनेकल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस उपलब्धि पर बैंक प्रबंधन अधिकारियों, कर्मचारियों और सभी ग्राहकों को बधाई देते हुए कहा कि डिजिटल बैंकिंग के इस नए दौर में राज्य सहकारी बैंक नई ऊंचाइयों को छुएगा।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने अपनी पूरी बैंकिंग प्रणाली को विश्व स्तरीय फिनेंकल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर सफलतापूर्वक ट्रांसफर कर दिया है। यह बैंक के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस नई तकनीक के लागू होने से प्रदेश भर की 262 शाखाओं के माध्यम से ग्राहकों को पहले से अधिक तेज, सुरक्षित, पारदर्शी और आधुनिक बैंकिंग सेवाएं मिलेगी।
1: लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार खेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। शिमला जिला के कटासनी में आज निर्माणाधीन शूटिंग रेंज व इंडोर स्टेडियम का निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने ये बात कही। लोक निर्माण मंत्री ने निर्माण कार्य में गुणवत्ता, निर्धारित समय सीमा और विभिन्न तकनीकी पहलुओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि नीट परीक्षा में अनियमितताओं के मामले में केंद्र सरकार ने तत्काल सख्त कदम उठाए हैं। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि मामले की सीबीआई से जांच करवाकर दोषियों को गिरफ्तार करने के अलावा पुनर्परीक्षा भी करवाई गई और दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई जारी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ऐसे प्रावधान कर रही है जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश में सुक्खू सरकार ने पेपर लीक के मामले में सीबीआई द्वारा जिम्मेदार ठहराए गए अधिकारियों को पुरस्कृत किया और जिन अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठे उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि हाल ही में हुई भर्ती परीक्षा में भी पेपर लीक के साक्ष्य सामने आए हैं, लेकिन सरकार ने इस मामले को दबाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में कानून के दायरे में रहकर पारदर्शी और सख्त कार्रवाई की है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि लाहौल स्पीति जिला के उदयपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज निर्माण के लिए केंद्र से भूमि की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। उन्होंने कहा कि इस कॉलेज के निर्माण संबंधी मामला लगभग 15 वर्षों से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में लंबित था। राजेश धर्माणी ने बताया कि इस मामले में राज्य सरकार के ठोस प्रयासों से मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा वन अधिनियम 1980 के तहत संस्थान को 2 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू हमेशा आम लोगों की जरूरतों व जन भावनाओं के अनुसार ही कार्य करते हैं। हमीरपुर में आज एक कार्यक्रम में पुराने गर्ल्स स्कूल को एजुकेशन बनाकर इसे राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के नाम से संचालित करने के सरकार के फैसले पर आभार व्यक्त करने पहुंचे विभिन्न संगठनों व संस्थाओं के पदाधिकारियों से संवाद के दौरान सुनील शर्मा बिट्टू ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हमीरपुर में किसी भी तरह की समस्या नहीं रहनी चाहिए और मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार वे हमीरपुर के हर क्षेत्र का दौरा कर जन समस्याओं को जान रहे हैं ताकि उनका निवारण किया जा सके। सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि हमीरपुर जिले की हर समस्या का समाधान और चहुंमुखी विकास के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य किया जा रहा है। सिरमौर जिला के नाहन विधानसभा क्षेत्र की टोकियो पंचायत की गुगलों बस्ती में भूमि कटाव के चलते भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। इस संबंध में आज स्थानीय लोगों ने पंचायत प्रधान अनीता के नेतृत्व में उपायुक्त प्रियंका वर्मा से मुलाकात कर समस्या के समाधान की मांग की। उन्होंने कहा कि गुगलों बस्ती में पिछले कई वर्षों से लगातार भूमि कटाव होने से यहां कई मकानों को खतरा हो गया है और लोग डर के साय में जी रहे हैं। इसके अलावा भूमि कटाव से लोगों की उपजाऊ जमीनें भी बर्बाद हो गई हैं।
4: आज हम डीसी साहब से मिलने आए हैं। टोकियो पंचायत में गुंगलो बस्ती है, कई सालों से वहाँ भूमि कटाव हो रहा है जिसके कारण काफी घरों को नुकसान हो भी रहा है। बरसात सिर पर हो रही है, वहाँ पे काफी किसानों की जमीन बह गई है, फिर जान मान को भारी नुकसान हो सकता है।
1: प्रदेश के अधिकांश इलाकों में आज भी मॉनसून की वर्षा का दौर रुक रुक कर जारी रहा जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज चंबा और कांगड़ा जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जबकि ऊना, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन द्वारा लोगों को सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और नदी नालों से दूरी बनाए रखने की अपील की गई है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला की बोह घाटी में बादल फटने की घटना से प्रभावित परिवारों के साथ दूरभाष पर बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने प्रभावितों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में भविष्य की जरूरतों के अनुसार शुरू किए जाएंगे नए पाठ्यक्रम। प्रदेश में नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान शुरू। अभियान में आयोजित प्रतियोगिताओं के लिए 11.5 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने हिमाचल को टीबी मुक्त राज्य बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों व समय पर जांच की जरूरत बताई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, नीट परीक्षा में अनियमितताओं के मामले में केंद्र सरकार ने तत्काल उठाए सख्त कदम, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई जारी। और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा, लाहौल स्पीति के उदयपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज निर्माण को भूमि की केंद्र ने दी सैद्धांतिक मंजूरी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
0: श्रोताओं, समाचारों के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, और आज के कार्यक्रम में श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त सुमन। तो कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम आप पहुंचे हैं, तो चलते चलते आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर। हर घर

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सचू ने
2: 5 YouTube वीडियो को लाइक करके 5 लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
2: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मीन्स ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। क्या बात है यार।
3: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
3: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें।

0: वित्तीय लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
1: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं आपको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं आपको। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है, अब ठान के मुद्दे स्वच्छता की ज्योत जागी रहे, स्वच्छता की ज्योत जागी रहे।

0: पर एचआईवी कभी न दो। अगर आप मां बनने वाली हैं, तो एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में सलाह और एचआईवी टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को एचआईवी से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
1: एक कदम जिंदगी की ओर।
2: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहारी जी की।

0: अरे भैया, ये आप सबने हेलमेट क्यों पहना है? ये तो बाइक वाला हेलमेट है ना।
1: अब आप नहीं पहन रहे तो सोचा हम ही पहन लेते हैं।
2: असलियत में हेलमेट किसको शोभा देता है ये तो सबको पता है। बाइक चलाते वक्त सर बचाएं, हेलमेट पहने। वेयर अ हेलमेट ऑलवेज बिकॉज हेलमेट सेव्स।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी,

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर। हर घर

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सचू ने
2: 5 यूट्यूब वीडियो को लाइक करके 5 लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
2: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इतने से ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
3: क्या बात है यार।
4: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
4: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें।

0: लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसे। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
1: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं आपको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं आपको। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है, अब ठान के मुट स्वच्छता की ज्योत जागी है, स्वच्छता की ज्योत जागी है।

0: एचआईवी कभी न दूं। अगर आप मां बनने वाली हैं, तो एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में सलाह और एचआईवी टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को एचआईवी से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
1: एक कदम जिंदगी की ओर।
2: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहारी जी के।

0: अरे भैया ये आप सबने हेलमेट क्यों पहना है? ये तो बाइक वाला हेलमेट है ना।
1: अब आप नहीं पहन रहे तो सोचा हम ही पहन लेते हैं।
2: असलियत में हेलमेट किसको शोभा देता है ये तो सबको पता है। बाइक चलाते वक्त सर बचाएं, हेलमेट पहने। वेयर अ हेलमेट ऑलवेज बिकॉज हेलमेट सेव्स।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: सुबह से मुंह फुला के घूम रही है ये।
6: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
5: किससे?
6: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है, रात को सपने में देखा था ना।

नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

0: दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।
1: कुछ हुआ क्या
2: अभी तो नहीं,

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर। हर घर

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सचू ने
2: 5 YouTube वीडियो को लाइक करके 5 लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा
2: है? हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मीन्स ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। क्या बात है यार।
3: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
3: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन एप्स डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना पूरी जानकारी के कोई भी वित्तीय लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
4: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं आपको। निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं आपको। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। अब ठान के मुद्दे स्वच्छता की ज्योत जागी है। स्वच्छता की ज्योत जागी है।

0: एचआईवी कभी न दो। अगर आप मां बनने वाली हैं, तो एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में सलाह और एचआईवी टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को एचआईवी से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
1: एक कदम जिंदगी की ओर।
2: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहारी जी की।

0: अरे भैया, ये आप सबने हेलमेट क्यों पहना है? ये तो बाइक वाला हेलमेट है ना।
1: अब आप नहीं पहन रहे तो सोचा हम ही पहन लेते हैं।
2: असलियत में हेलमेट किसको शोभा देता है ये तो सबको पता है। बाइक चलाते वक्त सर बचाएं, हेलमेट पहने। वेयर अ हेलमेट ऑलवेज बिकॉज हेलमेट सेव्स।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: सुबह से मुंह फुला के घूम रही है ये।
6: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
5: किससे?
6: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है, रात को सपने में देखा था ना।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।